सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज नलिनी कांत बागची का शहादत दिवस है, साथ ही देशबंधु चित्रंजन दास की पुण्यतिथि। रेडियो आज़ाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है।

0: और आइए अब आपको अवगत करा दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सार, अब साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे सुनेगा वतन का राग जो केंद्रित है नलिनी कांत बागची पर। 8:30 बजे प्रकृति की पुकार, आज का विषय बादल। सुबह 9 बजे योग संवाद, आज का विषय योग वशिष्ठ बालावस्था एवं युवावस्था के दोष। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत सुनिएगा। सुबह 9:30 बजे सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम, विषय होगा बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ संजय सिंह, इनसे बातचीत की है भगवती सक्सेना ने। 10:30 बजे सुनेगा हिंदुस्तान हमारा जो केंद्रित है देश बंधु चित्रंजन दास पर। 11 बजे स्वास्थ्य चर्चा, चर्चा का विषय मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय पर सुनेगा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नेहा अरोरा से रत्नेश सोनी से बातचीत। 11:30 बजे कार्यक्रम होगा युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बार की बात है, दो भाई परलोक सुधारने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पर निकले। रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। पुण्य कमाने के लिए उन्होंने खुले हाथों से धन बांटना शुरू कर दिया। बुरे पवित्र अपवित्र या फिर धन की आवश्यकता है या नहीं, यह देखे बिना ही उन्होंने धन बांटा और तीर्थ पर चल दिए। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। अब तो उनके पास मात्र इतना ही धन था कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, सो कुछ सहायता नहीं कर पाए। तभी उन्होंने देखा कि एक निर्धन ग्रस्त भी उस रास्ते से गुजरा और शीत से ठुठरते हुए उस व्यक्ति के बदन पर उसने अपना कोट उतार कर रख दिया। ये सब देखकर छोटा भाई बोला, भैया मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के दान पुण्य की तुलना में हमारी सारी संपत्ति का दान व्यर्थ है। बड़ा भाई कुछ न कह सका। श्रोताओं, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सुपात्र को दिया हुआ दान ही सार्थक होता है।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: तम पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वाम ईयते सान्वीयते तस्मिन् संति प्रशिसस्तस्मिन् निष्टयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः। हे मनुष्यो, आप सभी उन अग्निदेव से ही प्रश्न करें, क्योंकि वे ही सर्वत्र गमनशील, सर्वज्ञाता, ज्ञानवान, निश्चय ही सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं में प्रशासन की सामर्थ्य तथा सभी अभीष्ट पदार्थ विद्यमान हैं। वे अग्निदेव ही अन्न, बल तथा शक्ति साधनों के स्वामी हैं। तमित पृच्छन्ति न सीमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत। न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोस्य कृत्वा सचते अप्रद्रपितः। ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे नहीं पूछ सकते। धैर्यवान मनुष्य कार्य को निर्धारित अवधि से पहले ही संपन्न कर डालते हैं। वे किसी के कथन को अनावश्यक महत्व नहीं देते, अतएव अहंकार से रहित मनुष्य ही अग्निदेव की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। तमिद गच्छन्ति जुह्व स्तमर वतीर विश्वानियेकः शृण वद्वचांसि मे पुरु प्रैषस्तुरिर् यज्ञ साधनो छिद्रोति शिशुरादत्त संरभः। घृत चमस द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियां उन अग्निदेव को ही प्रदान की जाती हैं, और प्रार्थनाएं भी उन्हीं के निमित्त हैं। वे अकेले ही हमारी संपूर्ण स्तोत्र वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अग्निदेव अनेकों के लिए प्रेरणा प्रद, दुखों के निवारक, यज्ञ साधक, पवित्र संरक्षक तथा सामर्थ्यों से संपन्न हैं। अग्निदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के समान ही आहुतियों को ग्रहण करते हैं। उपस्थायम चरति यत समारत सद्यो जातस्तसार युज्ये भी अभिश्वान्तम् मृषते नांदे मुदे यदीम गच्छन्त्यु शतीर पिष्ठितम्। जब ऋत्विगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर सब ओर फैल जाते हैं। जब सर्वत्र संव्याप्त यज्ञाग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। स ई मृगो अप्यो वनर गुरुप त्वच्यु पमस्याम निधाई व्यब्रवीद वयुना मर्त्येभ्योग्निर विदाम रित चिद्धि सत्यः। वनों में विचरणशील अनुसंधान करने और उपलब्ध करने योग्य अग्निदेव उत्तम समिधाओं के बीच स्थापित किए जाते हैं। मेधावी यज्ञ के ज्ञान से संपन्न सत्ययुक्त अग्निदेव वास्तव में ही मनुष्यों को यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हुए दिव्य ज्ञान का संदेश देते हैं।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
5: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।

कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।

इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए।

कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं।

जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। आजादी के इतिहास में क्रांतिकारियों का योगदान अहिंसक आंदोलन से अधिक था। उद्देश्यपूर्ण हिंसा मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग सदैव इतिहास के सुनहरे अक्षर बनते रहे हैं। क्रांति के इतिहास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है और उस समय बंगाल आजादी के दीवानों का केंद्र था। क्रांतिकारियों के हमलों और उससे उपजी जनता की विद्रोही भावना से अंग्रेज शासक परेशान हो उठते थे। क्रांतिकारी घटनाएं उनको शासन करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती थीं। क्रांतिकारियों की गतिविधियां तत्कालीन राजधानी कोलकाता के आसपास होने से उनको अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाने में मदद मिलती थी। इससे अंग्रेजों को दोहरा नुकसान था। इन घटनाओं की बार बार की आवृत्ति से दुनिया में भारत का उनका शासन नाजायज माना जाने लगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की विद्रोही गतिविधियों की खबर दुनिया को लगे। इतिहासकारों के अनुसार इसी से घबराकर अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी।

कोलकाता के आसपास के क्रांतिकारियों में एक थे नलिनी कांत बागजी, जो सदा अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों की नाक में दम किए रहते थे। अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो इस देश पर अत्याचार ही था। वे हरदम विद्रोही गतिविधियों के दमन पर जोर देते रहते थे। एक बार बागजी अपने साथियों के साथ गुवाहाटी के एक मकान में रह रहे थे। क्रांतिकारी सारी रात बारी बारी जागते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। एक बार रात में पुलिस ने मकान को घेर लिया। जो क्रांतिकारी जाग रहा था उसने सबको जगाकर सावधान कर दिया। सबने निश्चय किया कि पुलिस के मोर्चा संभालने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। निश्चय करते ही सब गोली वर्षा करते हुए पुलिस पर टूट पड़े। इससे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। इसका लाभ उठाकर क्रांतिकारी वहां से भाग गए और जंगलों में जा छिपे। वहां भूखे प्यासे कई दिनों तक वे छिपे रहे। पुलिस भी उनका पीछा करती रही। जैसे तैसे 3 दिन बाद उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। वे भोजन करने बैठे ही थे कि पहले से मौजूद बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया। वे समझ गए कि भोजन आज भी उनके भाग्य में नहीं है। वे सब भोजन को छोड़कर फिर भागे, पर पुलिस इस बार अधिक तैयारी में थी।

मुठभेड़ चालू हो गई और तीन क्रांतिकारी वहीं मारे गए। तीन बचकर भाग निकले, उनमें नलिनीकांत बागची भी थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी, फिर भी वे तीन दिन तक जंगल में भागते रहे। इस दौरान एक जंगली कीड़ा उनके शरीर से चिपक गया, उसका जहर भी उनके शरीर में फैलने लगा। वे फिर भी किसी तरह हावड़ा पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे वे बेहोश होकर गिर पड़े। सौभाग्यवश नलिनीकांत का एक पुराना मित्र उधर से गुजर रहा था, वो उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने मट्ठे में हल्दी मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लेप किया और कई दिन तक भरपूर मात्रा में उन्हें मट्ठा पिलाया। इसके कुछ दिन बाद नलिनीकांत बागची ठीक हो गए। ठीक होने पर नलिनी मित्र से विदा लेकर कुछ समय अपना हुलिया बदलकर बिहार में छिपे रहे, पर चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था, अतः वे अपने साथी तारिणी प्रसन्न मजूमदार के पास ढाका आ गए। लेकिन पुलिस तो उनके पीछे पड़ी थी। 15 जून को पुलिस ने उस मकान को भी घेर लिया जहां से वे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। उस समय तीन क्रांतिकारी उस मकान में मौजूद थे। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पास के मकान से दो पुलिस वालों ने घुसने का प्रयास किया, पर क्रांतिवीरों की गोली से दोनों घायल हो गए। क्रांतिकारियों के पास सामग्री बहुत कम थी, अतः तीनों दरवाजा खोलकर गोली चलाते हुए बाहर भागे। नलिनी की गोली से पुलिस अधिकारी का टोप उड़ गया, पर पुलिस वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अंततः नलिनी भी गोली से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें बग्घी में डालकर अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन 16 जून 1918 को नलिनीकांत बागची ने भारत माँ को आजाद कराने की अधूरी कामना मन में लिए ही शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था? 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
3: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तरे भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना? पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है। पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थितिवश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदल कर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आपको पता है बादल बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है?
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके गिरने वाला पानी इसी तरह तेजी के साथ इकट्ठा आकर धरती पर गिरता है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं।
1: इसे हम आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बलून में बारीक बारीक छेद करें और फिर उसमें पूरा पानी भर दें, तो पहले तो पानी बारिश के हल्की बूंदों की तरह धीरे धीरे उन छेदों से बाहर आकर नीचे गिरेगा, है ना?
0: हाँ, पर अगर इन बारीक छेदों को अचानक से झटके से तोड़ दो तो एकदम सारा पानी पूरे वेग से बाहर आकर नीचे गिरेगा, और इसे ही कहा जाता है बादल फटना, या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं के दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं, और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतरकर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं, और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है, और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकराकर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है, और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भड्डरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जीडर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए, जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप, रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है, बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है। जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले, जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हो या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है। और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है। एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है। तब हमें आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है।
0: और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति में फर्क होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें चमक पहले और बिजली के कड़कने की आवाज बाद में सुनाई देती है।
1: बादल हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला तो ये कि बादल हमारे जल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
0: ये बादल बारिश और बर्फ, महासागरों और झीलों तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं, जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरसकर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल। अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।

0: पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए, डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
1: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए। यह है तो हम हैं, हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना समाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन एक नदी की भांति निरंतर बहता रहता है। कहीं बाल्यावस्था की चंचल लहरें हैं, कहीं युवावस्था का प्रबल वेग और कहीं अनुभवों की गंभीर गहराइयां। संसार इन लहरों के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहता है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि उस सागर की ओर होती है जहां सभी लहरें अंततः विलीन हो जाती हैं। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम का चिंतन हमें इसी गहन सत्य के समीप ले जाता है। जिस बाल्यावस्था को लोग निष्कपट आनंद का काल मानते हैं, उसमें श्री राम अज्ञान और अस्थिरता की छाया देखते हैं। जिस युवावस्था को संसार सामर्थ्य, सौंदर्य और सफलता का शिखर कहता है, उसमें वो कामनाओं के तूफान, अहंकार के जाल और क्षणभंगुर आकर्षणों की अनिश्चितता का दर्शन करते हैं। और उनकी ये दृष्टि किसी विरक्ति से उत्पन्न नहीं होती, ये उस जागरण का परिणाम है जब मन पहली बार जीवन से पूछता है कि जो बदल रहा है क्या वही सत्य है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, क्या इस स्थिति में स्थायी सुख की खोज की जा सकती है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार से उत्पन्न भ्रमों को शांत कर देती है, वैसे ही विवेक का उदय मनुष्य को जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। भगवान श्री राम का वैराग्य उसी विवेक की उज्ज्वल ज्योति है, एक ऐसी ज्योति जो अज्ञान को दूर करती है, जो संसार के यथार्थ का उद्घाटन करती है। आइए योग संवाद में हम उस दिव्य चिंतन के साक्षी बने जहां एक राजकुमार के प्रश्न समस्त मानवता के प्रश्न बन जाते हैं, और जहां वैराग्य जीवन से विमुख होने का नहीं बल्कि सत्य के प्रति जागृत होने का नाम हो जाता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: योग वासिष्ठ में हमने प्रवेश किया है
3: जी,
2: और भगवान श्री राम के वैराग्य प्रकरण पर चर्चा चल रही है, और आज हम पहुंचे हैं जहाँ भगवान श्री राम बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर अपनी बात रखते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है शशिकांत जी कि बचपन जो होता है उसको हर इंसान अपने जीवन का स्वर्ण काल मानता है। हम बचपन की स्मृतियों में होते हैं, बचपन सबसे अधिक आनंददायी हमें लगता है और बचपन के जो स्वाद हैं वही जीवन भर हम तलाशते हैं। ऐसे बचपन को भगवान श्री राम किस तरह से देख रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं कि बाल्यावस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह की चेष्टाएँ करता है, क्या कहते हैं श्री राम।
3: देखिए, बाल्यावस्था का जो सौंदर्य है वो बड़े लोग देखते हैं
2: जी,
3: क्या बच्चों को भी बाल्यावस्था में उस आनंद की अनुभूति होती है?
2: बिल्कुल भी नहीं।
3: तो इस बात पर विचार करना है, और जो आपने कहा कि वैराग्य एक प्रकार की जागृति है जहां पर हम उन पक्षों को भी देखें जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मन प्रायः एक पक्ष जिसे वो चाहता है या जिसे नहीं चाहता है उसी पर फोकस होता है और बाकी चीजों को नकार देता है।
2: जी जी।
3: तो एक बहुत बड़ा इसका दोष भी है, ये गुण तो है किसी क्रम में, लेकिन दोष भी है कि आप समग्रता से नहीं देख पाते, राग द्वेषात्मक वृत्तियों से प्रेरित होके देखते हैं। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वो पशु पक्षियों की तरह होती हैं, जैसे पशु पक्षी चेष्टा करते हैं, यानी मनुष्य उस समय यद्यपि मनुष्य का शरीर है लेकिन वो जो शरीर धारी जो जीव हैं उनके द्वारा चेष्टा कर रहा है, उनके जैसा चेष्टा कर रहा है। उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है।
2: जी।
3: वो खिलौनों के लिए रोना, मूढ़ बुद्धिता उसके जीवन में दिखाई देगी, दीनता, चंचलता, अभिलाषा, ये सब बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं। हर जगह जहां भी कहीं देखेगा वो मांग करना शुरू कर देगा। कई बार बच्चों को पालना बड़ा कठिन लगता भी है, इसी नाते कि वो कोई भी जिद कर करता है अनावश्यक जिद। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार किसी राजा ने पूछा, ये अकबर बीरबल के संदर्भ में कहा जाता है, कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने कहा कि सबसे कठिन काम है बच्चे को पालना। कैसी बात कर रहे हो आप?
2: जी जी जी।
3: तो कहते हैं कि ठीक है, आपको यकीन ना आए तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा क्या चाहिए उसको? तो हाथी चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो एक घड़ा चाहिए। तो घड़ा हाथी दोनों आ गए उसके सामने। फिर बच्चे ने कहा कि अब हाथी को घड़े में डाल दो। तो ये कहते संभव ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के असंभव कार्य बचपन में उत्पन्न होते हैं।
2: भगवान भी जब मानव शरीर लेकर इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी तो चंद्र खिलौने की जिद की।
3: हाँ, बिल्कुल। हाँ, चंद्र खिलौने,
2: चंद्रमा खिलौने के लिए चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये एक सहज बचपन की जो बचपन की रहती है।
3: लेकिन राम जी जब ये बाल्यावस्था देख रहे हैं, जिस समय जो वैराग्य हुआ है, वैराग्य का मतलब होता है कि उस पक्ष को देखना जो पक्ष नजरअंदाज करके हम जीते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस समय जो पशु पक्षियों जैसी चेष्टा हो जाती है, इसलिए ये अवस्था जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत याद किया जाए। और अक्सर बड़े लोग जब तकलीफों को देखते हैं तो कहते हैं इससे सुंदर बचपन था, बचपन को याद करते हैं, कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन बच्चा देखता है बड़े लोगों को तो सोचता है ये बड़े लोग कितने अच्छे हैं, हम कैसे बड़े हो जाएं,
2: कितनी जल्दी बड़े हो जाएं। बिल्कुल।
3: तो यही है जीवन, जो चीज मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वो खो जाता है तो फिर बहुत कीमती हो जाता है।
2: ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बचपन के ख्यालों में हम खोए रहते हैं, उस आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन दरअसल जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारी आकांक्षाएं सब वैसी ही होती हैं, और उसी तरह की परिस्थिति से हम गुजरते हैं जैसे कि बड़े होने के बाद।
3: बड़े होने के बाद
2: वो जो लीलाएं हैं या जो भी बचपना है वो बड़ों के लिए आनंद का कारक होता है, बच्चे के लिए तो नहीं होता। तो चलिए, आपने बताया कि पशु पक्षी की तरह चेष्टा करता है बच्चा जब छोटा होता है, वो बचपन जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, सुखद मानते हैं, उसे श्री राम किस तरह से देख रहे हैं इस ग्रंथ में?
3: वो कह रहे हैं कि ये जो बचपन को बहुत रमणीय समझता है वो एक प्रकार से मूढ़ बुद्धि है, उसका बार बार धिक्कारण होना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में बचपन को रमणीय समझ रहा है। कहते हैं मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था का जो मन है युवा अवस्था या अन्य अवस्थाओं की तुलना में 10 गुना चंचल है।
2: जी जी।
3: तो उस अवस्था को रमणीय कहना एक प्रकार की मूढ़ बुद्धि होने का प्रमाण है। वो कभी रमणीय नहीं हो सकता, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसमें तो 10 गुना चंचल होता है, पदार्थों को ही सबसे बढ़कर के मानता है। और बचपन और मन ये दोनों सभी वृत्तियों में सहोदर की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यानी आप देखें तो बचपन में मन इतना प्रबल होता है कि जैसे लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से मन ही जी रहा हो। यहाँ तो आदमी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, विवेक का भी प्रयोग कर लेता है, लेकिन बच्चा जो है पूरे समय मन के साथ जीता है। तो जो ये कहते हैं कि वो बचपन और मन ये दोनों सहोदर हैं, एक साथ बचपन में प्रकट होते हैं, तो इसलिए ये अवस्था बहुत ही चंचलता की अवस्था है। यहाँ पर हमेशा दीनता का भाव बना रहता है, देखी और अनदेखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, उसकी बुद्धि शरीर दोनों चंचल होते हैं, शरीर में भी चंचलता होती है और बुद्धि में भी होती है। आप देखें तो बच्चा कभी भी शरीर से स्थिर नहीं बैठ सकता,
2: बिल्कुल नहीं,
3: और मन से भी स्थिर नहीं है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है, कई बार शरीर अस्थिर होता है, मन स्थिर होता है। जैसे किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो शरीर से तो आप गतिशील हैं, लेकिन आपका मन तो उस कार्य में लगा हुआ है ना, लेकिन बचपन में ना मन लगता है ना शरीर स्थिर है, ये दोनों के दोनों चंचल हैं। बाल्यावस्था भय का मंदिर कहा राम जी ने, क्योंकि सभी डराते ही तो है बच्चों को, डर डर के उसको खाना खिलाइए तो डरा के खिलाइए, अपने हिसाब से आपको जो करवाना है तो डराइए। तो ऐसे में बच्चा सबसे डरता है और उसके चित्त में अनेक प्रकार के दूषण पैदा होते हैं। बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है, राम जी कह रहे हैं कि ये अविवेक नाम को धारण करने वाला जो विलासी है, जो हर चीज बिना विवेक के करता है, उसी का वो विलास भवन है जहां पर अविवेक से संबंधित सारे कार्य होते हैं।
2: जी,
3: इसीलिए आप देखिए बचपन के किसी को याद दिलाओ तुम बचपन में ये करते हो तो बचपन की जिद बड़े होने के बाद आदमी नहीं करता, वो सारी चीजें छोड़ देता है।
2: जी, बाल्यावस्था पर भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं वैराग्य दशा में,
3: जी
2: ये हमने जाना। और अब हम आते हैं युवावस्था पर।
3: जी,
2: युवावस्था को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऊर्जा के लिहाज से, अपने सपने पूरे करने के लिहाज से। अपने देश की हम बात कर लें तो भाई यही उसकी बड़ी महानता है कि सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश होने जा रहा है या है। तो उस युवावस्था में अगर अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो चित्त की क्या स्थिति होती है?
3: इस अवस्था में चित्त की स्थिति होती है कि भोग भोगने का उत्साह प्रबल होता है, भ्रांति और काम रूपी पिशाच चित्त को हमेशा दूषित करके नरक में गिराने के लिए उद्दत रहता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, उसको पिशाच नाम दिया कि, और आज के समय में तो, और जहां पर युवा आज डिजिटल डिवाइस के साथ खड़ा है, तो ऐसे में आप देखिए तो उसके चित्त की स्थिति है कि अब तो एक ऐसी बीमारी विकसित हो रही है आज के समय में। बात करें, राम जी ने तो उस समय कहा कि वो हमेशा व्यक्ति को नरक में गिराने के लिए उत्सुक रहता है काम रूपी पिशाच, लेकिन यहाँ पर तो आदमी उसका जो अटेंशन स्पेन है वही खत्म हो रहा है, वो कहीं बहुत देर तक एकाग्र नहीं हो सकता। इन संयंत्रों के द्वारा ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि व्यक्ति के चित्त को ऐसे तोड़ दिया जाए कि वो एक मिनट से अधिक कहीं एकाग्र ना हो सके। और जो ये रील देखने का, जो स्क्रॉल करने का जो प्रचलन चला है, वो एक प्रकार का ऐसी ही मानसिक रोग को जन्म देने का कारण बना हुआ है। वर्तमान में धीरे समाप्त हो चुका है, और इसका प्रभाव भी आप देखिए तो आए दिन खबरों में ये बात आती है कि थोड़ी सी बात पर युवा आत्महत्या या तमाम तरह के ऐसे कदम उठाने पर तैयार है कि थोड़ी सी भी सहनशीलता उसमें नहीं है, जबकि इस समय उसके पास शक्ति है। शक्ति का नियंत्रण परम आवश्यक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि मैं उन माता पिता को ये अपील करूंगा कि जो अपने बच्चों को तमाम सारे शक्ति के साधन अर्पित करते हैं, वो उन साधनों को देने से पहले उनके अंदर संस्कार पैदा करें। अगर संस्कार नहीं पैदा करेंगे तो वो सारे साधन ही उनके विनाश की वजह बनेंगे। और आज देखिए पाश्चात्य देशों में कई बार स्कूलों में बच्चे बंदूक चला देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति होती है किशोरावस्था में कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, भावनाएं स्थिर नहीं होती। उसको मनोविज्ञान में तो आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक अस्थिरता का दौर होता है और आदमी भावनात्मक निर्णय देता है, और भावनात्मक निर्णय हमेशा दोषपूर्ण होगा ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो चित्त की स्थिति होती है, वो बार बार जो यौवनारूढ़ होता है वो निश्चित तौर पर कामनाओं के अधीन होता है, और कामनाओं का जो पिशाच है वो नर्क की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, दुख से दुख को ही प्राप्त करता है इस अवस्था में व्यक्ति।
2: तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि युवावस्था में चित्त की दशा क्या होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कहता है ये ग्रंथ कि यौवन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
3: इसको कहते हैं राम जी कि हे मुने, इस अवस्था को जब मैंने देखा तो युवा अवस्था में स्त्री द्युत कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि प्रसिद्ध दुष्ट दोष उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के चित्त में। और इसको राम जी कहते हैं कि ये नरक का बीज है। युवा अवस्था को नरक का बीज कहा, जबकि ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति बहुत शक्ति संपन्न होता है। तो अगर ये नरक का बीज है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करा पाने में ये सक्षम है कि जहां व्यक्ति नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाए। इसीलिए आप देखिएगा कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था को किसी ने साध लिया तो वो पूरे जीवन को अपने अनुरूप जी सकता है, और जिसका ये अवस्था नहीं सदा युवा अवस्था
2: में बह गया
3: तो वो भटक जाता है। कहते हैं ना कि आप चंद खुशियों के लिए पूरे जीवन भर रोना चुन सकते हैं, और थोड़े दिन की साधना कर लें अगर युवा अवस्था की तो पूरे जीवन आप हंस सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। और जिन लोगों ने साधा वो निश्चित तौर पर सफल हुए, सफल कहे भी जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करता है। यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य किसी दूसरे से नष्ट ही नहीं हो सकते। यानी आप देखिए कि ये कैसी अवस्था है, जिस अवस्था को अगर आपने साध लिया तो फिर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको नष्ट कर सके। तो यौवन कितना मतलब कठिन अवस्था है, जहां पर कहते हैं इस अवस्था ने अगर नष्ट नहीं किया तो फिर उसको कोई और मनुष्य नष्ट नहीं करेगा। यानी नष्ट होने के सारे जो साधन हैं वो इसी अवस्था में होने की संभावना है, और जीवन में देखें तो जीवन के सारे उत्थान भी इसी अवस्था में होने की संभावना है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं विचार करने योग्य अवस्था है। जी
2: जी। अच्छा, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि युवावस्था कैसी है?
3: युवावस्था के लिए वो कहते हैं कि यह अमंगलकारी यौवन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो भोगों के समय मधुर एवं स्वादिष्ट लगता है और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है। और आप देखें तो संसार का कोई भी भोग ऐसा नहीं है जिस भोग को भोगने के बाद पछतावा ना हो। तो ये कहते हैं कि अंत में तिक्त प्रतीत होता है और इसमें दोष ही दोष भरे हैं। सब दोषों का ये आभूषण है, मदिरा के मद के विलास के समान मोहक है। जैसे मदिरा में आदमी मद के सम्मोहन में आ जाता है, वैसे ही ये अवस्था है जिसमें आदमी दोषों के आभूषण को पहन लेता है और दोषपूर्ण कार्य के प्रभाव में आ जाता है और दोषपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है।
4: जी जी
3: जी।
4: लेकिन तभी जबकि युवावस्था साधा न जाए,
3: साधा ना जाए,
4: अगर साध लिया तो फिर जिंदगी भर आनंद की भी स्थिति
3: बिल्कुल
4: होती है।
3: बिल्कुल।
4: अच्छा, युवावस्था में व्यक्ति को क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं युवराज राम?
3: जी, कहते हैं कि इस अवस्था में असत्य होकर भी सत्य प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है, तथा स्वप्नावस्था में जिस तरीके से हम तमाम सारे सुख वैभव भोग रहे होते हैं और उस भोग में स्वप्न टूटने के बाद वो खत्म हो जाता है, वैसे ही इस अवस्था की स्थिति है कि यहाँ पर भी आदमी स्वप्न के भोगों की भांति सुख की तरफ भागता है, और जबकि सच ये है कि जाता है उसके पास, और फिर जैसे वो मृग जो है पानी के भ्रम में दौड़ता है रेगिस्तान में, और उसमें प्यास बढ़ता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है,
4: प्यास बढ़ती है,
3: और अंत में वो प्यास से ही मर जाता है। तो ठीक ऐसी ही अवस्था है जहाँ पर जिन विषयों के प्रति व्यक्ति भागता है, उन विषयों के प्रति और आकर्षण या और प्रबलता से उन भोगों की इच्छा और जन्म लेती है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आभूषण है दुख का, अमंगलकारी है, और इसमें व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मतलब असत्य में सत्य सा प्रतीत होता है, वहां सत्य है नहीं, सुख है नहीं, लेकिन वहीं वो सुख खोजता है। जैसे आप देखिए ना, युवावस्था में बच्चे जहाँ जाकर के अपना समय बिताते हैं, उसका वास्तव में वो अगर विश्लेषण करें तो क्या उस समय का उनके जीवन में कोई उपयोग है? अगर देखें तो वो जो करने योग्य है वो न करके जो नहीं करने योग्य है उनमें अधिक ध्यान देते हैं और अधिक समय व्यतीत करते हैं।
4: जी, जी,
3: तो इसलिए उसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। असत्य कहा उन्होंने।
4: जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है, एक युवा जो होता है, उसकी बुद्धि किस तरह से काम करती है?
3: जी, इस अवस्था में उसकी बुद्धि युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाला जो आयोजन है, व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है और उसकी बुद्धि मोह से युक्त होती है और बुद्धि कुंठित कर देता है मोह, और इस भ्रम से प्रेरित होकर वो अतिशय मात्रा में भ्रम का उत्पादन करता है। यानी बुद्धि जो होती है वो भ्रमोत्पादक होती है, माने भ्रम का निवारण करने वाली नहीं होती, भ्रम का उत्पादन करने वाली होती है। राम जी तो कहते हैं जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। ऐसी स्थिति होती है जैसे अत्यंत निर्मल विस्तृत और पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल विशाल और शुद्ध बुद्धि भी युवा अवस्था में कलुषित हो जाती है। इसका आशय ये है कि अगर हम मन के या युवा अवस्थाओं के इस स्थिति को जान लें, तो हमारे अंदर सावधानी बढ़ेगी, हम सजग होंगे, न कि ये उसका निंदा है।
4: हाँ,
3: निंदा नहीं है
4: बिल्कुल, क्योंकि निंदा कहा भी नहीं, दोष कहा।
3: हाँ, दोष कहा है, दोष है। तो जब जब दोष की बात आती है तो इसका मतलब सावधान होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जी,
4: ऐसा नहीं कि युवा अवस्था मूल्यहीन है,
3: नहीं नहीं बिल्कुल,
4: अत्यंत मूल्यवान है,
3: अत्यंत मूल्यवान।
4: लेकिन उसके जो दोष है उसको हम जब जान लेंगे
3: तो सजग रहेंगे,
4: तो सजग रहेंगे, बिल्कुल
3: अवेयर रहेंगे। जी,
4: अक्सर इस बातचीत में हम गुणों की चर्चा करते हैं, योग संवाद कार्यक्रम में कई बार गुणों की चर्चा हुई है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, कुछ गुण होते हैं जो कम या ज्यादा होते हैं हर व्यक्ति में। तो क्या अवस्था के हिसाब से भी इन गुणों का घटना या बढ़ना होता है? युवावस्था में किन गुणों की वृद्धि होती है?
3: आपने बहुत सुंदर सवाल किया, और बिल्कुल ऐसे ही इस अवस्था का वर्णन करते हुए राम जी गुरु जी से कहते हैं अपने
4: जी, जी।
3: कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम अवस्था है। यानी ये दो गुण जो हैं इसमें इतने प्रबल हैं कि सत्व गुण जो प्रकाश देता है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो हमेशा ये दोनों ढक लेते हैं। व्यक्ति जो सोचता है वो करने के लिए क्रियाशील होता है, जो विचार उसके मन में आया या जिस भी विषय के भोग या जिस वस्तु या व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा विकसित हुई, वो उसी के चिंतन में निरंतर रत रहेगा या उसी को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर रत रहेगा। उसका क्या परिणाम होगा या वो करणीय है या अकरणीय है, ये विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता, क्योंकि ये विचार करने के लिए सत्वगुण का प्रकाश चाहिए, और सत्वगुण का प्रकाश ढक जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं होता, जो लोग साधते हैं वो सत्वगुण भी होता है, क्योंकि हर गुण में ये तीनों गुण होते हैं। तो लेकिन इस गुण की वृद्धि होती है, इस गुण की पूर्णता होती है इस अवस्था में। सद्गुण की स्थिरता को नष्ट करने में ये दोनों गुण दक्ष हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका जो है काफी विस्तार रहता है इस अवस्था में, और व्यक्ति इसी अवस्था से प्रेरित होकर के हमेशा क्रियाशील भोग की तरफ उन्मुख रहता है। जी, ये इस अवस्था के दोष।
4: अच्छा, अभी आपने चर्चा की मृग तृष्णा की।
3: हाँ,
4: यौवन को मृग तृष्णा कहा क्यों भगवान श्री राम ने?
3: मृग तृष्णा इसको इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ये संसार एक मृग तृष्णा, कई बार अध्यात्म में मृग तृष्णा शब्द का बड़ा उपयोग किया जाता है कि ये जगत जैसे मृग को पानी का भ्रम होता है उन उड़ती हुई रेतों में प्रकाश के अपवर्तन या प्रक्रिया के कारण उनको भ्रम होता है और उसी तृष्णा से वो मृग उस पानी में प्राण गंवा देता है, अपना जीवन गंवा देता है, जबकि वहां पानी है नहीं। जितना ही दौड़ता है, जैसे हम कहते हैं ना क्षितिज पर आसमान और धरती को मिलते हुए हम देखते हैं आकाश और धरती का संध देखते हैं, लेकिन कहीं होता नहीं है, तो ठीक ऐसे ही इस जगत में व्यक्ति मृग तृष्णा जगत की होती है उसे, और युवावस्था में ये इतनी प्रबल होती है कि जिसमें व्यक्ति करने योग्य कर्म त्याग करके हमेशा प्यास बढ़ाने के क्रम में भागता रहता है। जैसे मृग प्यास बुझाने के प्रयास में दौड़ता है और प्यास बढ़ाता है, वैसे युवा अवस्था में आदमी अपने इच्छाओं को शांत करने की कोशिश में इच्छाओं को और बलवती करता है और उन इच्छाओं के वशीभूत होता है और इच्छाओं का पूरी तरीके से गुलाम होकर अपने भविष्य तक को नष्ट कर डालता है, अपने जीवन के उद्देश्य तक को भूल जाता है। या देखें तो जीवन में जो कहा गया नरक का बीज, यानी जीवन को नारकीय बनाने वाला अगर कोई अवस्था है तो युवा अवस्था है, अगर नहीं साधा गया या उनके दोषों के साथ हम सजग नहीं हुए तो। और सजग जो लोग हो जाते हैं वो पूरे जीवन जो है अपने जीवन को अपने वश में कर करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए मृग तृष्णा से नाम दिया उन्होंने कि जिसमें प्यास बुझाने की कोशिश में प्यास की ही बढ़ोतरी होगी और अंततः आदमी प्यासा ही मर जाएगा।
4: जी, तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण से चर्चा की कि बाल्यावस्था और युवावस्था के क्या दोष हैं, और विस्तार से आपने बताया कि भगवान श्री राम की दृष्टि क्या देख रही है दोनों अवस्थाओं में। जो आज के हमारे लोग हैं, जो आज के युवा हैं या आज के जो बच्चे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे?
3: उनसे मैं यही कहूंगा कि यौवन रूपिणी जो रात्रि है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, इसका वो याद रखें। और उस
4: युवावस्था को रात्रि कहा,
3: रात्रि कहा राम जी ने, कहा कि ये रात्रि है, इसको दिन, और हम लोग दिन समझते
4: दिन
3: हैं। देखिए कितनी दृष्टि, तो वो इसका अर्थ ये नहीं कि दिन नहीं है, दिन है तो रात को भी याद करो। योग का अर्थ ये नहीं हुआ, योग का अर्थ किसी एक पक्ष तक नहीं, समग्रता से देखने का जो कौशल है वो है योग। और योग बिना वैराग्य के, मैं स्पष्ट करूंगा कि वैराग्य का अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम पलायन करें, वैराग्य पलायन नहीं है, वैराग्य जागरण है, एक सत्य का जागरण, जिसके बाद आप योग वासिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण की बात करेंगे। राम जी, जब वैराग्य की जब बात हो जाएगी कि वैराग्य किन किन कारणों से उनको हुआ है, तो जब गुरु से अपने पूरे चित्त की बात, अच्छा एक बात और भी आप देखिएगा कि जब आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसको कहना चाहिए, कह करके ही आप उससे मुक्त होते हैं। कई बार हम उसी गुंतेड़े में उलझे रहते हैं, न कह पाते हैं और न मतलब छूट पाते हैं, तो वो बार बार हमारे अंदर बना रहता है और फिर हमको अस्थिर करता है हमारे भावनाओं को। इसलिए कहते हैं, एक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कैथारसिस, जिसमें कहते हैं हम लोग उसको निकालिए। तो यहाँ पर राम जी को जिन जिन कारणों से वैराग्य हुआ है, वो सारे कारण पहले वो गुरु से कह रहे हैं
4: बिल्कुल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
3: और गुरु उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं सुनकर, ऐसा नहीं जैसे आपके सामने कोई आकर के ऐसे कहे तो हो सकता है कि आप उसे पॉजिटिव या उसको नेगेटिव कहने लगे। गुरु कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये विवेक से उत्पन्न हुआ है। तो राम जी को वो उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इन सारी बातों को कहो, देखो, क्योंकि वो देखना आवश्यक है। जब तक संपूर्णता से किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक आप मतलब न्यायशील नहीं हो पाएंगे।
4: बिल्कुल, और यही एक संदेश आज के माता पिता के लिए भी आपकी तरफ से हो गया जो मैं समझ रही हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कि बच्चा अगर गुमसुम हो जाए, किसी चिंतन में दिखाई दे बार बार असामान्य रूप से,
3: जी,
4: तो जिस तरह राम बोलें इसके लिए प्रयास गुरुजनों का है, पिता का है, इस तरह का प्रयास परिवार में माता पिता का भी होना चाहिए।
3: बच्चा अगर बचपन के साथ नहीं है, या हम अपने आकांक्षाओं के नाते बच्चों को बचपन के साथ न रख करके उसे अपने जैसा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारी बहुत बड़ा अनदेखापन है कि हम बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। आपका उससे संवाद होना चाहिए, ये एक संवाद है, योग संवाद है, वाद प्रतिवाद नहीं है, संवाद है। संवाद में जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो उसको आप कहने का पूरा अवसर दीजिए, ताकि वो कह के उससे मुक्त हो सके और फिर उसके दूसरे पक्ष को उसके सामने आप रख सकें, तभी तो योग होगा, तभी तो जुड़ना होगा।
4: बिल्कुल,
3: तो ऐसे में गुरुजी के सामने वो अपने मन की पूरी बात रख रहे हैं और वो बाल्यावस्था और युवावस्था के उन दोषों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां बाल्यावस्था युवावस्था में जो लोग उन्हें आनंदित दिख रहे हैं उसके दूसरे पक्ष को राम जी देख रहे हैं, क्योंकि राम जी तटस्थ हैं, राम जी का विवेक जगा हुआ है, और उन लोगों का जो भोग में लिप्त है वो विवेक के साथ नहीं है, वो तो उस अवस्था में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि और हम किस तरीके से इस अवस्था में डूब सकें।
4: जी जी जी,
3: राम जी डूबने वाले नहीं है, वो तो जागे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब मैं कहता हूँ कि बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है कि जहां पर स्वयं जो परम योगीश्वर है वही उन भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है जो आम लोगों के अंदर उत्पन्न होता है।
4: बिल्कुल। तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज योग संवाद कार्यक्रम में बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर, और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी बातचीत है ये।
3: जी।
4: अपने जीवन में भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इसको उतार सकते हैं
3: जी।
4: और इस तरह से युवावस्था और बाल्यावस्था को देखा जाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका रहा, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
4: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे थे बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कागज की कश्ती, बारिश की बूंदे, माँ की लोरी, बाबा के कंधे, टॉफी की जिद, मेलों की भीड़, बस्ता टांगे ना कोई पीड़, ये है बचपन, रंगों का संसार, खेल खिलौने सपनों का त्योहार, इसे सहेजें, इसे बचाएं, बच्चों के हाथ किताबें थमाएं। श्रोताओं, बच्चों की, नन्हे मुन्नों की दुनिया रंग बिरंगी तितलियों के जैसी होती है, ना कोई चिंता, ना कल की कोई फिक्र, उनके लिए हर दिन नया सा ही होता है। खेल खिलौने, मिट्टी धूल, कूड़े से सपने और किताबें, बस इन चंद चीजों से ही उनकी दुनिया पूरी हो जाती है। बच्चों को भगवान का रूप हम इसलिए तो कहते हैं ना। लेकिन श्रोताओं, विकास की इस दौड़ में बच्चों का बचपन भी रौंद गया। 8 साल का मासूम जिसके हाथ में किताब की जगह केतली है, पेंसिल की जगह हिसाब की पर्ची है, इनकी दुनिया में ना स्कूल की घंटी बजती है और ना लंच बॉक्स खुलता है। जरा सोचिए, इनकी क्या गलती है। श्रोताओं, आज है 12 जून, जिसे हम प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं फैक्ट्री जाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, जोखिम भरे काम करते हैं, और ये सब आता है बाल श्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे की गंभीरता क्या है, समाज में, परिवार में क्या जागरूकता होनी चाहिए, इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री संजय सिंह जी, जो 30 वर्षों से बचपन संस्था से जुड़े हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए लगातार कार्यरत हैं। नमस्कार सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने विशेष दिन पे आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
1: सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 12 जून का जो दिन है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं, हमें ये बताइए कि कब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है और क्या उद्देश्य है आज के दिन को मनाने का।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि बाल श्रम की समस्या कमोवेश विश्व के सारे देशों में है
1: जी।
2: और ILO, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, 2002 में एक प्रक्रिया शुरू की, हर प्रतिवर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बाल श्रम को लेके जन चेतना लाना, लोगों में जागरूकता लाना और बाल श्रम को धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में सरकारों का, समाज का और सिविल सोसाइटी का सहयोग लेना। तो ये बड़ा दिन होता है हमारे लिए भी, हम बच्चों के लिए काम करते हैं और इस दिन हम लोग भी तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां करते हैं, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे समाज में बच्चों के श्रम को लेके एक विरोध पैदा हो, एक चिंता पैदा हो, एक शिकन पैदा हो, ताकि बच्चे काम में न रहें, स्कूल जाएं और स्कूल में पढ़ाई करें और अपना विकास करें।
1: सर, बाल श्रम क्या है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे, जैसे कौन कौन से काम जो है वो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं।
2: ILO ने जिनका नाम लिया मैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है इसकी, हालांकि इसकी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। ILO ने कहा कि ऐसा कोई काम जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बाधित होता हो, उनकी गरिमा के अनुरूप न हो, उनकी मर्यादा के अनुरूप न हो, ऐसे सारे काम बाल श्रम में आते हैं। लेकिन चूंकि सरकारों का अपना काम होता है, कानून का अपना काम होता है, इसलिए इसकी परिभाषाएं अलग अलग देशों में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग संदर्भ में बहुत तरह बदली हुई नजर आएंगी आपको।
1: सर, अब ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि किस उम्र के बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।
2: उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बच्चे किसको कहेंगे, बालक किसको कहेंगे
1: जी।
2: ये परिभाषाएं भी बहुत सारी की भ्रांतियों के तहत आपको मिलेंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता 1989 में, जो विश्व का सर्वाधिक ऐतिहासिक समझौता था बच्चों के अधिकारों के लिए, जिसमें कहा गया कि विश्व में कहीं भी बच्चा हो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसको हम बालक मानेंगे, बच्चा मानेंगे
1: जी।
2: लेकिन चूंकि आपने बच्चों की परिभाषा पूछी, हमारी सरकार ने, हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा मानता है
1: जी जी।
2: शादी ब्याह का जो कानून है, बाल विवाह का जो कानून है, 18 साल से कम उम्र के बच्चियों को बच्चा मानता है, और इसी तरह ये जो कानून है बाल श्रम अधिनियम, ये 14 साल से, और दो तरीके से किशोर बोलता है, 14 साल से बड़े 18 साल तक जो बच्चे हैं उसको किशोर बोलते हैं और 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको बालक बोलते हैं, ये है। लेकिन हमारा जो संस्थागत मानना है कि हम किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई हो उसको हम बालक कहते हैं।
1: सर, हमारे देश की बात करें तो बाल श्रमिकों की क्या मजबूरी है? सबसे बड़ा कारण आप किस परिस्थिति को मानते हैं कि छोटे बच्चों को इस तरह से बाल श्रमिक बनने पर मजबूर होना पड़ता है?
2: हमारी परिस्थितियाँ बहुत जटिल हैं। आपको बताएं, जब देश आजाद हुआ और संविधान बना, संविधान के अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख था कि बच्चे हमारे काम नहीं करेंगे और स्कूल पे जाएंगे। अब ये परिस्थितियाँ इतनी जटिल है, जटिल मतलब गरीबी है, विषमताएं हैं बहुत तरीके से, और बहुत ऐसी जटिल परिस्थितियां थी जिसके कारण संविधान में इसका प्रावधान होने के बावजूद भी आज देखो तो आज बच्चे अलग अलग तरीके से काम में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से, जो कुछ गरीबी के नाम पे, कुछ बेरोजगारी के नाम पे, कुछ पेरेंट्स के, जिनके पेरेंट्स नहीं रहते उनके नाम पे, कुछ नशे की वजह से। चूंकि ये बाजार है, बाजार में बहुत सारे लोग, आपको देखेंगे बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं बच्चों को शोषण करने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का, उनके साथ हिंसा करने का, तो जिसके कारण बच्चे कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाते हैं, मासूम होते हैं, भोले होते हैं, हम जानते हैं सभी, और बच्चों को कुछ लालच देके काम में लगाया जाता है। तो ये परिस्थितियां बहुत जटिल है, आप सभी जानते हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, ये मूल कारण है जिसके कारण बाल श्रम पैदा होता है।
1: सर, सामाजिक संगठनों के द्वारा या सरकार के द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं या कोई योजनाएं हैं जो इनके हित के लिए हों?
2: बहुत सारे काम है, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए एक तो छात्रवृत्ति है, श्रम कल्याण कार्ड है, है ना, बाल श्रमिकों के लिए अलग अलग स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारी योजनाएं आपको मिलेंगी जो कि काम कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, उन योजनाओं के गिरफ्त में इनको लेना, उन योजनाओं के जद में इनको लेना और दिल से काम करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो चीज मैं बताऊं इसका कारण, जो वो है हमारी स्वीकार्यता। हम बच्चों को श्रम करते हुए देखते हुए या देखते हैं तो हमें या आपको या पूरे समाज में कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है, हम एक सामान्य गतिविधि के रूप में उसको ले लेते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है, इसको अगर दूर नहीं हुआ, ये स्वीकार्यता खत्म नहीं हुई, तो हम उसी तरह देखते रहेंगे। हम जानते हैं कि हम सभी सड़कों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, देखते हैं बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो एक आम गतिविधि हो गई है, उसको देखते देखते आदत सी हो गई है, बराबर कोई विरोध मन में या कोई क्षोभ मन में नहीं होता। हम अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, टिफिन देते हैं, स्कूल भेजते हैं, लाल प्यार करते हैं, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा जो हो रहा होता है उसको हम भगा देते हैं या उसको अलग नजर से देखते हैं या अपने बच्चों के साथ होने नहीं देते हैं या उससे बात करना पसंद नहीं करते। ये जो हमारा दोहरा चरित्र है वो बहुत एक बहुत बड़ी चुनौती है।
1: अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हम कहीं बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और बच्चों को काम करते देखते हैं, तो आमजन की बात करें तो यदि हम में से कोई छोटे बच्चों को इस तरीके से बाल श्रमिक के रूप में देखता है तो किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं?
2: अभी देखिए 1098 का नंबर है
1: जी,
2: जो हम चाइल्ड लाइन का नंबर बोलते हैं, इस तरह के नंबर हैं, 100 डायल है, अगर कहीं बच्चे मुश्किल में हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस को भी, एक काम ऐसा है कि जहां पे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो ये संज्ञेय अपराध है, अगर उस तरह की बात है तो डायरेक्ट पुलिस भी उसमें काम कर सकती है, डायरेक्ट पुलिस भी उसमें एक्शन ले सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जिले में चाइल्ड लेबर ऑफिसर होते हैं, लेबर ऑफिसर होते हैं जो कि इन सब चीज़ों की निगरानी करते हैं, और बच्चे जब ये काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनको अगर रेस्क्यू किया गया, अंगीकार किया गया, तो उनका पुनर्स्थापना अच्छी जगह पर हो जाए ताकि वो फिर दोबारा काम में ना आए। ये बड़ी चीज़ होती है, कई रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग रहे हैं, लेकिन बच्चे जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बच्चों को कहीं ले जाया जाता है और कुछ करके फिर परिवारों में ही भेज दिया जाता है। जो मूल उसका कारण है, जिसके कारण वो काम पे आया है, उसको दूर करने के लिए हम प्रयास नहीं कर पाते, ये एक बड़ा कारण है।
1: सर, बाल श्रमिकों का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो भी उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं, तो इस स्थिति में स्वयं बच्चा, उसका परिवार कैसे बचे या कोई इसकी शिकायत कैसे करे? और कई बार ये भी होता है कि शिकायत करने वाला स्वयं भी डरता है कि भाई कहीं हम उस चंगुल में ना जाए, तो कितना सुरक्षित रख के वो खुद को और शिकायत भी कर सकता है?
2: दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि जब हम शिकायत करते हैं तो इसमें शिकायत करने वाले को इतना इस तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो किसी माफिया या किसी इस तरह के बदमाश के चंगुल में बच्चा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये जो काम करते हैं, ये जो इस तरह की बदमाशियां करते हैं या इस तरह का कारोबार करते हैं, उनको ये बात अच्छी पता है कि ये बच्चे अगर पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे, क्योंकि कानून के तहत उनको छूट मिलती है, उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा 18 साल से कम अगर बच्चा है तो ये उसका उपयोग करके उस कानून का लूप होल निकाल के इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, नशे में, नशे के कारोबार में करते हैं, नशे के सप्लाई में करते हैं, और धीरे धीरे बच्चा भी नशा करने लगता है। और जब बच्चा नशा करने लगता है तो अब चाइल्ड लेबर करना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए, तो या तो चोरी करके ले आएगा या कहीं से कुछ कमाएगा करके, तो ये एक बड़ी समस्या है। और इन लोगों से ये जो गैंग है इस तरह का पूरा, इनके साथ पूरा मेरे ख्याल में कई बार हम लोग शिकायत करते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इनको चिन्हित करके उन बच्चों को वहां से निकालना, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, ये बच्चे बुरी तरह से नशे में, और जिस तरह के नशे में है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अब वो नशे वाले बच्चे का कुछ भी इस्तेमाल करो आप, लड़का हो या लड़की हो, उसका यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट है हमारे शोषण करने के लिए। तो समाज के जो ये लोग हैं, जिस तरह के हम जानते हैं समाज में हर तरह के लोग हैं, भला करने वाले भी लोग हैं समाज में, ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है कि इनके साथ लड़ाई लड़ना प्रशासन के लिए भी कठिन है।
1: सर, आने वाले वर्षों में बाल श्रम खत्म करने के लिए क्या क्या समाधान आप देखते हैं?
2: तीन चार चीजें हैं
1: जी,
2: अगर सीधे सीधे हम बात करें तो। एक तो यह है कि ये जो हमारे यहाँ शिक्षा का कानून है
1: जी,
2: इसकी जद में सारे बच्चों को लाया जाए, किसी न किसी, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा हो या सरकारी में पढ़ रहा हो,
1: जी, जी।
2: वो बच्चा स्कूल में होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, परिवारों को जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, जिनके परिवार के बच्चे जा रहे हैं अलग अलग कारणों से, वो कारण बहुत सारे हैं, है ना, वो गरीबी भी हो सकता है, वो एकल परिवार भी है, है ना, परिवार की जिम्मेदारी, हम लोग इसीलिए भी बोल देते हैं कि परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, उन परिवारों को सशक्त करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। तीसरा, एक बच्चे को जो हम वस्तु समझते हैं ना किसी तरीके से, एक किसी तरीके से सामग्री समझते हैं या ऐसी चीज समझते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके कुछ मुनाफा कमा लें और हमारा कुछ नहीं होगा, इस भावना को बदलना पड़ेगा। और जितने कानून है, कोई नया कानून की जरूरत नहीं, जितने कानून है अगर इन्हीं को ढंग से लागू कर दिया जाए और लोगों को एक तरफ से जागरूक किया जाए और कुछ इस तरह की कार्रवाइयां भी हो, जागरूकता का भी काम हो, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
1: सर, जैसे आपने अभी कहा कि परिजनों को भी सशक्त होना पड़ेगा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि बच्चे के परिजनों की काउंसलिंग कितनी जरूरी है और बच्चे का परिवार कितना जिम्मेदार है इन सारी गतिविधियों के लिए?
2: ये काउंसलिंग नाम की जो चीज बोली आपने, ये बहुत ही जरूरी है।
1: जी जी।
2: हाँ, ये समझाए, देखो आप दो तरह के लोग हैं, हम बस्तियों में काम करते हैं, खासतौर से गरीब बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में काम करते हैं, वहाँ एक ही कमाई करने वाला, एक ही ऑटो चलाने वाला, एक ही रिक्शा चलाने वाला बंदा अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, और एक ही इसी तरह का काम उतनी ही आमदनी करने वाला एक बंदा अपने बच्चे को काम पे भेज रहा है, घर का काम करवा रहा है, बाहर का काम करवा रहा है, तो ये बात तो संवेदना की है।
1: जी जी।
2: वो संवेदनशील हो गया तो मजदूर भी अपने आप वो दिन भर की मजदूरी करके सबसे ज्यादा खर्च बच्चे पे करेगा, उनके कपड़े पे करेगा, उनके पढ़ाई पे करेगा, अगर उसके पास संवेदना है तो, अन्यथा वो बच्चे से भी कमा के बच्चे की कमाई भी लेके पी जाते हैं। ये बहुत जरूरी है जो आपने कहा, इस तरह के काउंसलिंग सेंटर होना, इस तरह के एक्सपर्ट काउंसलर होना और उन तक पहुंचना, उनको उस तरह की समझाइश देना, उन तक जाना, उनके माता पिता को बताना कि कई बार हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि संस्थाओं का जानते हैं कि संस्थाओं का अपना एक सीमित संसाधन होता है, सीमित हमारे पास ताकत होती है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है।
1: सर, संगठनों के लिए या बड़े स्तर पर क्या क्या चुनौतियां हैं जो बाल श्रमिकों को रोक नहीं पा रही है, जमीनी हकीकत क्या है?
2: दो चीजें हैं इसमें, बताया कि जो एक समन्वय है हमारा सरकार के साथ,
1: जी, जी, जी।
2: उसको और मजबूत होना पड़ेगा, हो भी रहा है, ऐसा नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, मैं जब से काम कर रहा हूं तब से चाइल्ड लेबर पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से अगर होता रहेगा तो मेरे ख्याल में अगले 100 साल और लग जाएंगे।
1: सर, बच्चों के अधिकार क्या है, कैसे वे अपने अधिकारों के बारे में जाने और बच्चा खुद को कैसे सुरक्षित करे?
2: बहुत विस्तार से जो हमने बताया आपको, बाल अधिकार जो समझौता हुआ, 54 अनुच्छेदों में बच्चों की बात की गई, लेकिन चार अधिकारों की हम मुख्यतः बात करते हैं, चार डब्बे में उनको अधिकारों को डालते हैं। पहला की बच्चों का सर्वाइवल का अधिकार, जीवन जीने का जिसको अधिकार बोलते हैं, कोई भी बच्चा मारा नहीं जाना चाहिए पेट में, उसको जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमको आपको। दूसरा विकास का, तीसरा जिसपे हम बात कर रहे हैं सुरक्षा का, बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल देखो आप बच्चों के साथ कितने दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, सुरक्षा का अधिकार, नशे से सुरक्षा होना चाहिए उसका, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई कम से कम एक बच्चा 12वीं तक, हम लोग ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि कोई भी लड़का हो या लड़की कम से कम 12वीं तक पढ़ाई कर ले, उसके बाद उसका स्किल हो, और अंतिम जो होता है सहभागिता का, हम बच्चों से पूछते नहीं, हम बच्चों से बात नहीं करते कि ये बच्चे ये क्या चाहते हैं, हम बच्चा जो काम कर रहा है वो काम करना चाहता है कि पढ़ना चाहता है, हम ये उसको स्पेस देते नहीं। तो सहभागिता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, राइट टू पार्टिसिपेशन, चाहे वो हमारे घर में भी हो, घरों में भी बच्चों से कुछ पूछा नहीं जाता उनके बारे में, कौन सा विषय लेगा, कैसा बाल कटाएगा, कैसा कपड़ा पहनेगा, कहाँ जाएगा घूमने, ये जो उसका पूछने की आदत है हमारी, वो लगभग न हमारे साथ हुई और न हम अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। हालांकि स्थितियां बदल रही हैं, बच्चों को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे बिन पूछे हैं, बिना उनको कोई सुनता नहीं। तो राइट टू पार्टिसिपेशन बच्चों को होना बहुत जरूरी है, कैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, कहाँ शादी करना चाहते हैं, कौन विषय पढ़ना चाहते हैं, कैसा बाल रखना चाहते हैं, ये सब छोटी चीजों को बच्चों को पार्टिसिपेट करें, हम सुने उनको, हमारे पास भी वो क्षमता नहीं, हम सुनते नहीं बहुत देर तक उनको, कुछ भी बोलता रहता है उसको हटा देते हैं कि छोटा बच्चा है भगो यहाँ से, या बड़े लोग बात कर रहे हैं यहाँ से हट जाओ, ये कह के हम बच्चों को, जबकि बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे बहुत जानकार है, बच्चे बहुत चतुर है, ऐसा हम जानते हैं, अभी देखिए ना 15 साल का बच्चा एक वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा काम कर गया, तो बच्चों के साथ क्षमता बहुत है, उनको उस तरह का मौका परिवार में भी, सरकार में भी और संस्थाओं को भी देना चाहिए।
1: अच्छा सर, जब भी हम इस तरीके की परिस्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं या हम उनमें जाना चाहते हैं, तो एक चीज बड़ी सामान्य सी हमें सुनने में आती है कि बच्चा तो काम सीख रहा है, तो काम सीखना और काम कराना ये दोनों अलग अलग हैं, तो सीखने के बहाने बच्चों को काम में झोंक दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बिल्कुल बहुत एक जिसको हम शब्दों में बोलते हैं ना
1: जी जी।
2: एक हम बोलते हैं दो शब्द बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, एक वर्किंग चिल्ड्रेन बोलते हैं, हालांकि अंतर दोनों में कुछ नहीं है। जहाँ पे कानून के अंतर्गत वो कानून के दायरे में आ जाता है, जहाँ पे एक काम कराने वाला और काम करने वाला बच्चा, ये रिश्ता जिसको नियोक्ता और नियोजक बोलते हैं
1: जी जी,
2: ये रिश्ता आ जाता है तो हम उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ पे कचरा बीन रहा है और उसको बोलते हैं वर्किंग चाइल्ड है, तो वर्किंग चाइल्ड क्या है, वो कहीं ना कहीं कचरा ले जाके देता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत दूर ही सही कोई बड़ा होके उसका शोषण करने का प्रयास कर रहा है
1: जी जी।
2: वो हम पहचान नहीं पाते। दूसरा सीखने और करने वाली बात, सीखते सब है, सीखना चाहिए बच्चों को, बच्चों को काम करने से मना ही नहीं है, लेकिन वो सीखने के व्यवज में होना चाहिए, उसकी पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, उसके मनोरंजन का समय नहीं छूटना चाहिए, उसके आराम का समय नहीं छूटना चाहिए, उसके और जो अधिकार है वो उनको मिलते रहना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर ये सब मिला मिले केवल वो काम ही कर रहा है, घर घर का काम कर रहा हूँ लेकिन सुबह से शाम तक अपने काम पे लगा रखा, तो कानून में भी प्रावधान है कि अगर वो बच्चा स्कूल से लौट के आता है और कुछ मदद कर देता है, हेल्प कर देता है तो ठीक है, मेन काम अगर कर रहा है तो दिक्कत है। खाना बनाने का मदद है, घर में जाते हैं लड़के हैं लड़कियां हैं, बच्चे पानी भरना है, खाना बनाना है, दुकान है या कोई छोटा सा काम है जो गैर खतरनाक नहीं है, उसमें जाकर थोड़ी देर मदद कर देता, उसमें कोई बुराई नहीं।
1: ये वास्तविकता में सीखना है,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये सीखना है, नहीं तो अगर मेन काम ही उसको दे दिया आपने कि बेटा तू जा घर पे और शाम को 100 रुपए 200 रुपए लेके आ, कचरा बीन के आ, चोरी करके आ, जो भी है
1: जी जी,
2: वो ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा हमें भी अंतर समझना पड़ेगा कि सीखना क्या होता है और करना क्या होता है।
1: अच्छा सर, आप इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से सक्रिय हैं, तो आपके कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं से बांटना चाहेंगे?
2: बहुत सारे अनुभव है। हम लोग शुरू में जब हम एक टास्क फोर्स में थे
1: जी,
2: यूपी की बात बता रहा हूँ, भदोही में, तो भदोही में कालीन का काम होता है
1: जी जी,
2: तो वो बच्चे को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और हमें एक जिम्मेदारी, एक संस्था के साथ जुड़ा था मैं, तो संस्था के साथ में उसको पलामू एक जिला है बिहार में, वहाँ ले गया मैं उसको पहुँचाने के लिए, उसके घर देने के लिए, और वो घर पे ले जाके उसको दे आया। फिर मैं अब मैं बहुत आश्चर्य रहा कि मुश्किल से 6 महीने बीतते होंगे वो लड़का फिर एक उसमें आता है, और जब फिर मुझे संपर्क किया जाता है वहाँ पे, चूंकि पूरी हिस्ट्री रहती है जिले पे
1: जी जी,
2: तो वो उसका बच्चे का हाथ नहीं था, ये हाथ कट लिया था उसका।
1: अरे
2: अब जब मैंने उस पर बात किया तो किसी, हमने बताया ना कि जैसे कोई काम करते करते उसका उंगली कुछ ये खराब हो गई, उसके बाद उसका उंगली डॉक्टर को काटना पड़ा
1: जी जी।
2: तो फिर मैं वो लड़के को जब देखा तो मैंने कहा कि पूरी व्यवस्था जो है, फिर मैं बहुत मुझे दुख हुआ कि शायद वो पहले जगह पे होता तो कम से कम ये स्थिति नहीं होती
1: जी।
2: और इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, कई बच्चों को हमने प्लेटफॉर्मों पे बहुत काम किया है, लगभग 1700-1800 बच्चे को जो प्लेटफॉर्म पे बच्चे भाग के आ जाते हैं उनको हम लोग घर पहुंचाने का, उस समय जबकि जेजे एक्ट नहीं था तो हम लोग उनको रेस्क्यू करते थे, पकड़ते थे, उनका मेडिटेशन करवाते थे, नशा छुड़वाते थे, उनको घर भेजते थे, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती वही आती है कि जब हम उनको छोड़ के आते हैं, परिवारों में हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, वो खुद के माता पिता होते हुए भी, चाचा होते हुए भी, मौसी होते हुए भी, वो लोग बहुत उनका शोषण करते हैं। ऐसे परिवारों में जहाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो गए, उनको एक दूसरी अर्थव्यवस्था, आपको दूसरी व्यवस्था देनी पड़ेगी, जहाँ बच्चा अपनी पढ़ाई कर जारी रख सके, जहाँ अपने को सुरक्षित रह सके 18 साल तक कम से कम, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परिवार परिवार बोल के उसको मरने के लिए उसमें छोड़ नहीं सकते
1: जी जी।
2: ज्यादातर परिवार अच्छे हैं और गरीबी कोई कारण नहीं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं
1: जी जी,
2: तो गरीबी एक कारण नहीं है, वो है संवेदना की बात होती है, अपने बच्चों को देखने की, समझने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत होती है।
1: सर, समाज की जागरूकता कितनी होनी चाहिए, हम सबका क्या दायित्व बनता है इन बच्चों को लेकर के?
2: जब हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर तो इसको हम एक सामाजिक समस्या ही बोलते हैं
1: जी जी,
2: आर्थिक समस्या तो बाद में है, तो ये तो समाज की देखिए क्या है, अभी सरकार बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे काम कर रही है
1: जी जी,
2: चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, बहुत सारे जो सरकार बहुत प्रोएक्टिव काम कर रही है
1: जी जी।
2: लेकिन चूंकि ये सामाजिक समस्या है, समाज को सबसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी समाज के प्रॉब्लम से चलती है ना,
1: बिल्कुल,
2: तो वो संवेदना होना बहुत जरूरी है। हम अगर छोटी छोटा काम कर दें, हमें एक दो चीजें में हम कहीं टोकना शुरू कर दें, ये बच्चे से आप काम क्यों करा रहे हो,
1: जी
2: बच्चे
1: जी।
2: से पूछना शुरू कर दें, उसको जो काम करवा रहा है उससे एक बार टोकना, इतना ही करना है, अपने को झगड़ा नहीं करना, इतना ही शुरू कर दें, तो उसको ये लगेगा जो ये काम करवा रहे हैं कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैं कुछ गलत हो सकता है, या मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, या कोई डर पैदा हो सकता है उसके अंदर, यही काम अगर शुरू हो जाए छोटा छोटा टोकना
1: जी जी,
2: ये क्यों करवा रहे हो, क्यों मार रहे हो बच्चों को, क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हो बच्चों को, बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो, बच्चा नशा क्यों कर रहा है, ये सब छोटे छोटे सवाल जब हमारे संपर्क में आते हैं
1: जी जी।
2: और हम उनको करना उठाना शुरू कर दें, समाज के लोग कुछ नहीं करना आपको जाने, तो इतने से ही बहुत सारी संवेदना आएगी, जो सुन रहा होगा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसी से काम अपना शुरू हो जाएगा।
1: सर अब चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चा खुद कई बार, जैसे बच्चा जब 14-15 साल की उम्र में आता है या उसकी समझ जब विकसित होती है, तो जब उसकी समझ उसको आने लग जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो खुद से कैसे विरोध करे या खुद से कैसे शिकायत करे कि वो उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सके?
2: पहले बात तो बच्चों को भी जागरूक, जैसा मैंने बताया राइट टू पार्टिसिपेशन की बात की,
1: जी
2: तो इसमें सरकार, समाज, परिवार, हम लोग तो काम करेंगे। अब इसमें वो समय आ गया जब बच्चे भी अपना काम करेंगे।
1: जी
2: तो बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। ये सामने वाला हमें जो कुछ मदद कर रहा है या कुछ पैसे दे रहा है या कोई प्रलोभन दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है, ये क्या करना चाह रहा है।
1: जी
2: ये इसके बारे में स्कूलों में बकायदा, हम सभी जानते हैं कि सेफ टच, अनसेफ टच, बहुत सारे सेशन चल रहे हैं बच्चे, लेकिन वो भी अभी उन बच्चों तक पहुंचना बहुत, जो कि बस्तियों में रहते हैं, जो कि ज्यादा जोखिम में हैं, जो छोटे घरों में रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उन बच्चों तक पहुंचना और उनको ये बताना कि बेटा ये काम आपके साथ होता है तो आपको संभल जाना चाहिए, या अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो मम्मी पापा को पहले बताना चाहिए, ये हेल्पलाइन नंबर है इस पे आपको फोन करना चाहिए, या उसका विरोध करना चाहिए। कई बार बच्चे नासमझ होते हैं, छोटी सी लालच में उनको कुछ भी गलत सही कराते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, दोस्तों को बता देंगे, स्कूल में बता देंगे। इसके कारण बच्चा, और हम सभी जानते हैं कि ये बच्चे हमारे जो होते हैं
1: डर जाते हैं,
2: लालच में आ जाते हैं, कभी कभी कभी उनको शर्म आती है उस चीज को बताने में कि हम किसको इस तरह से बताएं कि फलाने ने ऐसा किया। तो ये जेंडर वो है, इसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपसे बताऊं वो दोनों के साथ ये है, उन बच्चों को ही समझाना पड़ेगा, इस तरह के अलग सत्र लेने पड़ेंगे स्कूलों में कम से कम, जहाँ भी स्कूल में है, आंगनबाड़ी में है, वहाँ पे इस तरह के सत्र बच्चों को खुद बताएं कि बेटा जो इसी तरह की परिस्थिति आए, ऐसा कोई तुमको करे, ऐसा कोई तुमको छुए, ऐसा कोई तुमसे बोले, तो तुम्हें ये कदम उठाना है। बच्चे जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा प्रभावी तरीके से इस बुराई को हम दूर कर पाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चे भविष्य की नींव है, देश की रीढ़ है, उनकी देखभाल, उनके प्रति प्यार और उनकी सुरक्षा पूरे समाज के

0: हमारे अतिथि श्री संजय सिंह जी, जो बचपन संस्था से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा की, हमारे श्रोताओं को जागरूकता की बहुत सारी बातें बताई और बच्चों को भी आपने एक अच्छा संदेश दिया कि वे अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति आवाज जरूर उठाएं।
1: हम जानते हैं, हम चाहते हैं, हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमारा देश मुक्त हो, पूरा मध्य प्रदेश हमारा बाल श्रम मुक्त हो, देश हमारा बाल श्रम मुक्त हो। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, बस नज़र सकारात्मक होनी चाहिए। मुश्किलों में अवसर तलाशने की आदत डालें, यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बुरे वक्त में भी मुस्कुराना ही सच्ची ताकत होती है। जी हाँ, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए सदा सकारात्मक सोचें। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की। दुष्यंत संग्रहालय में सुरेश पटवा के व्यंग संग्रह व्यंग 25 का लोकार्पण मुकेश वर्मा की अध्यक्षता, डॉक्टर संजय सक्सेना के मुख्य आतिथ्य तथा डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद और विवेक रंजन श्रीवास्तव की उपस्थिति में हुआ। शारदा दयाल श्रीवास्तव और जय जीत अकलेचा ने कृति की समीक्षात्मक विवेचना प्रस्तुत की। लेखकीय संबोधन में सुरेश पटवा ने हरिशंकर परसाई को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनकी रचनाओं में व्यंग स्वाभाविक रूप से उतरता है। मुकेश वर्मा ने कहा कि पटवा के व्यक्तित्व का साहस, निर्भीकता और प्रतिरोध का भाव उनकी व्यंग रचनाओं को सशक्त बनाता है। भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी और रंगमंच निदेशक संजय मेहता को रंगमंच के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए बीएम शाह राष्ट्रीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों और निर्देशकों को प्रदान किया जाता है। ये सम्मान उन्हें उत्तर प्रदेश के राजभवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। द नेचर वॉलंटियर सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तिका आओ मिट्टी की महत्ता जाने का विमोचन आज दोपहर 4:30 पर किया जाएगा। अरेरा कॉलोनी स्थित एप्को पर्यावरण परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एप्को के कार्यकारी निदेशक सुधीर कोचर होंगे।

और सीनियर सिटीजन फोरम के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय MPSD भोपाल के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर 4 दिवसीय स्थापना रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव 17 से 20 जून तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रविंद्र भवन में आयोजित होगा, जिसमें प्रवेश निःशुल्क होगा। 4 दिवसीय नाट्य समारोह में विद्यालय के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं रंग प्रयोगशाला के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। महोत्सव की शुरुआत 17 जून को नाटक आले माटी आले राज से होगी। इसके बाद 18 जून को रानी दाई, 19 को महाकवि शूद्रक रचित मृच्छकटिक और समापन 20 जून को गुड़िया की शादी नाटक के मंचन के साथ होगा। और श्रोताओं, आज आप जा सकते हैं शलाखा चित्र प्रदर्शनी देखने के लिए जनजातीय संग्रहालय में सुबह 11 बजे से। महा का प्रादर्श आप देख सकते हैं मानव संग्रहालय में सुबह 10 बजे से। और अब मौसम पर एक नज़र। शहर में आज भी धूप और बादल की आंख में चूली की संभावना है। दोपहर बाद तेज हवा चल सकती है। परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दे अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार। सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल। देश के लिए सुनते रहिए।

0: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटूले झटक दा दाना मटक और मेरी बात गले में सटक।
1: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं चैतन्य भट्ट के संगीत निर्देशन में शिव मंगल सिंह सुमन की लिखी हुई ये रचना स्वर शिवराव के।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं चैतन्य भट्ट के संगीत निर्देशन में रामचरित्र उपाध्याय की लिखी ये रचना, आवाज शिवराव की।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: कर्तव्य से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: बाबू चितरंजन दास का जन्म 1870 में बंगाल के विक्रमपुर में हुआ था। अपनी निर्भीकता के कारण वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने ICS की परीक्षा दी तो उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया। वे निराश नहीं हुए और बैरिस्टर बन गए। उन्होंने अनेक देशभक्तों के मुकदमे लड़े, जिनमें से एक था अलीपुर बम कांड। अपनी वकालत की क्षमता से उन्होंने इस मामले में फंसे सभी अभियुक्तों को निर्दोष साबित कर दिया। थोड़े ही समय में वे देश के सुप्रसिद्ध वकील कहलाने लगे। धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में बढ़ी और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। 1922 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तो 1923 में अखिल भारतीय मजदूर यूनियन कांग्रेस की। 1924 में वे कोलकाता के मेयर बने। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाकर देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया। हमेशा दूसरों के सुखों और कल्याण की चिंता करने वाले देशबंधु का 16 जून 1925 को निधन हो गया। उनकी शव यात्रा में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिनमें सबसे आगे थे महात्मा गांधी। बापू ने कहा था, भारतवासी दास बाबू को कभी नहीं भूलेंगे। बापू ने शायद सच ही कहा था।
3: राजू भैया, ओ राजू भैया, राजू भैया, अरे ये तो सुन ही नहीं रहे। राजू भैया, ओ राजू भैया,
4: अरे क्या है यार, राजू भैया, राजू भैया,
3: अरे अरे अरे भैया, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं आपने?
4: आप बोलना, सुन रहा हूँ।
3: अरे वो रेडियो लगा दो ना भैया।
4: हैं, क्या रेडियो?
3: अरे भाई वो ड्रामा, वो आजादी की लड़ाई वाला ड्रामा।
4: हाँ लगा रहा हूँ यार।
5: देशबंधु चितरंजन दास बंगाल की धरती के उन सहस्त्रों सपूतों में एक थे जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। चितरंजन बचपन से बहुत होनहार और उदार थे। समाज सेवा का गुण उनमें बाल्यपन से ही नजर आने लगा था। चितरंजन का जन्म सन 1870 ईस्वी की 5 नवंबर को कलकत्ता के एक ब्रह्म समाजी परिवार में हुआ था। पिता भुवन मोहनदास और माता निस्तारिणी देवी दोनों ही सुशिक्षित और अत्यंत कर्मठ थे।
6: के होच्चे? कौन है, अंदर आइए।
7: प्रणाम, भुवन बाबू है?
6: ना, वो तो बाहर गए हैं। कहिए।
7: बस ये मेरा लेख है, भुवन बाबू ने ब्रह्मा पब्लिक ओपिनियन पत्रिका के लिए मांगा था।
6: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोशुन आपने, बोशुन।
7: भुवन बाबू जब से पत्रिका के संपादक हुए हैं, पत्रिका और अच्छी हो गई है।
6: जी।
8: माँ, माँ, खाना दो ना, मुझे भूख लगी है।
6: क्यों, तुझको पैसे दिए थे ना, वो क्या हुए?
8: वो उधर मेरी पाठशाला के पास कितने बच्चे भूखे थे, मैंने खाना खरीद के उनको खिला दिया। माँ अब शाम हो गई है, मुझे भूख लगी है, खाना दो।
7: आपका बेटा बहुत होनहार है, इसकी आंखों में तो किसी महापुरुष का तेज है, ये तो बहुत महान कार्य करेगा बड़े होकर।
5: चितरंजन दास 20 वर्ष की आयु तक कलकत्ते में ही पले बढ़े और बीए की परीक्षा पास की। विद्यार्थी जीवन में वो लंबे समय तक विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे। बीए पूरा होते ही उन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया।
9: चितरंजन भाई, पहली बार कोई भारतीय पार्लियामेंट के चुनाव में खड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या दादा भाई नरोजी जीत पाएंगे?
10: जीत पाएंगे या नहीं, ये तो सोचना भी नहीं है और सोचने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, दादा भाई की विजय। वो जो नए 6 युवा कहाँ हैं हमारी मदद के लिए, शाम को उनके साथ मीटिंग रखी है मैंने, आप भवन पहुंच जाइएगा समय पर।
9: अवश्य रंजन बाबू, आप चिंता ना करें।
5: चितरंजन दास की दौड़ धूप रंग लाई और दादा भाई विजयी हुए। इस जीत की जितनी खुशी चितरंजन दास को थी उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। चितरंजन अब और निर्भीकता से अंग्रेजों की नीतियों और प्रचारों का विरोध करने लगे।
10: ये अंग्रेज जो इस बात का बार बार प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर तलवार के बल पर विजय प्राप्त की है और वह तलवार के बल पर ही भारत को अपने अधिकार में रखेंगे, ये सरासर गलत बात है। अंग्रेजों ने तलवार के बल पर नहीं अपनी धूर्तता और चालाकी के बल पर ही भारत पर विजय प्राप्त की है। वह भले ही चालाकी से भारत पर शासन कर रहे हैं परंतु उनकी धूर्तता सदा नहीं चल सकेगी। मुझे ICS की परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया पर मैं यहां हारने नहीं आया। हमें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है।
5: चितरंजन दास ने तुरंत ही बैरिस्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी और बड़े परिश्रम से उत्तीर्ण हुए। वे 1893 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टरी करने लगे।
0: चितरंजन बाबू, आपका जीवन में सारे कठिन पथ ही हैं, क्यों?
3: हाँ दादा,
0: पर मुझे विश्वास है कि आप तब भी बहुत आगे जाएंगे। अच्छा हाँ, विवाह की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चितरंजन बाबू असम रियासत से खोज लाए हैं, वो भी दीवान की पुत्री है, ऐसी वैसी नहीं, बहुत पढ़ी लिखी है। बाबू जरा नाम तो बता दो हमारी बौद्धी का।
3: वासंती देवी नाम है उनका। आप खुश? चलो थोड़ा काम भी कर लो।
11: ए लीजिए पानी। किन विचारों में डूबे हैं? इतना परेशान क्यों है आप?
3: तुम्हें तो जरूर बताऊंगा, आखिरकार तुम्हारा हक है जानने का।
11: बस ज्यादा सोच विचार मत करिए और कह दीजिए आखिर क्या परेशानी है।
3: वासंती, तुम तो जानती हो मेरे पिता हमेशा से उदारवादी रहे हैं। बाबा के एक मित्र पर 30,000 रुपए का ऋण था। मित्र की मदद करने के लिए बाबा उनके जामीन बन गए, किंतु समय के पहले ही मित्र ने उनको धोखा दे दिया। अब वो ऋण बाबा को देना पड़ेगा, पर बाबा के पास तो है ही नहीं।
11: नहीं नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अब बाबा इतना सारा रुपया कहाँ से देंगे आखिर? ये दायित्व तो हमको निभाना होगा।
3: मैं तो हमेशा से जानता था वासंती कि तुम मेरा साथ दोगी, किंतु इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, वो ही मेरी चिंता है।
11: ये स्थिति में तो एक ही रास्ता है, आप बाबा का ऋण अपना ऊपर ले लीजिए और फिर हम घोषित कर देंगे कि हमारा दिवाला निकल गया है।
3: वाह वासंती, तुमने साबित कर दिया कि औरत यदि सुशिक्षित हो तो सभी का कितना भला हो सकता है।
11: इसके बाद आप कठिन परिश्रम करिए और धीरे धीरे बाबा का सारा ऋण चुका दीजिए।
5: चितरंजन दास बेहद परिश्रमी और लगन के धनी थे। इसी बीच 1908 में उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुकदमा आया। यह मुकदमा मणिकतल्ला स्ट्रीट के बम के कारखाने का मुकदमा था, जिसमें अरविंद घोष और दूसरे कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी युवक अभियुक्त थे।
12: यस मिस्टर चितरंजन दास, यू मे कंटिन्यू।
10: मैंने अपने देश की स्वतंत्रता के हित में जो पाठ पढ़ाया है उसका आशय यदि यह समझ लिया गया है कि यह न्याय के विरुद्ध है तो हां मैं अपराधी हूं। न्याय अगर यही कहता है तो मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे इसकी सजा बिल्कुल मिले, लेकिन मुझे ऐसे किसी अपराध की सजा स्वीकार्य नहीं है जो अपराध मैंने किया ही नहीं। मेरा मानस तो यही कहता है कि ऐसा कोई भी काम जिसका मेरा रोम रोम विरोध करता हो वो कोई अपराध नहीं। स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित करने का प्रयास करना यदि मेरी गलती है तो मैं बेशक गलत हूं, मैं इस बात पर तर्क वितर्क नहीं करूंगा। मैंने अपने भविष्य की सभी संभावनाओं को इसी कारण अनदेखा कर दिया। यही कारण है कि मैं कलकत्ता आया ताकि यहां रहकर इस दिशा में परिश्रम कर सकूं। केवल यही एक विचार मेरे मन मस्तिष्क में दिन रात कौंधता है और यह मेरा स्वप्न है। यदि ऐसा करना मेरा अपराध सिद्ध होता है तो कृपया यह अपराध सिद्ध करने के लिए कोई भी गवाह को कटघरे तक लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित हूं। पहना दीजिए मुझे बेड़ियां और डाल दीजिए मुझे जेल में, पर मैं अपने लक्ष्य और कथन से अडिग नहीं होऊंगा।
12: मिस्टर दास, यू मे नाउ प्रोसीड विथ योर स्टेटमेंट इन डिफेंस ऑफ अरविंदो घोष।
10: थैंक यू जज साहब। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि अरविंद घोष जैसा पुरुष जब ऐसी अदालत के सामने खड़ा होता है तो वह इस अदालत ही नहीं वरन इतिहास के उच्च न्यायालय के सामने खड़ा होता है, क्योंकि इस पूरे विवाद के थमने के बाद जब लंबी खामोशी पसरी होगी, इस पूरे विरोध के उथल पुथल के शांत होने के बहुत बहुत बाद, यहां तक कि जब वो सुधार चुके होंगे, जा चुके होंगे इस दुनिया से दूर, उसके भी बहुत बहुत बाद, पर उसे याद किया जाएगा, उसे याद किया जाएगा एक महान देशभक्त कवि के रूप में, उसे जाना जाएगा मानवता और देश प्रेम के पैगंबर के रूप में। वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके कहे शब्द सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि सात समंदर पार तक की दुनिया में गूंज उठेंगे।
12: I announce the judgment in favor of the accused and congratulate Mr. C.R. Das for his job. Reader, please read this in Hindi.
0: जज साहब ने फैसले के बाद अपनी किताब में जो स्टेटमेंट लिखा है वो इस प्रकार है। मैं यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि चितरंजन दास जी की बुद्धिमत्ता के ही कारण अभियुक्त अपराध से मुक्त हो सके हैं।
5: सन 1914 में दास बाबू ने पहला दीवानी मुकदमा लिया जो डुमराव राज्य का था और बड़ा पेचीदा था, परंतु वो सफल हुए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। 1917 में कलकत्ते में बंगाल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, यहीं से चितरंजन का कांग्रेस से संबंध स्थापित हो गया और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। इस सम्मेलन में चितरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया। उनके प्रभावशाली भाषण ने सबको मोह लिया।
10: हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम एक संपूर्ण राष्ट्र में रह रहे हैं और पिछले कई वर्षों से रहते आए हैं। हम यह भी नहीं भूल सकते कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्य निरंतर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। सिर्फ विभिन्न राज्यों की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की नई लहर बह रही है। यह बेहद सुखद है कि इस राष्ट्रीयता और राष्ट्र के हित में ही हम सभी का हित, महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थपरक आशाएं सभी कुछ समाहित हैं।

0: 18 मार्च 1918 को राममूर्ति पवेलियन में अंग्रेजों के खिलाफ एक मीटिंग थी, जिसमें कुछ अंग्रेज भी उपस्थित थे। इसमें सीआर दास ने जो भाषण दिया, उससे उनकी लोकप्रियता ने बेहद जोर पकड़ लिया। ये भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया था ताकि अंग्रेजों तक बात स्पष्ट पहुंच सके। जेंटलमैन, व्हेन आई कंसीडर द ऑब्जेक्शंस पुट फॉरवर्ड टू द ग्रांट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आई कैन हार्डली की।
1: भाइयों, मैं जब भी हमारी स्वराज की मांग के खिलाफ अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई विरोधात्मक दलीलों पर नजर डालता हूं तो मेरा धैर्य खोने लगता है। सुनिए वो क्या कहते हैं। उनके हिसाब से हम अपनी खुद की सरकार बनाने के लायक शिक्षित नहीं हैं। मैं पूछता हूं, ये किसकी गलती है आखिर? पिछले 150 सालों से वो हम पे शासन कर रहे हैं और इतने लंबे समय में भी इस देश की जनता को इतना भी शिक्षित नहीं कर पाए कि हम अपने बल पर खड़े हो सके।
0: 1921 गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो चितरंजन दास भी वकालत छोड़ के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे उसी समय से खद्दर पहनने लगे थे और सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे थे।
1: स्वराज का अर्थ है कि हम सब किसी बाहर वाले पे नहीं बल्कि अपने ही राष्ट्र में एक दूसरे पर निर्भर हो, स्वावलंबी होते हुए आत्मनिर्भर होकर रहे। हम सभी आज किसी के गुलाम हैं। हमारी आर्थिक गुलामी हमारी राजनीतिक गुलामी से कहीं ज्यादा नुकसानदायक है। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों के लिए हर साल 60 करोड़ रुपया खर्च होता है और वहीं पर जब इसी लागत का कपड़ा भारत से बाहर जाता है तो वह निशुल्क होता है। यदि किसी भी परिवार का एक सदस्य भी रोजाना चरखे पर 2 घंटा सूत काटेगा तो वर्ष के अंत तक अपने परिवार की सभी जरूरतें जुटाने में समर्थ होगा। इसीलिए हमारा नारा है, विदेशी छोड़ो स्वदेशी पहनो।

0: দাদা পুলিশ
1: কিছু হবে না দাদা বসুন আপনি
2: চতুরঞ্জন দাস আপকে নাম ওয়ারেন্ট হ্যায়
1: কিস বাত কা
2: সরকার বিরোধী গতিবিধিও মে হিসা লেনা और आम सभाओं में देश की जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप है आप पर।
1: चलो भाई।
3: इधर अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी जोरों पर थी और चितरंजन दास को ही इसका अध्यक्ष चुना गया था।
4: आ तो गजब थई गयो, चितरंजन बाबू को गिरफ्तार कर लिया है।
5: इतना परेशान मत हो भाई, ये तो होना ही था। कितनी सजा सुनाई गई है?
4: 6 महीने।
5: हाँ, इसका मतलब है कि दास बाबू अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे।
4: पर बापू, ये डाक में उनका संदेश आया है कुछ।
5: अच्छा, देखूं तो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी और परिश्रमी होना। जरा पढ़ के सुनाओ, दास बाबू ने अध्यक्षता का कर्तव्य निभाया है और अपना संदेश भेजा है जो सम्मेलन में पढ़ा जा सके, उनकी गैर हाजिरी में भी।
4: लाइए, हम अपनी स्वतंत्रता की बात पुरजोर तरीके से करेंगे, क्योंकि हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सभी में अपनी वैयक्तिकता को संवारने और अपनी नियति को निर्धारित करने का सामर्थ्य है। इसका कारण यही है कि हम पश्चिमी सभ्यता से शिक्षित होने योग्य सभी बातों और पाश्चात्य विचारधाराओं से निर्मित किसी भी संस्थानों से न ही विचलित हुए हैं और न ही अपने को कमतर समझते हैं। वंदे मातरम।
3: असहयोग आंदोलन कुछ दिनों चलकर ही बंद हो गया, जिससे चारों ओर निराशा उत्पन्न हो गई।

0: बधाई हो दादा, बधाई हो।
1: मध्य भारत में भी स्वराज ने बड़ी जीत हासिल की है।
2: कीगो, सुनचो, आपका लिए गवर्नर के पास से पत्र आया है।
1: मुझे मालूम था ऐसा हो सकता है।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे वही, गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने मुझे सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। दादा, मेरा जवाब भेज दो गवर्नर को।
3: हैं, किया जवाब लिखूं बाबू?
1: लिखो। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं उनका आमंत्रण। हम सरकार बनाने के लिए काउंसिल में नहीं आए हैं, हम आए हैं अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए। दादा।
3: हाँ बाबू।
1: अब हमारा उद्देश्य कॉरपोरेशन चुनाव है।
4: चितरंजन दास कॉरपोरेशन के मेयर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। कुछ समय बाद ही कलकत्ता में ट्रेड यूनियन मजदूर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके भी अध्यक्ष दास बाबू ही थे। 1925 ईस्वी के प्रारंभ में सिराजगंज में स्वराज पार्टी का सम्मेलन हुआ।
5: यह ठीक नहीं है, साहब के ऊपर हत्या का आरोप है।
6: हाँ भाई, गोपीनाथ साहा के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं।
5: हाँ। आखिर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इसके पक्ष में नहीं है, फिर हम क्या चीज है?
1: मैं जानता हूँ कि क्रांतिकारियों की हिंसा को हम उचित नहीं मानते, किंतु हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि क्रांतिकारी किसी की हत्या करके कोई अपराध करता है, क्योंकि हत्या के मूल में उसका कोई अपना स्वार्थ ना होकर देश हित होता है।
4: बचपन से ही उदारवादी रहे दास बाबू ने सन 1925 ईस्वी में ही अपनी सारी संपत्ति दान करके एक ट्रस्ट बना दिया था। वो ट्रस्ट आज भी चितरंजन सेवा सदन के नाम से काम करता है, जिसके अस्पताल में आज लाखों रोगियों का मुफ्त इलाज होता है। 1925 ईस्वी की 16 जून को दार्जिलिंग में चितरंजन दास का स्वर्गवास हो गया। वे निमोनिया से पीड़ित थे। उनके शिष्य कहे जाने वाले महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कुछ ऐसा कहा।
7: अल सुबह 1921 वो एक पूर्ण रूप से समर्पित राजनीतिज्ञ ही नहीं, सामाजिक अधिकारों से ओतप्रोत एक आत्मा की तरह विद्यमान थे, जैसे इन तमाम बातों के लिए एक नई आत्मा ने जन्म लिया। जीवन की उस संपूर्णता से प्रेरित हो उन्होंने उस राजनीतिक संघर्ष के घमासान में छलांग लगा दी, जो मानवता व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की चेतना लिए हुए थी। राष्ट्र के प्रति उनके त्याग और समर्पण भाव से उन्हें देशवासियों का असीम स्नेह और आदर प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्हें लोग देश बंधु नाम से भी जानने लगे, अर्थात जो देश का सच्चा दोस्त हो।
4: वहीं सरोजनी नायडू ने भी अपनी भावना व्यक्त की।
8: देश बंधु दास अपने जीवन की क्रियाशीलता में एक सम्राट का सा आवेग रखते थे। वित्याग, समर्पण और सहृदयता के अपार वैभव के धनी थे। राष्ट्र की प्रतिमूर्ति बन उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सेवा की। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक ओजस्वी व्यक्तित्व की तरह याद किए जाएंगे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, ऐसे ऐतिहासिक पन्नों में जिसमें हमारी आध्यात्मिक धरोहर का वैभव और उसकी काव्यात्मक सुंदरता ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बयान करेगी।
4: देश बंधु चितरंजन दास की मृत्यु से सारे देश में शोक का सागर उमड़ पड़ा। कलकत्ते में लगभग 3 लाख नरनारी उनकी शव यात्रा में उपस्थित थे। स्वयं गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे।

0: तभी से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। एक अंतराल के बाद सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: आज हम बात करेंगे काउंसलिंग पर। क्या है काउंसलिंग, क्यों काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, किन लोगों को काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, मदद लेना चाहिए काउंसलर की, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन्हें करना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जी। नेहा जी 104 में भी काउंसलर रही हैं, प्राइवेट काउंसलिंग भी करती हैं और एक लंबे समय से स्पेशल जुड़ी हुई है। इस तमाम जानकारी और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेहा शर्मा। आपसे हम पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में कि क्या है काउंसलिंग और आप इस पेशे में कैसे आई।
5: काउंसलिंग है आज के समय में लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, और धैर्य के साथ सुनना ही काउंसलिंग है। दूसरा लोग जज करना चाहते हैं कि अपनी बात किसी तक नहीं रख पाते हैं क्योंकि लोग उन्हें जज करते हैं। वो सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, डरते हैं अपनी बात रखने में। तो कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी मैं। मुसीबत में सहारा देने वाला कांधा और हर बात को धैर्य से सुनने वाला कान, वही काउंसलर होता है।
4: आप इस पेशे में कैसे हैं?
5: मुझे सेवा चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। और लोग है ना, शरीर की परेशानियों को तो समझते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, कैंसर है, टीबी है, लेकिन ब्रेन की समस्या कोई नहीं समझ पाता है। भावनाओं की समस्याओं को नहीं समझ पाता है, गुस्सा, टेंशन, नींद नहीं आना और अकेलापन, उसको दूर करने के लिए मैंने इस पेशे में आई और इन परेशानियों को समझना चाहा कि ये समस्याएं क्यों है, किस कारण है। क्योंकि बाहर की समस्या तो दिखती है आपको शरीर की, लेकिन जो मन के अंदर समस्या है, जो ब्रेन के अंदर समस्या है, वो नहीं कोई समझ पाता है। तो उन परेशानियों को मैंने कुछ अंदर से फील किया और उसके बारे में मैं समस्या का मैं कैसे समाधान कर पाऊँ, लोगों को कैसे हैप्पीनेस दे पाऊँ, इस समस्या को लोगों को कैसे दूर निकाल पाऊँ, तो इस पेशे में मैं आई।
4: एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपको लगता है कि काउंसलिंग, जैसे आपने शुरू में अपनी बात कही थी, आपने कहा था कि सहारा देने वाला, समझने वाला या सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो काउंसलिंग का सबसे प्रमुख अंग आपने बताया, और वही शायद सबसे बड़ा काम एक काउंसलर करता है, मैं ठीक कह रहा हूँ?
5: जी जी।
4: तो काउंसलर, क्या आप माना जाए कि ये जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें काउंसलर की आवश्यकता या काउंसलिंग की जरूरत लोगों को ज्यादा पड़ रही है?
5: अब 90% लोगों को काउंसलर की जरूरत है, क्योंकि आजकल क्या, एक तो तुरंत चाहिए, इमीडिएट, धैर्य नहीं है, है ना, और अपेक्षाएं बहुत हैं, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। आज जो नई जनरेशन है, पहले का नहीं, जो न्यू जनरेशन है, जो विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत देश में है, हमारे देश में सबसे, लेकिन युवा को मेहनत नहीं करना है, धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, उसको इमीडिएट सब कुछ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़े बंगले चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, लेकिन ये नहीं मालूम कि बड़ी चीजें कैसे आएंगी, है ना। उसके मन में संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, बस तुरंत डिप्रेस हो जाना, मोबाइल का एडिक्शन, तो इन सारी चीजों को लेकर उसको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है।
4: क्या सिर्फ युवाओं में ही काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी उम्र का व्यक्ति या काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और आपसे संपर्क करते लोग?
5: सभी उम्र के लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हर उम्र का एक अलग अलग फेस आता है, जैसे कि युवा है उनका अलग है, माता पिता का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, शादी नहीं हुई है उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिनकी शादी हो चुकी है उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत है, सास ससुर बन गए हैं तो उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत है, हर उस स्टेज में अलग अलग काउंसलिंग की जरूरत होती है।
4: तो सामान्यतः जैसे आपने अपने परिचय में बताया भी था कि आप 104 जो एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आपने कई लंबे समय तक आप अपनी सेवाएं दी आपने, तो वहां सामान्यतः किस तरह के लोगों के कॉल आते थे आपके पास?
5: हर तरह के कॉल आते थे, मानसिक समस्याओं को लेकर आते थे, शारीरिक समस्याओं को लेकर आते थे, सामाजिक समस्याओं को लेकर आते थे, भावनात्मक समस्याओं को लेकर आते थे, कैरियर की काउंसलिंग होती थी, जितनी भी काउंसलिंग होती थी सारी काउंसलिंग के वहाँ पे कॉल आते थे। मतलब जितनी भी सारी
4: नंबर बताया, ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, तो इसमें क्या कोई सभी लोग कॉल कर सकते हैं और ये क्या निशुल्क है?
5: जी जी जी, इसमें सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश के लोग कॉल कर सकते हैं और ये निशुल्क नंबर है।
4: एक समस्या, मतलब जैसे लोग अपनी जब व्यक्तिगत कोई समस्या बताते हैं तो लोगों के अंदर एक बड़ी वो एक झिझक भी होती है, उन्हें डर भी होता है कि वो अपने बारे में बता रहे हैं, वो जो आपको समस्या बताते हैं वहाँ पे काउंसलर को, उसपे कितनी गोपनीयता कितनी रखी जाती है?
5: 100% गोपनीयता होती है काउंसलर का। सबसे पहले आपसे मैंने यही कहा ना कि काउंसलिंग की सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैंने मुसीबत में सहारा देने वाला कांधा और हर बात को धैर्य से सुनने वाला। तो मुसीबत मतलब कि लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी बात को गोपनीय रखा जाएगा या नहीं। तो 100% काउंसलर का सबसे बड़ा ये कि विश्वास, विश्वसनीयता, धैर्य, ये उसकी सबसे बड़ी मतलब एक शक्ति है। तभी वो व्यक्ति वो आपको सारी बातें बताएगा। एक दूसरा उसमें जज नहीं करेंगे, उसमें जजनेस नहीं होती, हम जज नहीं करते, कोई भी अपनी बात तो कह सकते हैं। तो 100% गोपनीयता रखी जाती है,
4: गोपनीयता रखी जाती है, उसका कोई चार्ज भी नहीं है। और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसको भी लगता है कि वो किसी भी विषय पे बात करना है, किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, किसी कोई भी समस्या उसे लगती है, तो वो बिना झिझक 104 नंबर डायल करके काउंसलर से बात कर सकता है। जैसे आपके कोई एग्जांपल दें, आप किसी भी युवा का बिना नाम जाने कि किस तरह के सवाल वो आपसे करते थे और फिर उसके लिए क्या रास्ता आप लोग सुझाते हैं उन्हें?
5: आत्महत्या से संबंधित आते थे हमारे पास कि हमको सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, हमें सुसाइड करना है। सुसाइड के बाद ब्रेकअप के आते थे कि ब्रेकअप हो चुका है। नशे से संबंधित आते थे, नशे की लत है, डिप्रेशन से संबंधित आते थे, डिप्रेस है, अकेलेपन से संबंधित आते थे, अकेलेपन से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता था। OCD से संबंधित कॉल आते थे कि जिसमें अत्यधिक सफाई की बीमारी है। कैरियर से संबंधित कॉल आते थे, कैरियर बनाना चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार फेलियर हो रहा है, उससे संबंधित कॉल आते थे।
4: कोई भी जो विषय आपको ऐसा याद आता हो एक या दो लोगों का कि उन्होंने आपको ये समस्या बताई और फिर आपने उसका निदान बताया, हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम सुनना चाहेंगे आप।
5: एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का था, किशोर अवस्था का बच्चा था, जो 14 से 15 साल की एज का होगा। उससे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई और उसको ये कहा गया कि तुमको हम पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा अगर तुमने ये बात नहीं बताई या कुछ ऐसा। तो कहीं से उसने ये नंबर पढ़ा और उसको ये कॉल करना था, तो उसने मुझे कॉल किया कि 104 का मेरे को नंबर मिला है और मैं आपसे साथ में बात करना चाहता हूँ। उसने बोला कि मुझे अगर ऐसा नहीं होगा या मैंने कुछ इस तरह का उसके व्यक्तिगत कुछ अव्यूज शब्द यूज किए या गलत कहा तो उसके कारण उसको पुलिस को बता दिया जाएगा और अगर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो फिर मैंने उसे समझाया कि नहीं, सुसाइड क्यों करना है। फिर उसकी काउंसलिंग की मैंने और दूसरे दिन उसको मुझे फिर कॉल आया कि मैडम अगर आप मेरी सहायता नहीं करती तो मैं सुसाइड कर लेता।
4: मतलब बड़ा कह सकते हैं बड़ा क्षणिक होता होगा इस तरह का संभवता कि एक काउंसलर से बात।
5: किशोर अवस्था में समझ में नहीं आता ना, बच्चा है 14 साल का, 12 से 14 या 15 की एज थी, अब उसे नहीं मालूम ना। एकदम से उसको बोला कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस ले जाएगी, तो उसको बदनामी का डर था कि मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज में बदनामी हो जाएगी, इसने ऐसा। तो डर गया, तो डर के कारण उसको लगा कि सबसे अच्छा आसान रास्ता सुसाइड कर लूं मैं, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो कैसे बदनामी होगी।
4: मैं आपको टोक रहा हूं, बल्कि मैं तो ही कहता हूं सबसे आसान रास्ता काउंसलर से बात कर ली जाए।
5: जी जी जी, तो उसने तुरंत ही पता नहीं कैसे इमीडिएटली बात हुई इससे और उसने मुझे दूसरे दिन यही बोला कि मैडम थैंक यू, मैंने आपसे बात की, नहीं तो आज मेरे को बिल्कुल था कि आज मैं सुसाइड कर ही लूंगा। और दूसरा एक था कि कोई बहुत अच्छी पोस्ट को लेकर जिनका सिलेक्शन होना था, बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। कंटिन्यू उन्होंने हमसे काउंसलिंग ली, काउंसलिंग लेते लेते लेते डिप्रेशन से बाहर निकले और एक आज बहुत अच्छे उच्च पद पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जब उनका अच्छे उस पद पर सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने हमको फिर थैंक यू कहकर फिर उन्होंने हमको कॉल किया। ये सब रिकॉर्डिंग्स वैसे हमारे पास वहाँ रहती हैं 104 में।
4: अगर आत्महत्या की बात करें तो जब भी किसी के मन में इस तरह का विचार आता है तो सबसे बेहतर है कि वो काउंसलर से बात कर ले, डॉक्टर से बात कर ले, जिसमें काउंसलिंग मिल जाती। अच्छा, 1-to-1 जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सरकार ने इस तरह के नंबर भी चूज करे हुए हैं और प्राइवेट काउंसलिंग भी शहर में, देश में अलग अलग जगह चली रही है। कोई भी फैसला लेने से पहले काउंसलर से बात करें, इसलिए काउंसलिंग की आज के समय में बहुत ज्यादा महत्ता है।
5: बिल्कुल आप ठीक करें, टॉक थेरेपी होती है बात करने से। आपने सुना होगा, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत होती है ना कि दुख बांटने से मतलब कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है।
4: बिल्कुल।
5: तो आप अपनी बात कह देते हो तो कहने से आपकी 90% समस्या का समाधान हो जाता है। एक फेस होता है, सबकी लाइफ एक फेस आता है, वो फेस निकल जाता है। जैसे इमीडिएट मन में एक भाव आते हैं, जैसे पानी का एक बहाव आता है ना, एकदम से नदी उबाल पे आती है और एकदम से स्लो हो जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर भावनाएं होती है जो दिखती नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कैंसर एक बीमारी है जो दिख जाएगी, टीबी एक बीमारी है वो दिखेगी आपको। अगर कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी है वो आपको दिख जाएगा, ट्यूमर है, लेकिन अंदर जो भावनाएं हो रही है, भावनाओं में जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, ये सारी चीजें आपको दिखती नहीं है। और उसी टाइम में ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए। वो कई बार बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होने से, तो ये सिर्फ कुछ क्षणिक होता है। अगर उस समय आपने किसी से बात कर ली और वो आधा घंटा आप लगातार उससे बात करते रहे, कंटिन्यू वो आपसे जब जब उसको ऐसा फील होता है वो आपसे बात करता रहेगा, तो उसके अंदर वो तो वो फेस निकल जाता है। ये बहुत टाइम के लिए फेस नहीं होता है, हर अवस्था में ये फेस आता है।
4: एक चीज और जानना चाहेंगे नेहा जी, कि ये डिजिटलाइजेशन जैसा भी बढ़ा है या सोशल मीडिया का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर घर के हर व्यक्ति के हाथ में एक अपना मोबाइल है और इसलिए वो एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। सोशल मीडिया को आप जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें कितना इफेक्टिव देखते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों बात करें हम।
5: देखिए, अगर इसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी एक चीज है, ये तो एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद के रूप में ऐसा है, बेटे आपकी हर चीज आसान हो रही है। अगर आपको एग्जांपल, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसे उन्हें खाना बनाना है तो इजीली वो देख सकते हैं कि उनको खाना कैसे बनाना है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में हर चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर तुरंत देखना है कि किसी भी संबंधित जानकारी अगर आपको लेना है तो आप इजीली उसमें ले सकते हैं।
4: तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव चीजों को देखना ही एक काउंसलर का काम है और काउंसलिंग के लिए बहुत अहम, मतलब इम्पोर्टेंट है कि लोग भी किसी भी चीज के पॉजिटिव पक्ष को ज्यादा देखें। क्या कहेंगे आप?
5: जी, मैं ये कहूंगी रिसर्च है। आप देखेंगे कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव भी होती है, तभी आपको वहाँ पे अच्छा लगता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, हैप्पीनेस के बारे में करते हैं, तो आपके हार्मोन्स हैप्पीनेस होते हैं, आपका ब्लड का सर्कुलेशन शांत रहता है। वहीं आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो वहीं आपके ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होने लगेगा। और चाहे तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं। दो पौधों के ऊपर रिसर्च किया गया था। एक पौधे को आप पानी दीजिए और उसको ये बोलिए कि ये बहुत प्यारा पौधा है, बहुत पॉजिटिव है, इसमें अच्छे अच्छे फूल उगेंगे, बहुत अच्छा बनेगा, बड़ा होगा पौधा, बहुत सुंदर है, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए। वहीं दूसरे पौधे को पानी देते हुए आप उसको नेगेटिव वाइब्स देंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। ये रिसर्च है। इसीलिए पॉजिटिव आप जितना सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, और दूसरा जरूरी वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना, ना कि भविष्य ना वर्तमान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भविष्य में रहना, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं और पॉजिटिवनेस के साथ रहते हैं तो आप हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपको ना ही डिप्रेशन होगा, ना ही एंजाइटी होगी, ना ही आपको अकेलापन होगा। इसलिए पॉजिटिव पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है।
4: जो लोग आपसे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो शहरी लोग या ग्रामीण लोग इसमें कोई अंतर देखते हैं कि क्या शहरी लोग ज्यादा काउंसलिंग उनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें, या ग्रामीणों को, या इस तरह का कोई भेद है नहीं?
5: ये जागरूक लोगों के ऊपर है। अच्छा। जो लोग जागरूक हैं वो लोग काउंसलिंग लेते हैं। क्या होता है, काउंसलिंग को लोगों ने, अगर मानसिक संबंधित हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बात किया जाए तो वो लोग समझते नहीं है उस चीज को। वो समझते हैं कि पागल व्यक्ति ही काउंसलिंग ले सकता है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो लोग काउंसलिंग लेते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, जो जागरूक हैं, जागरूक अब उसको पढ़े लिखे कहें, जागरूक कहें, समझदार कहें, वही लोग काउंसलिंग ले पाते हैं।
4: अच्छा, तो युवा जो होते हैं, छात्र या करियर काउंसलिंग भी बहुत कॉमन सा लोगों ने सुन रखा है, तो ये करियर काउंसलिंग क्या होती है, या जो युवा है वो तनाव या अवसाद में आते हैं, इनके कारण क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप?
5: देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण माता पिता को कहा जाएगा। उनको बच्चों से उम्मीदें बहुत हैं। बच्चे को 99% लाना चाहिए, 90 भी नहीं आना चाहिए, है ना। बच्चा के साथ वो कंपैरिजन करते हैं, बच्चे से उम्मीदें बहुत ज्यादा रखते हैं। बच्चा दबाव में आकर अपने रुचि का काम नहीं कर पाता है। और हमारे यहाँ काम को बड़ा और छोटा बड़ा देखा गया है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बहुत अच्छा है ना। हमारे यहाँ अगर कोई कुक बनता है या कोई शेफ बनता है तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं कहा जाता है। और एक कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार, एक कहावत कही गई थी है ना। वो तो बच्चे को अगर उसके रुचि का काम करने दिया जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हो, बच्चे को कहा जाए कि पढ़ाई आप अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कीजिए, इससे आपका व्यक्तित्व विकास होगा, ना कि उसको बटन की तरह, उसको हैप्पीनेस की तरह अगर वो काम करेगा
4: जी।
5: तो बच्चा इसमें आगे बढ़ेगा। बच्चे के ऊपर ऑलरेडी इतना तनाव दिया जाता है तो वो उसको डर के कारण करता है वो उस काम को।
4: बच्चे जो परेशान होते हैं किसी भी विषय को लेके, मसलन करियर को लेके होते हैं, पढ़ाई को लेके होते हैं, तो वहाँ काउंसलिंग की जरूरत केवल बच्चे को नहीं, उसके पेरेंट्स को भी बराबर में है कि दोनों ये समझे।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर का माहौल कहा जाए तो पूरी हिस्ट्री समझना पड़ती है। पूरी हिस्ट्री के बाद ही मतलब थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म होता है, कई सेशन लिए जाते हैं इसके, बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि तारे जमी पे, अगर तारे जमी पे आप देखेंगे या थ्री इडियट्स देखेंगे, ये सारी साइकोलॉजिकल ही फिल्में बनी गई हुई हैं।
4: अब एक बड़ा वर्ग वो होता है जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स भी हैं, मतलब शादीशुदा इंसान 30 साल से 32 साल 50 साल के कोई किसी भी उम्र का हो सकता है। तो अपने समाज में जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उतनी जल्दी अब तलाक का रेशियो भी बहुत बढ़ चुका है, तो मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता
5: हूँ। उसका तरफ से सबसे ज्यादा पहले के समय में क्या होता था कि पुरुष वर्ग जो होता था वो घर चलाता था, मतलब जीविका मतलब घर में पैसा लाना, वो जो महिला होती थी वो घर की देखभाल करना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, थोड़ा सा उनको धैर्य भी सिखाया जाता था। आजकल बराबर से हैं, दोनों बराबर पढ़े लिखे हैं, दोनों ज्यादा बराबर कमाते हैं, है ना, और कोई सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, दोनों को बराबर से गुस्सा आता है, और हम क्यों किसी की सुने, हम क्यों करें, हमने भी पढ़ाई की है। तो इस तरह की आपसी मतभेद होते हैं, कोई थोड़ा सा धीरज नहीं रखना चाहता है, पॉजिटिव नहीं सोचना चाहता है, जरा में अग्रेसिव हो जाता है, रिश्ते तुरंत तोड़ना चाहता है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था शादी 7 जन्मों का रिश्ता है
4: जी।
5: इसे 7 जन्मों तक नहीं, आज थोड़ी सी बात हुई नहीं, अब हमें साथ नहीं रहना है, अब हम तो डाइवोर्स लेना है, बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते।
4: आपको याद आता है कि आपके यहाँ से इस तरह के मतलब मैरिड कपल्स उनका कॉल आया और वो तलाक पर जाने की चाह रहे हूँ, अगर कोई आपको कॉल याद आए तो?
5: जी ऐसे कई कॉल आते थे जो तलाक तक जाना चाहते थे, फिर हम लोगों की बराबर से काउंसलिंग करते थे, कई सेशन लेते थे, आपस की चीजों को समझते थे, जब बहुत समझते थे अगर ठीक है दोनों समझने को तैयार हैं तो ठीक है, और नहीं समझना चाहते हैं तो फिर बाकी दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाता था पूरा, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास करते थे।
4: नहीं ये तो खैर आपका प्रयास, लेकिन ये भी कहेंगे समाज को ये समझना चाहिए कि काउंसलिंग मतलब हमारा भी उद्देश्य है, काउंसलिंग जितने लोगों तक पहुंच चुकी है बात वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो लोग किसी न किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो काउंसलर का सहारा जरूर ले सकते हैं, काउंसलिंग की तरफ अब जरूर बढ़े ताकि जो भी उन अंतिम फैसला होगा उनके हाथ में, लेकिन कम से कम उनको ऐसा लगेगा कि समस्याएं कहीं कम हो रही है और रास्ता उन्हें मिलेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
5: बहुत ठीक कह रहे हैं आप। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा ना कि काउंसलिंग की सबसे अच्छी बात होती है सुनना, आजकल कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, तो जो काउंसलर होता है वो बहुत धैर्य से सुनता है और समझता है, दूसरा उनको जज नहीं करता है, उसको सुनता है समझता है, तो उसको भरोसे के साथ वो सारी बातें बता बता कर उस टाइम में वो नॉर्मल होकर फिर उस पर उसको भरोसा होता है तो उसकी बातों को वो समझने लगता है।
4: एक कारण आपको लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि इस बातचीत में जो निकल के आ रहा है, जो हमारा समाज था या जो हमारा परिवेश था वो सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और जो ये संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है उसके बाद से काउंसलिंग की आवश्यकता शायद ज्यादा पड़ने लगी, क्या ये ठीक है?
5: बहुत हद तक बिल्कुल ही ठीक है। संयुक्त परिवार से बहुत लाभ होते हैं, बच्चों को संस्कार मिलते हैं और सामंजस्य आता है। जैसे एक दो कमरे हैं तो अगर दो कमरे हैं और उसमें 6 लोग हैं तो उनको समझ में आता है कि ठीक है 3 लोग एक कमरे में रहेंगे 3 लोग एक कमरे में रहेंगे, और बड़ों की डांट सुनने की उनको आदत होती है कि बड़े डांटेंगे, रोक टोक की उनको आदत होती है, तनाव नहीं होता है संयुक्त परिवार में रहने से, क्योंकि काम बटे हुए होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स आता है संयुक्त में रहने से।
4: आपसे बातचीत का सिलसिला तो बड़ा लंबा चल रहा है और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला बना रहे, क्योंकि अभी तो शायद बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपरी सतही तौर पर आपसे काउंसलिंग को लेकर बात हो पाई है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय की एक सीमा होती है हमारे कार्यक्रमों को लेकर, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे बात करेंगे। हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस उनसे आप क्या कहेंगे कि काउंसलिंग की क्या इम्पोर्टेंस और किन लोगों को काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहिए?
5: काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर उम्र, हर वर्ग और समाज के सभी लोगों को बहुत जरूरी है। अगर हल्का सा भी मन के अंदर कुछ भावनाओं में उथल पुथल हो, मन में कुछ अलग सा लगे, कुछ सूनापन सा लगे, या किसी को कोई बात नहीं बता पा रहे हैं जो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या किसी को नहीं बता पाए, वो काउंसलिंग की मतलब ले सकते हैं। और अगर जिनके पास अच्छे दोस्त हो, जिनके घर में माता पिता हो या जिनके कुछ अच्छे रिश्तेदार हो, तो वो उनके माध्यम से मतलब उनको भी अपनी बात कह सकते हैं। वो उनको लेकिन सही तरह से सुझाव, उनको इतना भरोसा हो कि यहाँ से हम बात कहेंगे तो हमें सही मार्गदर्शन यहाँ से हमें मिलेगा, तो वो उन लोगों से भी बात कर सकते हैं।
4: नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आपने जो काउंसलिंग को लेकर इतने विस्तार से हमें चीजें बताई, हालांकि ये विषय अभी अधूरा सा है, इसमें काफी कुछ है काउंसलिंग को, हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपसे इस विषय पे बात करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए।
5: चलिए जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
6: तो इस कार्यक्रम से फिलहाल हमें दी इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम से हम सभी को दीजिए अनुमति, लेकिन सुनना न भूलिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
7: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ...90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद देश विदेशों में घूमकर वहां के लोगों को भारत संबंधी ज्ञान बांट कर आए थे। उन्हें भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। इसी के साथ वे खुद भी विदेश से परिचित हुए थे। वहां के लोगों को आबोहवा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, लोकाचार, यहां तक कि फैशन तक को जान लिया था। वे इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, सभी देशों के उद्भव तथा विकास के इतिहास से भी वे परिचित थे। विदेश से वापस आकर समय समय पर वे उनसे मिलने आने वालों से ये सभी बातें साझा करते थे। लोग भी विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होते थे।
1: आपने स्वामी जी द्वारा वर्णित पश्चिम और पूर्वी देशों में आहार, आचार विचार और लोकाचारों की बातें सुनी। अब हम पोशाक संबंधी उनकी धारणाएं सुनेंगे। उनका वर्णन करने का ढंग अत्यंत मनोहारी था। सभी विषयों को वे तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करते हैं।
2: अलग अलग देशों में कपड़े पहनने की अलग अलग प्रथा है और सभी देशों में पहनने उड़ने के ढंग के साथ कुछ न कुछ भद्रता का संपर्क अवश्य है। भले बुरे की पहचान भी अक्सर कपड़ों से ही की जाती है। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये बातें प्रचलित हैं। अब हमारे देश में भले आदमी नंगे बदन रास्ते में नहीं निकल सकते, भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में माथे पर बिना पगड़ी पहने कोई रास्ते में नहीं निकल सकता। यूरोप में दूसरे देशों की अपेक्षा फ्रांसीसी सब विषयों में आगे हैं। उनके भोजन आदि की सब नकल करते हैं। इस समय भी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में तरह तरह की पोशाकें मौजूद हैं, किंतु भले आदमी होने से ही या दो पैसा पास में होने से ही वो पोशाक गायब हो जाती है और फ्रांसीसी पोशाक का आविर्भाव हो जाता है।
0: उन्होंने यूरोप की पोशाकों का अच्छा खासा वर्णन किया है।
2: काबुली पैजामा पहनने वाले हॉलैंड के कृषक, घाघरा पहनने वाले ग्रीक, तिब्बती पोशाक पसंद करने वाले रूसी जो ही जेंटलमैन बने, त्यों ही उन्होंने फ्रांसीसी कोट पतलून धारण कर लिया। स्त्रियों की तो कुछ बात ही नहीं, पास में पैसा होते ही उन्हें तो पेरिस का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी इस समय धनी देश समझे जाते हैं। उन सभी देशों की पोशाक एक तरह की है, वो फ्रांस की नकल है। परंतु आजकल पेरिस की अपेक्षा लंदन के आदमियों की पोशाक अधिक अच्छी होती है। इसी से पुरुषों की पोशाक लंदन मेड और स्त्रियों की पोशाकें पेरिस मेड होती हैं। जिनके पास पैसा है वे इन दोनों स्थानों की बनी पोशाकें बारहों मास व्यवहार करती हैं। अमेरिका में विदेशों से आई पोशाकों पर बहुत ज्यादा चुंगी ली जाती है, किंतु उतनी अधिक चुंगी देकर भी पेरिस और लंदन की पोशाक ही पहननी पड़ती है। ये काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस समय अमेरिका में कुबेर का प्रधान अड्डा जो है।
1: अब सुनिए प्राचीन भारतीय पहनावे की बात।
2: प्राचीन आर्य लोग धोती चादर पहनते थे। लड़ाई के समय क्षत्रियों में पायजामा और अंगा पहनने का चलन था, बाकी समय सभी धोती चादर, किंतु पगड़ी सभी पहनते थे। बहुत प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं। इस समय बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में केवल लंगोटी से ही शरीर को ढकने का काम चल जाता है, किंतु पगड़ी का पहनना अत्यावश्यक है। बौद्ध कालीन जो पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, उनमें स्त्रियां भी केवल लंगोटी ही पहने रहती हैं। बुद्ध के पिताजी लंगोटी लगाकर सिंहासन पर बैठे हैं, उसी प्रकार उनकी मां भी बैठी हैं। विशेषता केवल यही है कि पैर भर में पैजनी और हाथ भर में कड़ा है, पर पगड़ी जरूर है। धर्म सम्राट अशोक धोती पहन और गले में दुपट्टा डाल नंगे बदन एक डमरू के आकार वाले सिंहासन पर बैठकर नाच देखते थे। कमर से कितने ही चिथड़े लटकते थे, फिर भी पगड़ी थी। जो कुछ होता था सब पगड़ी में। किंतु राज सामंत लोग चुस्त पायजामा और लंबी अचकन पहनते थे। सारथी नलराज ने इस प्रकार रथ चलाया कि राजा ऋतुपर्ण की चादर न जाने कहां उड़ गई और राजा ऋतुपर्ण नंगे बदन ही विवाह करने गए। धोती चादर आर्य लोगों की पुरानी पोशाक थी, इसलिए क्रिया कर्म के समय धोती चादर पहननी पड़ती है।
0: अब वे प्राचीन रोमन और ग्रीक पोशाकों का वर्णन करते हैं।
2: प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों की पोशाक थी धोती चादर। वहां एक प्रधान कपड़ा जो धोती और चादर दोनों का काम देता था तोगा कहलाता था। उसी का अपभ्रंश आज चोगा है, किंतु कभी कभी एक अंगा भी पहनते थे। लड़ाई के समय लोग पायजामा और अचकन पहनते थे। स्त्रियों का एक खूब लंबा चौड़ा चौकोर कपड़ा रहता था जो दो चादरों की लंबाई के बल सीकर और चौड़ाई की ओर खुला छोड़कर बनता था। उसके बीच में से दो बार बांधते हैं, एक बार छाती के नीचे और दूसरी बार पेट के नीचे। इसके बाद ऊपर खुले हुए उस कपड़े के दोनों सिरों को कंधों पर दो जगह बड़ी आलपिनों से अटका लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी कंबल पहनते हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर और सहज है। ऊपर एक चादर रहती है।
1: अब आता है सिले हुए कपड़ों का युग।
2: प्राचीन काल में केवल ईरानी ही काटकर बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे। जान पड़ता है शायद इसे उन लोगों ने चीनियों से सीखा था। चीनी लोग सभ्यता अर्थात भोग विलास सुख स्वच्छंदता के आदि गुरु हैं। अनादिकाल से चीनी टेबल पर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, खाने के लिए कितने यंत्र तंत्र रखते हैं, कई प्रकार की सिली पोशाकें पहनते हैं जिनमें पायजामा टोपी और टोप आदि होते हैं।
0: स्वामी जी से हमें पता चलता है ये पोशाकें कैसे एक देश से चलकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। फिर जलवायु के साथ पोशाक का संबंध भी उन्होंने बखूबी समझाया।
2: सिकंदर शाह ने ईरान को जीता। उन्होंने धोती चादर छोड़कर पायजामा पहनना आरंभ कर दिया। इससे उनकी स्वदेशी सेना इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह जैसा हो गया, किंतु सिकंदर ने कुछ परवाह न कर पायजामों का प्रचार कर ही दिया। गर्म देशों में कपड़े की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, लंगोटी से ही लज्जा निवारण हो जाती है, बाकी सब तो शोभा मात्र हैं। ठंडे देशों में सदा लोग शीत से पीड़ित होकर अस्थिर रहते हैं। असभ्य अवस्था में वे जानवरों की खाल पहना करते थे, क्रमशः कंबल पहनने लगे और फिर कपड़ों की बारी आई। वे कई प्रकार के होने लगे। इसके बाद नंगे बदन गहना पहनने से ठंड के कारण मृत्यु तो हो सकती थी, इसलिए ये अलंकार प्रियता कपड़ों में जा छिपी। जिस प्रकार हमारे देश में गहनों का फैशन बदलता है, उसी प्रकार इन लोगों के कपड़ों का फैशन भी घड़ी घड़ी बदलता रहता है।
1: प्राच्य और पाश्चात्य में सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, पहनने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वामी जी ने कहा,
2: इसलिए ठंडे देशों में बिना सर्वांग कपड़े से ढके किसी के सामने निकलना असभ्यता है। खासकर विलायत में ठीक ठीक पोशाक पहने बिना घर के बाहर जाया ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों का पांव दिखाई पड़ना लज्जा की बात है, किंतु गला और वक्ष का कुछ हिस्सा भले ही खुला रह जाए। हमारे देश में मुंह दिखाना बड़ी लज्जा की बात है, किंतु घूंघट काढ़ने में साड़ी चाहे पीठ से हट जाए तो कुछ हर्ज नहीं। राजपूताना और हिमालय की स्त्रियां मुंह ढाके रहती हैं, चाहे पेट और पीठ भले ही दिख जाए।
0: अब चीनियों के बारे में एक मजेदार कहानी।
2: एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इस लज्जा के संबंध में बड़े अद्भुत उदाहरण देखने में आते हैं। किसी किसी विषय में बहुत ज्यादा लज्जा की जाती है, पर उसकी अपेक्षा अधिक लज्जा वाले विषयों में नाम मात्र की भी लज्जा नहीं की जाती। चीन में स्त्री पुरुष सभी सदा सिर से पैर तक ढके रहते हैं। वहां बौद्ध मतावलंबी नीति में बड़े कुशल हैं। खराब बातें या चाल चलन होने से फौरन सजा दी जाती है। ईसाई पादरियों ने वहां जाकर चीनी भाषा में बाइबल छपवा डाला। उनको पढ़कर चीनी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने चीन में बाइबल के प्रचार को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, ये किसी तरह भी यहां नहीं चलाई जा सकती। इसके ऊपर ईसाई पादरी स्त्रियों का सायंकालीन पोशाक पहनना और भी आपत्तिजनक था। साधारण बुद्धि वाले चीन निवासियों ने कहा, सर्वनाश, इस पुस्तक को पढ़कर हमारे लड़के खराब हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए चीनियों को ईसाइयों पर बहुत क्रोध आ गया। नहीं तो चीनी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करते। सुनते हैं कि पादरियों ने फिर बाइबल छपवाया है, किंतु इससे चीनी लोगों को और भी संदेह हो गया। फिर पाश्चात्य देशों के विभिन्न प्रदेशों में लज्जा, घृणा आदि के विभिन्न प्रकार हैं। अंग्रेजों और अमेरिका वालों के लिए वे एक प्रकार के हैं, फ्रांसीसियों के लिए वे एक दूसरी तरह के, और जर्मनी लोगों के लिए वे तीसरी तरह के हैं। रूसी और तिब्बती लोगों की बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, किंतु तुर्कों का अपना ही रस्म रिवाज है।
0: स्वामी जी हमेशा स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। माँ के प्रति उनकी श्रद्धा सभी को मालूम है। वे शक्ति के उपासक भी थे और ईश्वर उनके लिए मातृ रूप में शक्ति ही थी।
1: वे जब यूरोप गए और वहाँ के लोगों को माँ यानी मदर मेरी की पूजा और भक्ति करते देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पूजा पद्धति के साथ हमारी शक्ति पूजा की तुलना भी की है।
2: यूरोप में प्रोटेस्टेंट तो नगण्य है, धर्म तो कैथलिकों का ही है। उस धर्म में जिहोवा, ईसु और त्रिमूर्ति आदि भी दब गए हैं। सबका आसन मां ने ग्रहण किया है, ईसु को गोद में लिए मां। लाखों स्थानों में, लाखों किस्म से, लाखों रुपयों में, बड़े मकानों में, मंदिरों में, सड़कों में, फूस की झोपड़ी में, सब कहीं बस मां की ही ध्वनि है। बादशाह मां पुकारता है, सेनापति मां पुकारता है, हाथ में झंडा लिए सैनिक पुकारता है मां, जहाज पर मल्लाह पुकारता है मां, रास्ते के कोने में पड़ा हुआ भिखारी पुकारता है मां, धन्य मेरी, धन्य मेरी, धन्य मेरी। दिन रात यही ध्वनि उठती है।
0: हम भी शक्ति पूजा करते हैं, पर स्वामी जी ने देखा पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हम सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, घर की देवियों को सम्मान नहीं देते।
2: इसके बाद स्त्री पूजा है। ये शक्ति पूजा केवल काम वासनामय नहीं है, ये शक्ति पूजा कुमारी सधवा पूजा है। जैसी हमारे देश में काशी, कालीघाट आदि तीर्थ स्थानों में होती है, ये काल्पनिक नहीं वास्तविक शक्ति पूजा है। किंतु हम लोगों की पूजा इन तीर्थ स्थानों में ही होती है और केवल क्षण भर के लिए, पर इन लोगों की पूजा दिन रात बारह महीने चलती है। पहले स्त्रियों का आसन होता है, कपड़ा, गहना, भोजन, उच्च स्थान, आदर और खातिर पहले स्त्रियों की। उच्च कुल की और रूपवती युवतियों की तो बात ही क्या है। ये शक्ति पूजा प्रत्येक स्त्री की पूजा है, चाहे परिचित हो या अपरिचित। इस शक्ति पूजा को पहले पहल यूरोप में मूर लोगों ने आरंभ किया था। मूर मुसलमान और अरब जाति के मिश्रित हैं। जिस समय उन लोगों ने स्पेन को जीता था, उस समय उन्होंने 8 शताब्दियों तक राज्य किया था। उसी समय यह शक्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय सभ्यता का उन्मेष हुआ और शक्ति पूजा का आविर्भाव। कुछ समय के अनंतर मूर लोग इस शक्ति पूजा को भूल गए, इसलिए वे शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। वे स्थानच्युत होकर अफ्रीका के एक कोने में असभ्यावस्था में रहने लगे और उस शक्ति का संचार हुआ यूरोप में। मुसलमानों को छोड़कर मां ईसाइयों के घर जा विराजी।

0: स्वामी विवेकानंद का ज्ञान सागर जैसा असीम था। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में हमें उनके विचार नहीं मिले हों, और ये सभी विचार मौलिक थे।
1: वे हमें विश्व इतिहास से परिचित कराते हैं, पर लगता नहीं कि हम किसी इतिहास की कक्षा में बैठे हुए हैं। रोचक उदाहरणों और कहानियों के साथ वे हमें देश विदेश के प्राचीन इतिहास के समक्ष ले जाते हैं। आइए उनसे सभ्यता का इतिहास सुनते हैं।
2: ये यूरोप क्या है? क्यों एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के काले, भूरे, पीले और लाल निवासी यूरोप निवासियों के पैरों पर गिरते हैं? क्यों कलयुग में यूरोप निवासी ही एकमात्र शासन करता है? इस यूरोप को समझने के लिए हमें पाश्चात्य महानता तथा गौरव के केंद्र फ्रांस की ओर जाना होगा। इस समय पृथ्वी का आधिपत्य यूरोप के हाथ में है और यूरोप का महाकेंद्र पेरिस है। पाश्चात्य सभ्यता, रीति नीति, प्रकाश अंधकार, अच्छा बुरा, सब की अंतिम परिपुष्टि का भाव इसी पेरिस नगरी में प्रादुर्भूत होता है। ये पेरिस नगरी एक महासमुद्र है। मणि, मोती, मूंगा आदि भी यहाँ यथेष्ट हैं, और साथ ही मगर, घड़ियाल भी बहुत हैं। ये फ्रांस ही यूरोप का धर्म क्षेत्र है। चीन के कुछ अंशों को छोड़कर इतना सुंदर स्थान और कहीं नहीं है, ना तो बहुत गर्म और ना तो बहुत ठंडा, बहुत उपजाऊ। ना यहाँ अधिक पानी बरसता है और ना कम पानी बरसने की भी शिकायत है। वो निर्मल आकाश, मीठी धूप, वनस्थली की शोभा, छोटे छोटे पहाड़, एल्म और ओक प्रभृति पेड़ों का बाहुल्य, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे झरने, पृथ्वी तल पर और कहां है? जल का वो रूप, स्थल की वो मोहकता, वायु की वो उन्मत्तता, आकाश का वो आनंद और कहां मिलेगा? प्रकृति सुंदर है, मनुष्य भी सौंदर्य प्रिय है। बूढ़े, बच्चे, स्त्री पुरुष, धनी दरिद्र, उनका घर द्वार, खेत मैदान आदि सभी साफ सुथरे और बना चुनाकर सुंदर किए हुए रहते हैं। सिर्फ जापान को छोड़कर ये भाव और कहीं नहीं है। वो इंद्रपुरी के ग्रह, अट्टालिकाओं का समूह, नंदन वन के सदृश उद्यान, उपवन, झाड़ियां और कृषकों के खेत, सभी में एक रूप, एक सुंदर छटा देखने का प्रयत्न, और वो अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए हैं। ये फ्रांस प्राचीन समय से गॉल, रोम, फ्रांक आदि जातियों की संघर्ष भूमि रहा है। इसी फ्रांक जाति ने रोमन साम्राज्य का नाश करने के बाद यूरोप में अधिपत्य जमाया। इसके बाद बादशाह शार्लेमेगने ने यूरोप में ईसाई धर्म का तलवार के बल पर प्रचार किया। इसी फ्रांक जाति के द्वारा ही एशिया को यूरोप का परिचय हुआ। इसलिए आज भी हम यूरोप वासियों को फ्रांकी, फिरंगी, फ्लांकी, फिलिंग आदि नामों से संबोधित करते रहते हैं।
0: स्वामी जी इतिहास के इस धारा प्रवाह में श्रोताओं को बहाकर ले जाते थे। लोग घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, क्योंकि उनका बोलना उबाऊ न होकर बड़ा नाटकीय होता था।
2: पाश्चात्य सभ्यता का आदि केंद्र प्राचीन यूनान डूब गया। रोम के चक्रवर्ती राजा बर्बरों के आक्रमण तरंग में बह गए। यूरोप का प्रकाश बुझ गया। इधर एशिया में भी एक बर्बर जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अरब कहते हैं। वो अरब तरंग बड़े वेग से पृथ्वी को आच्छादित करने लगी। महाबली पारसी जाति अरबों के पैरों के नीचे दब गई। उसे मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ा, किंतु उसके प्रभाव से मुस्लिम धर्म ने एक दूसरा ही रूप धारण किया। वो अरबी धर्म पारसी सभ्यता में सम्मिलित हो गया। अरबों की तलवार के साथ पारसी सभ्यता धीरे धीरे फैलने लगी। वो पारसी सभ्यता प्राचीन यूनान और भारत वर्ष से ही ली हुई थी। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से बड़े वेग के साथ मुस्लिम तरंग ने यूरोप के ऊपर आघात किया। साथ ही अंधकार पूर्ण यूरोप में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगा। प्राचीन यूनानियों की विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि ने बर्बर आक्रांत इटली में प्रवेश किया। धरा राजधानी रोम के मृत शरीर में प्राण स्पंदन होने लगा। उस स्पंदन ने फ्लोरेंस नगरी में प्रबल रूप धारण किया। प्राचीन इटली ने नव जीवन धारण करना आरंभ किया। इसी को नव जन्म अर्थात रेनेसेंस कहते हैं। किंतु वो जन्म इटली का था, यूरोप के दूसरे अंशों का उस समय प्रथम जन्म हुआ। ईसा की 16वीं शताब्दी में भारत वर्ष में अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि मुगल सम्राट राज्य करते थे, उसी समय यूरोप का नव जन्म हुआ।
1: स्वामी जी को पेरिस नगर बहुत पसंद था और उसकी बातें करते वे थकते नहीं थे।
2: ये पेरिस नगरी यूरोपीय सभ्यता की गंगोत्री है। ये विराट नगरी मृत्युलोक की अमरावती सदानंद नगरी है। पेरिस का भोग विलास और आनंद न लंदन में है, न बर्लिन में और न यूरोप के किसी दूसरे शहर।

0: देर तक नहीं ठहरता, फिर नवीन उत्साह और विश्वास से वो चमक उठता है। पुनः फ्रांस ही स्वाधीनता का उद्गम स्थान है। इस पेरिस महानगरी से ही प्रजाशक्ति ने बड़े वेग से उठकर यूरोप की जड़ को हिला दिया। उसी दिन से यूरोप का नया आकार हो गया। वो लिटरेट, एगलाइट, फ्रेटेनाइट की ध्वनि अब फ्रांस में सुनाई नहीं पड़ती। फ्रांस अब दूसरे भावों में दूसरे उद्देश्यों का अनुसरण कर रहा है, किंतु यूरोप की अन्यान्य जातियों में इस समय भी फ्रांसीसी विप्लव का ये भाव गूंज रहा है।
1: पेरिस का वर्णन उन्होंने इस तरह किया,
0: वर्तमान पेरिस अधिकांश तीसरे नेपोलियन द्वारा तैयार किया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
3: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान, और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो। अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।
3: ये क्या भगवान, तुम हो गए पिछले जन्म के दुश्मन। ये भी कोई तरीका है जगाने का? इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी डाल दिया, हड्डियां तक फ्रीज हो गई हैं।
2: तुमने कोई रास्ता छोड़ा भी था मेरे पास? सुबह से 5 बार आकर उठा चुकी हूँ तुम्हें, करके फिर सो जाते। साउंड प्रूफ रजाई में आवाज भी तो नहीं जाती होगी ठीक से, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है जी, भले मानस की तरह। अब उठ जाओ तुम तो।
3: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? बड़ा ये भी कोई शराफत हुई?
2: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
3: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
2: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो
3: है?
2: और सुनो, जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग पर निकलो, नहीं तो चाय भी नसीब नहीं होने वाली।
3: क्या?
2: हाँ, 100 आलसी मरे थे ना, तब पैदा हुए थे ये जीव। बस बहस करवा लो इनसे, इसी में फुर्ती दिखती है इनकी, मगर हाथ पाव हिलाने को मत कहो। अरे कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा है? तुम्हारी ये सेहत ही तुम्हारी मुसीबत बनी हुई है।
3: हे भगवान, कैसी हिटलरी बीवी दी है, हाथ में चाबुक लिए घूमती है, ये ना करो वो ना करो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा लगता है जैसे परेड कमांडर है ये और मैं एक अदना सा सिपाही। अब तो चाय मिलेगी ना श्रीमती जी, सर्द हवाओं से लड़कर आ रहा हूँ। एक कण चाय का तो बनता है अब।
2: इतनी जल्दी? हाय राम, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें गए और चले आए चाय मांगने। तुम क्या कोई घोड़ा वोड़ा हो जो 10 मिनट में 3 मील दौड़ा है? अरे कहा था ना तुमसे कि 3 मील से कम नहीं, और ये पेट देखा है अपना, लगता है 14 महीने का है।
3: अरे श्रीमती जी, इतना तो करेक्टर न लूज कीजिए मेरा, मुझ पर अप्राकृतिक आरोप लगाते हुए कुछ तो लजाइए, किसी ने सुन लिया तो दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
2: हाँ हाँ, लजाती ही तो हूँ मैं आपके बढ़ते हुए वजन से, ये गालों पर लटकती हुई चर्बी के थैलों से।
4: हैं?
2: शरीर देखा है कभी अपना? ऐसा लगता है जैसे बरैया कांटे से फूल गया हो। कोई फिटनेस ही नहीं है। चलते हो तो लगता है कोई मांस का पहाड़ मटर गश्ती करने निकला है। और बाकी सब पति लोग कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, और एक आप हैं, केवल ईटिंग करते हैं और हमेशा रेस्टिंग ईटिंग रेस्टिंग। भर पेट खाने के बाद भी अगर चौर गुलाब जामुन खिला दो ना तो सटका लोगे फटाफट। हाथ पांव नहीं हिलाते और बस मुंह ही चलाते रहते।
4: तो क्या चाहती हैं आप? हवा पीऊं, अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ूं और अपने हाथ पांव तोड़वा लूं?
2: अरे नहीं नहीं, हाथ पांव ही टूट जाएंगे तो जॉगिंग कौन करेगा। पर एक बात तो तय है, खाने में आपके कटौती जरूर होगी। अब पानी भी सर से ऊपर गुजर चुका है। बाप रे।
3: एक फुलका तो और दे दो जी।
4: और हाँ, थोड़ा सा घी भी डाल देना उस पर। सूखी रोटी हलक से नीचे नहीं उतरती जी।
2: घी? और तुम्हें? अरे इतनी चर्बी है तुम्हारे बदन में, अगर इससे घी निकाला जाए ना तो एक कनस्तर तो जमा हो ही जाएगा कम से कम। ऊपर से घी खाना है तुम्हें? अरे ये कहो, मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी नहीं परोस रही हूँ तुम्हें? और अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना तुम। और हाँ सुनो, 5 रोटियां हो चुकी है पूरी तुम्हारी। ये जो लिस्ट टंगी है ना दीवार में, इसी के हिसाब से खाना मिलेगा अब तुम्हें। साथ चलते हो तो सब कहते हैं ये देखो बकरी के साथ गेंडा चला जा रहा है।
3: मुझे गेंडा कहा तुमने? मेरी तुलना तुम उस प्राणी से कर रही हो। अरे हाथी भी कहती ना तो बुरा ना लगता मुझे, कम से कम साफ सुथरा तो जानवर है वो, पर गेंडा इतना भद्दा नाम। मेरा खाया पिया शरीर इतना करता है तुम्हें गेंडा?
2: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाथी ही सही, जो तुम्हें पसंद हो वही नाम रख लो। पर खाने के मामले में तो नो कम्प्रोमाइज। तुम्हारी फिगर मुझे अब ठीक करनी ही पड़ेगी। शुरू में चेत गई होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पर खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है।
4: कम से कम एक चम्मच चावल तो दे दीजिए श्रीमती जी, पेट का गोडाउन पूरा खाली पड़ा है, भाई भाई चिल्ला रहा है वो। उसकी करुण पुकार कुछ तो सुनिए अन्नपूर्णा जी।
2: मुझे मस्का लगाने की कोशिश न करो जी, मैं अब बिल्कुल पिघलने वाली नहीं। अन्नपूर्णा कहो या महालक्ष्मी, पर मुझसे वरदान की उम्मीद मत पालो। चावल का एक दाना भी नहीं दे सकती अब मैं तुम्हें। और सुनो, तुम चाहो तो 8-10 गिलास पानी जरूर पी सकते हो, तुम्हारा ये गोडाउन फुल हो जाएगा। भाई भाई नहीं करेगा तब वो, मजे से हिलोरे लेना खुश।
3: हाँ खुश, जल प्रलय करने का इरादा है क्या पेट में? हे प्रभु कहाँ हो तुम? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर ऐसी जोड़ी क्यों बनाई तुमने? इस गाड़ी में एक पहिया बुलडोजर का और दूसरा साइकिल का क्यों लगा दिया? भर पेट खाने को नहीं, नींद भर सोने को नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भगवान? कुछ तो पुकार सुनो इस दुखियारे की, अगर दुनिया में हो तुम तो प्रकट हो और मेरी मदद करो भगवान।
5: कहो क्या कष्ट है वत्स?
3: कौन कौन?
5: वही जिसे तुम इतनी देर से पुकार रहे थे। मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया पुत्र।
3: भगवान क्या सच मुझा?
5: हाँ बेटा उमेश, जब बच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। कहो क्या कष्ट है तुम्हें?
3: अरे भगवान, अरे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे खाने की इच्छा ही ना हो और ना ही जरूरत। ये खाना मेरा दुश्मन बन चुका है प्रभु, बहुत जिल्लत उठानी पड़ती है इसके कारण मुझे। ये सेहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है, मुझे इस पापी पेट से छुटकारा दिलाइए प्रभु। न खाऊंगा मैं और ना ही मेरा वजन बढ़ेगा, वो भी खुश और मैं भी खुश।
5: ये प्रकृति के विरुद्ध है वत्स। इस संसार में हर एक प्राणी को भोजन करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का विधान है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।
3: अरे तो आपके आने से क्या फायदा हुआ भगवान, मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
5: सोचने दो वत्स, मुझे सोचने दो।
3: हाँ
5: ठीक, एक काम हो सकता है।
3: क्या?
5: इससे तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा और तुम्हारी पत्नी को खबर भी ना होगी।
3: अरे जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए, सस्पेंस ना क्रिएट कीजिए।
5: वत्स, तुम्हारी ओर से भोजन ग्रहण करने का काम किसी और को दिया जा सकता है।
3: क्या?
5: वो शख्स भोजन ग्रहण करेगा और तृप्ति तुम्हें मिलेगी।
3: अरे
5: समझो, मिर्ची के बड़े वो खाएगा और मजा तुम लोगे।
3: अरे
5: उसका स्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी भारिया सोचेगी तुम तो भूखे ही हो, पर वास्तव में तुम 56 भोग का आनंद ले रहे होगे। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे खाना माँ खाती है पर तृप्ति उसके पेट के बच्चे को मिलती है। सिस्टम नया नहीं है हमारे लिए, बस इसका सॉफ्टवेयर नया डाला है। पहले ये इंटरनल होता था, अब एक्सटर्नल हो गया है।
3: वाह प्रभु, ये तो बिना भोजन के रहने से भी ज्यादा धांसू आइडिया है। अगर ऐसा है तो मेरी ओर से ये काम आप दो लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना कि दो लोग होंगे ना, इसलिए एक के बूते मेरा पेट नहीं भरने वाला।
5: नहीं नहीं, एक से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
3: क्यों?
5: वन फॉर वन। बच्चे की ओर से भी भोजन एक ही माँ ग्रहण करती है। हाँ, तुम चाहो तो इस काम के लिए कोई बड़े साइज वाला पेट चुन लो। वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, जंबो साइज। जैसे एक टिकट पर केवल एक ही मुसाफिर सफर कर सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, उसी तरह तुम अपने लिए भी केवल एक ही खाऊ वीर चुन सकते हो। साइज अपनी मर्जी से देख लेना।
3: पर एक समस्या है भगवान, मेरा वजन भी तो बढ़ेगा था।
5: सो तो होगा ही।
3: हाँ।
5: ये तो प्रकृति का नियम है वत्स, अन्न शरीर में जाकर रक्त व मांस तो बनेगा ही, हाँ चर्बी फैट भी।
3: अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भगवान, मेरी बीवी तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा दम निकाल देगी। सचमुच वो आदमी से मुझे घोड़ा बना देगी, अश्व योनि में डाल देगी मुझे।
5: एक उपाय है इसके लिए।
3: वो क्या है प्रभु?
5: तुम अपने लिए एक व्यायाम वीर भी रख लो।
3: है?
5: खाओ वीर की तरह।
3: हाँ?
5: व्यायाम वो करेगा।
3: हाँ?
5: फायदा तुम्हें मिलेगा।
3: हाँ?
5: इस तरह तुम्हारे भोजन और फिटनेस दोनों का ही काम दूसरे लोग संभालेंगे, फायदा तुम उठाना।
3: हाँ, विलंब नहीं कीजिए स्वामी, जल्दी से एवमस्तु बोल दीजिए प्रभु।
5: ओके ओके, एवमस्तु एवमस्तु।
3: ये डबल क्लिक क्यों प्रभु? बाकी मामलों में तो आप एक ही बार एवमस्तु का कमांड देते हैं।
5: वत्स, वरदान भी तो दो हैं, फिर कमांड भी तो दो बार ही देना पड़ेगा।
3: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उमेश खुश था, उसने एक बड़े पेट वाला ब्राह्मण अपनी ओर से भोजन ग्रहण करने के लिए और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी ओर से व्यायाम करने के लिए रख लिया। पत्नी को झूठ बोल दिया कि सपने में भगवान आए थे और आदेश देकर गए हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नियमित रूप से, इससे
1: धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यायाम पुरुष के बारे में कह दिया कि यह घर का काम करने के लिए नौकर है। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण देवता की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा और घर के कामकाज से छुट्टी भी। भला और क्या चाहिए था उसे। और अब सुनिए आगे की कहानी।
2: सुनो जी, सुनो तो।
3: क्या है?
2: कुछ नहीं तो कम से कम दूध ही पी लो ना। देख रही हूँ खाना पीना तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है।
4: हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था धर्मपत्नी जी। भगवान ने कहा था कि मुझे 2 माह निर्जला व्रत भी करना है।
2: क्या पागल हो गए हो तुम? 1 दिन के निर्जला व्रत में तो जान निकल जाती है आदमी की, और तुम कहते हो कि 2 महीने?
4: अरे मुझे कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, जब भगवान का आशीर्वाद है साथ में तो फिर चिंता क्या। हाँ, ब्राह्मण देव के खाने पीने में जरूर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ लो ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान ही है वो।
2: अरे नहीं होगी जी, नहीं होगी। ब्राह्मण देव तो वैसे भी हमारी संस्कृति में भगवान ही माने जाते हैं।
4: और हाँ, उन्हें सुबह सुबह शुद्ध घी का बेसन का हलवा खिलाना, साथ में मेवे का दूध और काजू की नमकीन। दोपहर के खाने में विशेष ख्याल रखना, दाल चावल, 7-8 रोटी, 1 कटोरी रायता, 2 स्वीट डिश, 3-4 पापड़, खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी।
2: एक मिनट रुको, ये सब तो तुम अपनी पसंद बता रहे हो।
4: अरे तुमने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, दान उसी चीज का करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये नहीं कि बासी रोटी बच गई है इसे कोई नहीं खा रहा है तो भिखारी को डाल दो, दाल खट्टी हो गई है तो गाय को डाल दो, चीनी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई तो चींटी को डाल दो। ये दान नहीं, ना दान है, ना और दान यानी कोई दान।
2: बस बस बस, समझ गई बाबा, सब समझ गई। तुम्हें तो एक सिरा मिल जाए ना किसी भी बात का, बस पकड़ कर हवाई यात्रा पर चल पड़ते हो फुल टैंक के साथ, नॉन स्टॉप। ये बिना कुछ खाए पिए तुम्हें डकार कहाँ से आ रही है जी? और फ्रेश भी रेगुलरली हो रहे हो तुम, ऐसा चंभा न देखा है न कभी सुना।
4: सो भगवान की माया है धर्मपत्नी जी, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वो राई को पहाड़ बना सकता है, वो बर्फ पर घास उगा सकता है। तुमने कबीर का दोहा नहीं सुना है, कमल जो फूले सरह बिन, यानी बिना तालाब के ही कमल खिल रहा है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, यानी वो बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है और फिर।
2: बस बस बस बस, मेरे तो कान पक गए। सच ही कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ कि बिनु दिमाग के बकैल लड़े बिनु जुबाना।
4: अरे वाह, अरे वाह श्रीमती जी, विद्वानों की सोबत का असर तो आप पर अब होने लगा है। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने रात में सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली थी? बुरा हाल हो गया मेरा।
2: तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए चले जा रहे हो जी, और भगवान वाली कहावत मनुष्य योनि में साकार भी कर रहे हो। बिना खाए डकार लेते हो, बिना चखे सब्जी का स्वाद बताते हो। अल्लाहुद्दीन का जिन पाल रखा है क्या तुमने?
4: अरे नहीं, सब भगवान की माया है। तुमने श्लोक नहीं सुना है संस्कृत का, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम। अरे भाई कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो भला क्या नहीं कर सकता।
2: पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे तो तुम भी अब बड़े अजीब लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत पाल रखा है तुमने।
4: अरे ब्राह्मण देव, जरा तीखी मिर्ची कम खाया करो यार, अरे तुम इंसान हो के तोता, हरी मिर्ची कचर कचर चबाते हो, हालत खराब करके रख दी है मेरी। नहीं यार, ये आदत तो छोड़नी होगी तुम्हें।
6: अरे जजमान, अगर इतना ही प्रतिबंध लगाना है तो आप कोई दूसरा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए। हाँ बताई देते हैं हम, खाने की कमी नहीं है हमें, खाना तो हम अपनी पसंद का ही खाऊंगा, ना कि आपकी पसंद का। मर्जियो खिलाइए, नहीं मर्जियो मत खिलाइए, मैं ये चला।
4: अरे अरे नहीं नहीं, ब्राह्मण देव आप तो नाराज होने लगे। मैं तो विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका असर मुझ पर होता है। आखिर माँ भी तो अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखती है ना खाने पीने में।
6: अच्छा अब समझ गया मैं, तो जजमान आप मेरे पेट के बच्चे हैं। कल को माई माई करते हुए आ जाना मेरे पास और बोलेंगे तुम जननी मैं तेरा बालक। अरे पलीता लगा देंगे आप तो मुझे, महीने भर खिलाएंगे और जीवन भर खुद खाएंगे। वाह रे वाह।
4: अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।
6: बाप रे, बड़ी खतरनाक मिसाल है आपकी। त्राही माम प्रभु, इस सीधे साधे ब्राह्मण को आपने किस संकट में डाल दिया, बचाइए प्रभु इससे।
4: क्या चल रहा है पहलवान, वर्जिश मर्जिश ठीक से चल रही है कि नहीं?
7: सब ठीक चल रहा है बॉस, बस भाई साहब टाइम पे खाना नहीं देती हैं और मेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती हैं। जानते हैं आप, सब तर माल उस ब्राह्मण को खिलाती हैं और मेरे सामने यूं ही कुछ रूखा सूखा डाल देती हैं। सोचती हैं घर का नौकर है, आराम से चुपचाप बैठ के खा लेगा।
4: उसकी चिंता तू क्यों करता है भाई, टेबल के नीचे से मनी सरकाता हूं ना मैं तुझे। हाँ। बाजार जाकर तबियत से खा पी लिया कर, मगर वर्जिश से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुबह की जॉगिंग सूरज निकलने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, हाथ की मछली निकलनी चाहिए मेरी।
7: हाँ।
4: समझे?
7: हाँ।
4: पेट की चर्बी छटनी चाहिए मेरी। आखिर मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना मुझे।
7: अरे जान लगाकर तो मेहनत करता हूँ बॉस मैं। अब तबीयत कभी गरम नरम रहती है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। आखिर मशीन भी गरम होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती
4: बस,
7: है।
4: बस बस कर बस कर, मुझे लेक्चर नहीं रिजल्ट चाहिए, नहीं तो समझ ले कि नौकरी से बाहर तू।
7: नहीं।
1: उमेश के दोनों ही कर्मचारी बेवफा निकले। ब्राह्मण देव दिल खोल करके भोग लगाते और पेट दुखता इस गरीब का। तीखा खाना वे खाते और एसिडिटी होती उमेश को, क्योंकि उनका पेट अब दूसरों के हाथ में था जो उन्हीं की दया पर निर्भर था। दूसरी ओर पहलवान भी अव्वल दर्जे का कामचोर था, केवल बातों की तनख्वाह ले रहा था और ज्यादातर घोड़े बेच करके सोता रहता। उमेश का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये तो वही वाली मिसाल हुई कि काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। कई बार तो ऐसी हद हो जाती कि उमेश के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सुनिए आगे की कहानी।
8: पेट में जैसे भूचाल आया हुआ है। अरे एक गिलास गरम पानी के साथ आजमाइन दे दो जी।
2: अरे बाप रे बाप, मेरा हार रहने पर तुम्हारा ये हाल है? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। सुनो, कहीं चोरी छिपे तुम?
4: क्या बात करती है धर्म पत्नी जी, अरे जब कोई बंदिश हो तो चोरी करना समझ में भी आती है, पर मैं तो अपनी मर्जी से व्रत कर रहा हूँ। तुमने कहाँ रोका है मेरा खाना?
2: सब कुछ बड़ा अजीब चल रहा है जी, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई
4: है। अरे बुद्धि फिर जगा लेना भाई, अभी मेरे पेट के दर्द से तो मुक्ति दिलाओ मुझे, बम के गोले फूट रहे हैं इसमें।
2: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठहरो बस एक मिनट में लाती हूँ।
4: अरे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब मतलब के यार हैं। इतना मनाया साले ब्राह्मण को, मस्का लगाया कि भाई मेरा ख्याल रखना, मगर तरमाल देखकर आपा खो बैठता है। 24 घंटे ठूसने पर तो ये हाल है इसका, ऐसे टूटता है जैसे 7 जन्म का भूखा हो, और भुगतना मुझे पड़ता है।
2: क्या बड़बड़ कर रहे हो जी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? ये लो गरम पानी और ये पकड़ो अजवाइन, फाक कर पानी पी लो जल्दी से, अभी आराम हो जाएगा ना।
4: गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है पेट, अभी गल जाएगा सब माल।
2: क्या गल जाएगा?
4: माल।
2: कौन सा माल छुपा रखा है तुमने अपने पेट में? सुनो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो ना, समझ में तो आए कि रोग क्या है।
4: डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं।
2: क्या डॉक्टर नहीं की रट लगा रहे हो? तुम तो ऐसे हड़बड़ाए हुए हो जैसे किसी हराम के पेट का मामला हो जो डॉक्टर के पास जाते ही खुल जाएगा।
4: अरे अरे आपको क्या बताएं श्रीमती जी, मुझ पर जो गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। मेरा पेट अब मेरा पेट न रहा, मेरा शरीर अब मेरा शरीर न रहा, सब गड़बड़ भगवान का किया हुआ है।
2: सुनो सुनो सुनो, एक काम करती हूँ, इन दोनों मुस्टंडों को घर से निकाल बाहर करती हूँ। जब से ये दोनों घर में आए हैं ना, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। तुम खाते कुछ हो नहीं, पर वजन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, जैसे हवा से ही पोषक तत्व खींच रहे हो तुम।
4: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा न करना, ऐसा न करना, भगवान का मामला है, सरकारी मामला होता तो थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी चल जाती, पर तुम तो जानती हो कि
2: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती तुम्हारी ये सब बातें, मैं तो चली घर के काम के लिए।
9: पहलवान, अपनी ड्यूटी के साथ दगा कर रहे हो तुम, घर से दौड़ने के बहाने निकलते हो और बागीचे में जाकर आंखें सेकने बैठ जाते हो, सारी रिपोर्ट है मुझे।
10: बिल्कुल गलत है बॉस, भरोसा ना हो तो मेरे साथ आप भी निकला करिए सवेरे सवेरे, खुद ही तसल्ली कर लिया करिए ना, मैं जॉगिंग करता हूँ या तो।
9: चुप चुप रह, चुप रह, ऐसा ही दौड़ने वाला होता मैं तो तुझे क्यों ड्यूटी पर रखता, जानता है ना कि बॉस आलसी है, उठ नहीं सकता सुबह सुबह, उंगली तक हिलाने के पहले 100 बार सोचता है ये, इसीलिए ना मुझे फटके दे रहा है तू, पर मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, पहले भी कहा था मैंने कि रिजल्ट ओरिएंटेड है तेरा अपॉइंटमेंट, पेट देख रहा है मेरा।
10: हाँ,
9: देख
10: देख रहा हूँ।
9: तेरे आने के बाद वजन 90 किलो की सुई छोड़कर 110 टच कर रहा है, अब तो कमजोर कांटे पर खड़ा होने में भी डर लगता है, साली गाड़ी तक का एवरेज डाउन हो गया अब तो इस बॉडी के कारण।
10: तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपकी बॉडी ही फैट टैंक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
9: ड्यूटी करता है तू, अरे ये क्लोज सर्किट कैमरा लगा दूं ना तेरे पीछे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। कोई बात नहीं, अब से मैं लगता हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कैसे काम चोरी करता है। चलो उठा डंबल और भांज तेल लगाकर।
10: हाँ हाँ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ध्यान से देखना बॉस।
9: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हा, बक बक मत कर, काम कर। और चल चल चल। अरे
7: और देख लेना बॉस।
9: हाँ हाँ ठीक है,
7: ईमानदार बस बॉस, थक गया मैं। अब और नहीं, जान निकल गई मेरी।
9: चालू रे नॉन स्टॉप, बहुत तड़ी मारी है अब तक तूने। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता होता ना तू, तो इतनी जल्दी हवा खराब होती तेरी। 500 के नीचे सांस नहीं लेने दूंगा तुझे।
7: बॉस मैंने कर रहा आपकी नौकरी, मैंने कर रहा आपकी नौकरी वोकरी, पेट पालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जान देने के लिए नहीं आया। मेरा हिसाब कर दीजिए आप।
9: हिसाब? कैसा हिसाब? वजन बढ़ाने का हिसाब, चर्बी चढ़ाने का हिसाब, अरे जवान इंसान को बुढ़ा बनाने का हिसाब। अरे अपना काम तो दिखा पहले तू।
7: अच्छा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं बॉस आप। गरीब का पैसा मारना ठीक बात नहीं।
9: अच्छा,
7: अरे इतना भागा होता ना मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया होता, और ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं भाई साहब को सच बताऊंगा, फिर वो ही करेंगे आपका हिसाब।
9: अरे अरे अरे, भाई साहब की धमकी क्यों देता है भाई? देख जब देख मेरी कमजोर नस पकड़ लेता है तू, सारी पोल पा गया है तू मेरी। खर बोल, कितने पैसे निकलते हैं तेरे? बोल।
7: अब आए ना लाइन पे।
9: बोल।
7: पैसा खाने चले थे मेरा। आज का लेकर ये हो गया 4,600। और ये अभी जो डंबल उठाए और ये भांजी और ये तेल लगाकर
9: ठीक। ये पकड़ 1,000 के 5 नोट। बचे पैसे तेरे मुंह बंद रखने की फीस है, और अब जान छोड़ मेरी।
7: अरे अभी छोड़े देते हैं बॉस, ये लीजिए। बाय बॉस, थैंक यू।
9: अरे भगवान, मैं थक गया आपके वरदान का बोझ उठाते उठाते। अरे ऐसा तो शाप भी ना मिले किसी को। प्रकट हो प्रभु, और इस संकट से उबारो, मुझे उबारो भगवान। भगवान
5: वत्स, तुमने मुझे पुकारा वत्स। अब क्या समस्या है तुम्हारी? भोजन और आराम सब तो मिल रहा है तुम्हें, भला और क्या चाहिए तुम्हें?
9: अरे प्रभु, आप क्या समझो मेरी विपदा, मेरा पेट उठाकर आपने गैर के हवाले कर दिया। अरे हराम का पेट जैसा बुरा इस्तेमाल हो सकता है, वैसा कर रहा है वो बामन देव। खुद तो तरमाल अंटी करता है, और दर्द मुझसे भगवाता है, और पहलवान अरे चोरी और सीना जोरी दोनों कर रहा है। ये सेहत मुसीबत बन गई है मेरे लिए प्रभु। नहीं प्रभु नहीं, अब तो अपना वरदान वापस ले लो आप।
5: वापस?
9: हाँ।
5: क्या तुम भगवान का सिस्टम भी इंसानों जैसा समझते हो कि पसंद ना आने पर माल वापस? हमारे यहाँ ट्रायल वर्जन और डेमो का कोई रिवाज नहीं है। हम भगवान हैं, जो देते हैं सो फाइनली देते हैं, और बिका हुआ माल वापस नहीं देते।
9: और फिर तो आप मुझे उठा लो प्रभु, मुझे उठा लो, क्योंकि आपके वरदान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी भैया।
5: ये भी नहीं हो सकता वत्स, निर्धारित आयु के पहले तो यमराज भी किसी को नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भले ना हो, पर रूल ऑफ तो है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसका पालन करते हैं, रूल यानी रूल।
9: कोई एक्सेप्शन निकालिए प्रभु, कोई एक्सेप्शन। आखिर सावित्री के मामले में तो ऐसा किया ही था ना आपने, उससे भी मुश्किल केस है मेरा।
5: तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया पुत्र, ऐसी नजीर रख दी मेरे सामने की कोर्ट कचहरी वाले आदमी हो ना, गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही सतर्क रहना चाहिए था तुमसे। खैर सोचता हूँ कुछ, हाँ ये हो सकता है,
4: जी जी
5: तुम बंदा बदल सकते हो।
4: क्या?
5: एक काम करता हूँ, ब्राह्मण का रोल तुम्हारी पत्नी को दे देता हूँ।
4: अरे गजब ना ढाइए प्रभु, ऐसा गजब ना ढाइए प्रभु, वो तो मुझे भूखे ही मार डालेगी। साल भर में आधे दिन तो वो व्रत रखती है, सावन के 16 सोमवार, एकादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, रविवार को भला। मुझे उम्र के पहले उठाना है क्या आपको?
5: तो क्या किसी और को?
4: नहीं नहीं प्रभु, इस मुसीबत से बचाइए। अरे पता चला सांपनाथ से तो बचे और नागनाथ के हत्ते चढ़ गए। दारू वो पिएगा, मुंह से बदबू मेरे आएगी, मटन वो खाएगा, हजामत में ही उतरेगी। नहीं प्रभु नहीं नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है अब। मेरी आजादी लौटा दो प्रभु, मैं अपनी डाइट व वेट खुद ही कंट्रोल कर लूंगा प्रभु। भगवान मुझ पर
5: तथास्तु।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
11: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अनिष्ट शंका।

चांदनी रात, समीर के सुखद झोंके, सुरम्य उद्यान। कुंवर अमरनाथ अपनी विस्तीर्ण छत पर लेटे मनोरमा से कह रहे थे, अब तुम घबराओ नहीं, मैं जल्द आऊंगा। मनोरमा ने उनकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं ले चलते? अमरनाथ बोले, तुम्हें वहां कष्ट होगा, मैं कभी यहां रहूंगा कभी वहां, सारे दिन मारा मारा फिरूंगा। पहाड़ी देश है, जंगल और बीहड़ के सिवाय बस्ती का कोसों पता नहीं, उस पर भयंकर पशुओं का भय, तुमसे ये तकलीफें ना सही जाएंगी। तो तुम भी तो इन तकलीफों के आदि नहीं हो, मैं पुरुष हूं, आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफों का सामना कर सकता हूं। मैं भी स्त्री हूं, आवश्यकता पड़ने पर आग में कूद सकती हूं। स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है, उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे ना हो पर उनमें ये धैर्य और साहस है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का जरा सा भी असर नहीं होता। अमरनाथ ने मनोरमा को श्रद्धामय दृष्टि से देखा और बोले, ये मैं मानता हूं, लेकिन जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं वो एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे ना देखी जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो इस समय चांदनी में कितनी बहार है। मुझे बहलाओ मत, मैं हट नहीं करती, लेकिन यहां मेरा जीवन अपाल हो जाएगा, मेरे हृदय की दशा विचित्र है। तुम्हें अपने सामने ना देखकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं कि कहीं चोट ना लग गई हो। शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूं कि कहीं घोड़े ने शरारत न की हो। मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है, लेकिन मैं तो विलास का भक्त हूं, मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर अन्याय करती हो। मनोरमा ने अमरनाथ को दबी हुई दृष्टि से देखा, जो कह रही थी कि मैं तुमको तुमसे ज्यादा पहचानती हूं। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था, लोग वृक्षों की छालें छील छील कर खाते थे। शुधा पीड़ा ने भक्षा भक्ष्य की पहचान मिटा दी थी। पशुओं का तो कहना ही क्या, मानव संतानें कौड़ियों के मोल बिकती थी, पादरियों की चढ़ बनी थी। उनके अनाथालयों में नित्य गोल के गोल बच्चे भेड़ों की भांति हाके जाते थे। मां की ममता मुट्ठी भर अनाज पर कुर्बान हो जाती। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे। समाचार पत्रों में ये रोमांचकारी समाचार देखे तो तड़प उठे। समिति के कई नवयुवकों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुंचे। मनोरमा को वचन दिया कि प्रतिदिन पत्र लिखेंगे और यथासंभव जल्द लौट आएंगे। एक सप्ताह तक तो उन्होंने अपना वचन पालन किया, लेकिन शनै शनै पत्रों में विलंब होने लगा। अक्सर इलाके डाकघर से बहुत दूर पड़ते थे, यहां से नित्य प्रति पत्र भेजने का प्रबंध करना दुसाध्य था। मनोरमा वियोग दुख से विकल रहने लगी। वो अव्यवस्थित दशा में उदास बैठी रहती, कभी नीचे आती कभी ऊपर जाती कभी बाग में आ बैठती। जब तक पत्र ना जाता वो इसी भांति व्यग्र रहती। पत्र मिलते ही सूखे धान में पानी पड़ जाता, लेकिन जब पत्रों के आने में देर होती तो उसका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया। बार बार पछताती।

से स्वप्न का आशय पूछती। स्वप्नों के कारण और विवेचना पर कई ग्रंथ पढ़ डाले, पर कुछ रहस्य न खुला। लौंडियां उसे दिलासा देने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से हैं। स्वप्न में किसी को नंगे पैर देखें तो समझो वो घोड़े पर सवार है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मनोरमा को इस बात से तस्कीन न होती। उसे तार के जवाब की रट लगी हुई थी, यहां तक कि 4 दिन गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का जाना बाल वृंद के लिए एक महत्व की बात है। उसके डमरू की आवाज में खोमचे वाले की शुद्धावर्धक ध्वनि से भी अधिक आकर्षण होता है। इसी प्रकार मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का जाना मार्के की बात है। एक क्षण में इसकी खबर घर घर फैल जाती है। सास अपनी बहू को लिया पहुंचती है, माता भाग्यहीन कन्या को लेकर आ जाती है। ज्योतिषी जी सुख दुख की अवस्थानुसार वर्षा करने लगते हैं। उनकी भविष्यवाणियों में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उनका भाग्य निर्माण भाग्य रेखाओं से भी जटिल और दुष्ग्राह्य होता है। संभव है कि वर्तमान शिक्षा विधाता ने ज्योतिष का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महात्म्य में जरा भी कमी नहीं हुई। उनकी बातों पर चाहे किसी को विश्वास ना हो, पर सुनना सभी चाहते हैं। उनके एक एक शब्दों में आशा और भय को उत्तेजित करने की शक्ति भरी रहती है। विशेषता उसकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक और दग्धधारी है। तार भेजे हुए आज 5वां दिन था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। तत्काल मोहल्ले की महिलाएं जमा हो गईं। ज्योतिषी जी भाग्य विवेचन करने लगे, किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा को खबर मिली, उन्हें तुरंत अंदर बुला भेजा और स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी जी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, उंगलियों पर कुछ गिना, पर कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, क्या सरकार ने स्वप्न देखा है? मनोरमा बोली, नहीं, मेरी एक सखी ने देखा है। मैं कहती हूं ये अमंगल सूचक है, वो कहती है मंगलमय है, आप इसकी क्या विवेचना करते हैं? ज्योतिषी जी फिर बगलें झांकने लगे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा का हाल ना मालूम था और ना ही इतनी मोहलत ही मिली थी कि यहां आने के पूर्व वो अवस्था ज्ञान प्राप्त कर लेते जो अनुमान के साथ मिलकर जनता में ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रश्न पूछा था उसका भी कुछ सूत्र सूचक उत्तर न मिला। निराश होकर मनोरमा के समर्थन में ही अपना कल्याण देखा। बोले, सरकार जो कहती है वही सत्य है, ये स्वप्न अमंगल सूचक है। मनोरमा खड़ी सितार के तार की भांति थर थर कांपने लगी। ज्योतिषी जी ने उस अमंगल का उद्घाटन करते हुए कहा, उनके पति पर कोई महान संकट आने वाला है, उनका घर नाश हो जाएगा, वो देश विदेश मारे मारे फिरेंगे। मनोरमा ने दीवार का सहारा लेकर कहा, भगवान मेरी रक्षा करो, और मूर्छित होकर जमीन पर आ गिरी। ज्योतिषी जी अब चेते, समझ गए कि बड़ा धोखा खाया, आश्वासन देने लगे, आप कुछ चिंता ना करें, मैं उस संकट का निवारण कर सकता हूं। मुझे एक बकरा, कुछ लौंग और कच्चा धागा मंगा दे। जब कुंवर जी के यहां से कुशल समाचार आ जाए तो जो दक्षिणा चाहे दे दे। काम कठिन है, पर भगवान की दया से असाध्य नहीं है। सरकार देखें, मुझे बड़े बड़े हाकिमों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी डिप्टी साहब की कन्या बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मैंने यंत्र दिया, बैठे बैठे आंखें खुल गई। कल की बात है, सेठ चंदूलाल के यहां से रोकड़ की थैली उड़ गई, कुछ पता ना चलता था, मैंने सगुन विचारा और बात की बात में चोर पकड़ लिया। उनके मुनीम का काम था, थैली ज्यों की त्यों निकल आई। ज्योतिषी जी तो अपनी सिद्धियों की सराहना कर रहे थे और मनोरमा अचेत पड़ी हुई थी। अकस्मात वो उठ बैठी, मुनीम को बुलाकर कहा, यात्रा की तैयारी करो, मैं शाम की गाड़ी से बुंदेलखंड जाऊंगी। मनोरमा ने स्टेशन आकर अमरनाथ को तार दिया।

उठ बैठी, हाथ मुंह धोया और इसका इरादा किया कि अब न सोऊंगी। हा कितना भयानक दृश्य था। परमपिता, अब तुम्हारा ही भरोसा है, उनकी रक्षा करो। उसने खिड़की से सिर निकालकर देखा, आकाश पर तारागण दौड़ रहे थे। घड़ी देखी, 12 बजे थे। उसको आश्चर्य हुआ, मैं इतनी देर तक सोई, अभी तो एक झपकी भी पूरी ना होने पाई। उसने एक पुस्तक उठा ली और विचारों को एकाग्र कर पढ़ने लगी। इतने में प्रयाग आ गया, गाड़ी बदली। उसने फिर किताब खोली और उच्च स्वर से पढ़ने लगी, लेकिन कई दिनों की जागी आंखें इच्छा के अधीन नहीं होती। बैठे बैठे झपकियां लेने लगी, आंखें बंद हो गईं और एक दूसरा दृश्य सामने उपस्थित हो गया। उसने देखा, आकाश से मिला हुआ एक पर्वत शिखर है, उसके ऊपर के वृक्ष छोटे छोटे पौधों के सदृश दिखाई देते हैं, श्याम वर्ण घटाएं छाई हुई हैं, बिजली इतने जोर से कड़कती है कि कानों के पर्दे फटे जाती हैं, कभी यहां गिरती है कभी वहां। शिखर पर एक मनुष्य नंगे सिर बैठा हुआ है, उसकी आंखों का अश्रु प्रवाह साफ दिख रहा है। मनोरमा दहल उठी। ये अमरनाथ थे, वो पर्वत शिखर से उतरना चाहते थे लेकिन मार्ग न मिलता था। भय से उनका मुख वर्ण शून्य हो रहा था। अकस्मात एक बार बिजली का भयंकर नाद सुनाई दिया, एक ज्वाला सी दिखाई दी और अमरनाथ अदृश्य हो गए। मनोरमा ने फिर चीख मारी और जाग पड़ी। उसका हृदय बांसों उछल रहा था, मस्तिष्क चक्कर खाता था। जागते ही उसकी आंखों में जल प्रवाह होने लगा। वो उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय करने लगी, ईश्वर मुझे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, न जाने उन पर क्या बीत रही है। तुम दीनों के बंधु हो, मुझ पर दया करो, मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं, मैं झोपड़ी में खुश रहूंगी, मैं केवल उनकी शुभकामना रखती हूं, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करो। वो फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अरुणोदय की मनोरम छटा और शीतल सुखद समीर ने उसे आकर्षित कर दिया। उसे संतोष हुआ, किसी तरह रात कट गई, अब तो नींद ना आएगी। पर्वतों से मनोहर दृश्य दिखाई देने लगे, कहीं पहाड़ियों पर भेड़ों के गल्ले, कहीं पहाड़ियों के दामन में मृगों के झुंड, कहीं कमल के फूलों से लहराते सागर। मनोरमा एक अर्ध स्मृति की दशा में इन दृश्यों को देखती रही, लेकिन फिर न जाने उसकी अभागी आंखें झपक गई। उसने देखा अमरनाथ घोड़े पर सवार एक पुल पर चले जाते हैं, नीचे नदी उमड़ी हुई है, पुल बहुत तंग है, घोड़ा रह रह कर बिचकता है और अलग हो जाता है। मनोरमा के हाथ पैर फूल गए, वो उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, घोड़े से उतर पड़ो, घोड़े से उतर पड़ो। ये कहते हुए उनकी तरफ झपटी और आंखें खुल गई। गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सनसनाती चली जाती थी। अमरनाथ नंगे सिर नंगे पैर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मनोरमा की आंखों में अभी तक वही भयंकर स्वप्न समाया हुआ था। कुंवर को देखकर उसे भय हुआ कि वो घोड़े से गिर पड़े और नीचे नदी में फिसलना चाहते हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैलाया और जब उन्हें न पा सकी तो उसी सुषुप्तावस्था में उसने गाड़ी का द्वार खोला और कुंवर साहब की ओर हाथ फैलाए हुए गाड़ी के बाहर निकल आई। तब वो चौंक पड़ी, जान पड़ा किसी ने उठाकर आकाश से भूमि पर पटक दिया, जोर से एक धक्का लगा और चेतना शून्य हो गई। वो कबरई का स्टेशन था। अमरनाथ तार पाकर स्टेशन पर आए थे, मगर ये डाक थी, वहां न ठहरती थी। मनोरमा को हाथ फैलाए गाड़ी से गिरते देखकर वो हां हां करते हुए लपके, लेकिन कर्मलेख पूरा हो चुका था। मनोरमा प्रेम वेदी पर बलिदान हो चुकी थी। इसके तीसरे दिन वो नंगे सिर नंगे पैर भग्न हृदय घर पहुंचे। मनोरमा का स्वप्न सच्चा हुआ। उस प्रेम विहीन स्थान में अब कौन रहता है? उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति काशी सेवा समिति को प्रदान कर दी और अब नंगे सिर नंगे पैर विरक्त दशा में देश विदेश घूमते रहते हैं। ज्योतिषी जी की विवेचना भी चरितार्थ हो गई।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अनिष्ट शंका। सुनो कहानी में अगली बार फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम

हर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ९० दशमलव ८ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं निमाड़ी लोक गायन। कलाकार हैं मनीषा शास्त्री और साथी।

तो श्रोताओं, मनीषा शास्त्री और साथी कलाकारों के निमाड़ी लोक गायन को सुनने के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं सरोद सितार की जुगलबंदी। कलाकार हैं पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी।

0: तो श्रोताओं, पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी की सरोद सितार जुगलबंदी के साथ ही आज का कार्यक्रम भारत भारती पूरा होता है। दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

शुभ संध्या, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ

मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आज के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो सांध्यकालीन प्रसारण सभा में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नलिनीकांत बागची की प्रकृति की पुकार। ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के अंतर्गत बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर चर्चा। शाम 7:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुनर्प्रसारण होगा इस कार्यक्रम का। रात 8:30 बजे हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में हम बात करेंगे देशबंधु चितरंजन दास की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा होगी रात 9:00 बजे और 9:30 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: तम पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वाम ईयते सान्वीयते तस्मिन् संति प्रशिसस्तस्मिन् निष्ठयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः। हे मनुष्यो, आप सभी उन अग्निदेव से ही प्रश्न करें, क्योंकि वे ही सर्वत्र गमनशील, सर्वज्ञाता, ज्ञानवान, निश्चय ही सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं में प्रशासन की सामर्थ्य तथा सभी अभीष्ट पदार्थ विद्यमान हैं। वे अग्निदेव ही अन्न, बल तथा शक्ति साधनों के स्वामी हैं। तमित पृच्छन्ति न सीमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत। न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोस्य कृत्वा सचते अप्रद्रपितः। ज्ञान संपन्न ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे नहीं पूछ सकते। धैर्यवान मनुष्य कार्य को निर्धारित अवधि से पहले ही संपन्न कर डालते हैं। वे किसी के कथन को अनावश्यक महत्व नहीं देते, अतएव अहंकार से रहित मनुष्य ही अग्निदेव की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। तमिद गच्छन्ति जुह्व स्तमर वतीर विश्वानियेकः शृण वद्वचांसि मे पुरु प्रैषस्तुरिर् यज्ञ साधनो छिद्रोतिः शिशुरादत्त संरभः। घृत चमस द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियां उन अग्निदेव को ही प्रदान की जाती हैं, और प्रार्थनाएं भी उन्हीं के निमित्त हैं। वे अकेले ही हमारी संपूर्ण स्तोत्र वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अग्निदेव अनेकों के लिए प्रेरणा प्रद, दुखों के निवारक, यज्ञ साधक, पवित्र संरक्षक तथा सामर्थ्यों से संपन्न हैं। अग्निदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के समान ही आहुतियों को ग्रहण करते हैं। उपस्थायम चरति यत् समारत सद्यो जातस्तसार युज्ये भी अभिश्वान्तं मृषते नान्दे मुदे यदीं गच्छन्त्यु शतीर पिष्ठितम्। जब ऋत्विगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर सब ओर फैल जाते हैं। जब सर्वत्र संव्याप्त यज्ञाग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। स ई मृगो अप्यो वनर गुरुप त्वच्यु पमस्याम निधाई व्यब्रवीद वयुना मर्त्येभ्योऽग्निर्विदाम ऋत चिद्धि सत्यः वनों में विचरणशील अनुसंधान करने और उपलब्ध करने योग्य अग्निदेव उत्तम संविधाओं के बीच स्थापित किए जाते हैं। मेधावी यज्ञ के ज्ञान से संपन्न सत्ययुक्त अग्निदेव वास्तव में ही मनुष्यों को यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हुए दिव्य ज्ञान का संदेश देते हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, समय अनवरत निर्बाध चलता रहता है। धरती सांस सांस गाती है नव सृजन का संकल्प, रचती है नया दिन, नई सुबह, नया जीवन। सुबह जैसे खुशी की सरगम है और शाम एक मध्यम सी मुस्कुराहट है जिंदगी की। सुबह एक शक्ति है जो सिखाती है जीने का मंत्र, दिखाती है कुछ नए रास्ते, और शाम जैसे पुनर्जीवन है, नए सिरे से नई राह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत का चिंतन। शायद इसीलिए सुबह और शाम आराधना का विधान है। तो आइए हम और आप साथ साथ चलें आज की भजन यात्रा पर।

जो है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना वंदना है। प्रयास और प्रयत्न से जो हो वो मन के पार नहीं ले जाएगी, क्योंकि सभी प्रयास मन का है। जिसे मन से कोशिश करके पाया वो मन के ऊपर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा को प्रयत्न से पाने का कोई उपाय ही नहीं, उसे तो अप्रयास से ही पाया जा सकता है।

ज्ञानी जन कहते हैं हम हवा पानी की तरह सहज हो जाएं, जो हो रहा है उसे होने दें, जो है उसे स्वीकार करें, सिर्फ होने का एक शांत ढंग पकड़ लें, होने का एक ढंग जिसमें प्रतीक्षा है, धैर्य है, होने का एक ढंग जो प्रार्थना पूर्ण है, यही ढंग सही मार्ग है, यही ढंग दरअसल आराधना है।

श्रोताओं, मन की सफलता जहां समाप्त हो जाती है, वहीं भक्ति आरंभ होती है, वहीं वंदना घटित होती है। जब तक मन सफल होता रहता है, माया जारी रहती है। मन का न होना ही मौन है, मन का न होना ही परमात्मा में खोना है, और इस खोने में ही उसे पाने की व्यवस्था है।

श्रोताओं, सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है। जीवन में या तो कुछ है जो हम चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है जिसका हम पीछा करना चाहते हैं, कुछ है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये चाहना, ये मन का होना ही संसार है और ईश्वर संसार के पार है। जहां न सुख है न दुख है, उसी को हमने आनंद कहा। और इस ज्ञान की प्राप्ति भी उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है।

जिसने भी सत्य को जाना वो ठहर गया, मौन हो गया, क्योंकि फिर बोलना मुश्किल था। और अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो वो इशारा मात्र था, इंगित करना था। वो मील का पत्थर था जिस पर तीर बना होता है, बस एक इशारा। उसे ही हम मंदिर समझकर बैठ गए तो फिर हमारा कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। उन इशारों को समझते हुए ये यात्रा स्वयं करनी होती है, उस अनुभव से बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं गुजरना होता है। इस तरह भक्ति में हर यात्रा व्यक्तिगत होती है, हर अनुभव व्यक्तिगत होता है।

श्रोताओं, कितना अद्भुत है समर्पण का संसार, जहां मानव डूबकर पार हो जाता है और जो नहीं डूबता वो मझधार में रह जाता है। वंदना, प्रार्थना, समर्पण भाव के बिना निर्जीव है, निरर्थक है, और भाव सहित एक क्षण का समर्पण आनंद है, उद्धार है।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। आजादी के इतिहास में क्रांतिकारियों का योगदान अहिंसक आंदोलन से अधिक था। उद्देश्यपूर्ण हिंसा मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग सदैव इतिहास के सुनहरे अक्षर बनते रहे हैं। क्रांति के इतिहास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है और उस समय बंगाल आजादी के दीवानों का केंद्र था। क्रांतिकारियों के हमलों और उससे उपजी जनता की विद्रोही भावना से अंग्रेज शासक परेशान हो उठते थे। क्रांतिकारी घटनाएं उनको शासन करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती थीं। क्रांतिकारियों की गतिविधियां तत्कालीन राजधानी कोलकाता के आसपास होने से उनको अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाने में मदद मिलती थी। इससे अंग्रेजों को दोहरा नुकसान था। इन घटनाओं की बार बार की आवृत्ति से दुनिया में भारत का उनका शासन नाजायज माना जाने लगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की विद्रोही गतिविधियों की खबर दुनिया को लगे। इतिहासकारों के अनुसार इसी से घबराकर अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी।

कोलकाता के आसपास के क्रांतिकारियों में एक थे नलिनी कांत बागजी, जो सदा अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों की नाक में दम किए रहते थे। अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो इस देश पर अत्याचार ही था। वे हरदम विद्रोही गतिविधियों के दमन पर जोर देते रहते थे। एक बार बागजी अपने साथियों के साथ गुवाहाटी के एक मकान में रह रहे थे। क्रांतिकारी सारी रात बारी बारी जागते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। एक बार रात में पुलिस ने मकान को घेर लिया। जो क्रांतिकारी जाग रहा था उसने सबको जगाकर सावधान कर दिया। सबने निश्चय किया कि पुलिस के मोर्चा संभालने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। निश्चय करते ही सब गोली वर्षा करते हुए पुलिस पर टूट पड़े। इससे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। इसका लाभ उठाकर क्रांतिकारी वहां से भाग गए और जंगलों में जा छिपे। वहां भूखे प्यासे कई दिनों तक वे छिपे रहे। पुलिस भी उनका पीछा करती रही। जैसे तैसे 3 दिन बाद उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। वे भोजन करने बैठे ही थे कि पहले से मौजूद बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया। वे समझ गए कि भोजन आज भी उनके भाग्य में नहीं है। वे सब भोजन को छोड़कर फिर भागे, पर पुलिस इस बार अधिक तैयारी में थी।

मुठभेड़ चालू हो गई और तीन क्रांतिकारी वहीं मारे गए। तीन बचकर भाग निकले, उनमें नलिनीकांत बागची भी थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी, फिर भी वे तीन दिन तक जंगल में भागते रहे। इस दौरान एक जंगली कीड़ा उनके शरीर से चिपक गया, उसका जहर भी उनके शरीर में फैलने लगा। वे फिर भी किसी तरह हावड़ा पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे वे बेहोश होकर गिर पड़े। सौभाग्यवश नलिनीकांत का एक पुराना मित्र उधर से गुजर रहा था, वो उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने मट्ठे में हल्दी मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लेप किया और कई दिन तक भरपूर मात्रा में उन्हें मट्ठा पिलाया। इसके कुछ दिन बाद नलिनीकांत बागची ठीक हो गए। ठीक होने पर नलिनी मित्र से विदा लेकर कुछ समय अपना हुलिया बदलकर बिहार में छिपे रहे, पर चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः वे अपने साथी तारिणी प्रसन्न मजूमदार के पास ढाका आ गए, लेकिन पुलिस तो उनके पीछे पड़ी थी। 15 जून को पुलिस ने उस मकान को भी घेर लिया जहां से वे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। उस समय तीन क्रांतिकारी उस मकान में मौजूद थे। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पास के मकान से दो पुलिस वालों ने घुसने का प्रयास किया, पर क्रांतिवीरों की गोली से दोनों घायल हो गए। क्रांतिकारियों के पास सामग्री बहुत कम थी, अतः तीनों दरवाजा खोलकर गोली चलाते हुए बाहर भागे। नलिनी की गोली से पुलिस अधिकारी का टोप उड़ गया, पर पुलिस वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अंततः नलिनी भी गोली से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें बग्घी में डालकर अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन 16 जून 1918 को नलिनीकांत बागची ने भारत माँ को आजाद कराने की अधूरी कामना मन में लिए ही शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आज डायबिटीज एक आम बीमारी है और जिस किसी को ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि आखिर वो क्या खाए, क्या ना खाए, किस तरह का परहेज रखे, कैसा जीवन व्यवहार रखे वो। लेकिन हम आपको बता दें कि डायबिटीज से दूर रहना या इसे नियंत्रण में रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, या अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। जी हाँ, आप हरा सकते हैं डायबिटीज को। तो इस बीमारी को हम हराएं, इसके लिए जरूरी है कि पहले इसे हम जानें। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 जो कि अनुवांशिक गड़बड़ी या संक्रमण की वजह से होती है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं और इंजेक्शन के द्वारा लेनी पड़ती है। गर्भावस्था की डायबिटीज मुख्यतः इस दौरान हार्मोन्स में होने वाले बदलावों के कारण होती है और प्रसव के बाद अक्सर ठीक भी हो जाती है। इसलिए इसका उपचार जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को भी अधिक खतरा होता है। डायबिटीज का दूसरा प्रकार है टाइप 2। आमतौर पर डायबिटीज का तात्पर्य इसी से होता है, जो किसी को भी हो सकती है। श्रोताओं, टाइप 1 और गर्भावस्था की डायबिटीज

मिलती है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जरूरी बातें डायबिटीज को लेकर। अगर इन बातों का ख्याल आप रखेंगे तो निश्चित ही आपकी जिंदगी गुनगुनाएगी खुशियों के गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
2: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तरे भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना? पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थितिवश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदलकर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आपको पता है बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है?
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके गिरने वाला पानी इसी तरह तेजी के साथ इकट्ठा आकर धरती पर गिरता है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं।
1: इसे हम आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बलून में बारीक बारीक छेद करें और फिर उसमें पूरा पानी भर दें, तो पहले तो पानी बारिश के हल्की बूंदों की तरह धीरे धीरे उन छेदों से बाहर आकर नीचे गिरेगा, है ना?
0: हाँ, पर अगर इन बारीक छेदों को अचानक से झटके से तोड़ दो तो एकदम सारा पानी पूरे वेग से बाहर आकर नीचे गिरेगा, और इसे ही कहा जाता है बादल फटना, या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं के दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं, और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतरकर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं, और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है, और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकराकर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है, और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भट्टरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जीडर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए, जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है, बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हो या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है। और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है। एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है। तब हमें आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है।
0: और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति में फर्क होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें चमक पहले और बिजली के कड़कने की आवाज बाद में सुनाई देती है।
1: बादल हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला तो ये कि बादल हमारे जल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
0: ये बादल बारिश और बर्फ, महासागरों और झीलों तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं, जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरसकर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं, और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल। अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी,
0: और मैं थी धरा यानी वर्षा,
1: और मैं था आपका दोस्त बादल यानी दीपक।
0: तो इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: प्रकृति की पुकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: छोटी सी बात। श्रोताओं नमस्कार, छोटी सी बात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम कुछ छोटी छोटी सी बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत काम की बातों की चर्चा। तो चलिए आज हम बात कर लें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ गलतियों की, जो अक्सर हम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आप तो भाई बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, योगा भी करते हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी है, उसके बाद भी आप बहुत जल्द थक जाते हैं, नींद सी आने लगती है, या कभी कमजोरी सी लगने लगती है? होता है ऐसा? अगर ऐसा होता है तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल शरीर में कुछ चीजों की कमी दूसरी चीजों की पर्याप्त मात्रा पर भी हावी हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। आपको लगता है कि सारी चीजें तो ठीक हैं, हम बिल्कुल अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हर बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी कमी आपके पूरे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाती है आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि संतुलित भोजन का हिस्सा कौन कौन सी चीजें होती हैं। दोस्तों, जो पानी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जी हाँ, पानी की पर्याप्त मात्रा। हम अक्सर सुनते हैं कि कम से कम एक दिन में 7-8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल भरा काम है, इतना पानी हम कैसे पी सकते हैं। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पानी की कमी है वो सिर्फ पानी पीने से ही पूरी नहीं की जा सकती है, उसके दूसरे भी विकल्प हैं। जी हाँ, दूसरे ऑप्शंस भी हैं, यानी सिर्फ पानी पीने की जगह आप नींबू का पानी पी सकते हैं, या जिन फलों में बहुत पानी होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उनका सेवन आप ज्यादा कर सकते हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो फिर जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से प्रोटीन की बात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं जो शाकाहारी होते हैं कि उन्हें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। पनीर में प्रोटीन होता है, विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, और सबसे बड़ी बात, सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, तो सोयाबीन को आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, आपका दिमाग प्रोटीन से बहुत तेज़ गति से काम करता है, इसलिए शाकाहारी अगर आप हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और श्रोताओं, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई खास बीमारी आपको नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम फैट को बहुत ही हानिकारक समझकर उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन फैट भी ज़रूरी है, हर तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर फैट की कमी हो जाए तो ये भी खतरनाक बात होती है। दरअसल फैट जो है वो पूरे दिन हमें ऊर्जा देता है, इसलिए मेवे, नट्स, बटर आदि को भी एक सीमित मात्रा में अपने डाइट में शामिल करिए। हाँ, जानवरों के फैट्स और तेल का इस्तेमाल करने से ज़रूर बचिए, क्योंकि वो हानिकारक होता है। और दोस्तों, अब बात आई कार्बोहाइड्रेट्स की। जी हाँ, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा न हो तो बहुत आपको सरदर्द होगा, और कई बार चक्कर सा आने लगेगा, कब्ज की शिकायत हो सकती है, या उल्टी जैसी परेशानियाँ भी लगने लगती हैं, आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। हाँ, केक, क्रैकर्स, ब्रेड को आप जितना हो सके अनदेखा करिए। और दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कम खाना खाने से वो स्वस्थ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरा खाना नहीं खाने से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे आपको ज्यादा भूख लगेगी, वजन बढ़ेगा, और कई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। जब आपके शरीर को पूरा खाना नहीं मिलता है ना, तो स्वाभाविक रूप से आपको काफी थका हुआ सा महसूस होगा। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए, न तो ओवर ईटिंग करनी चाहिए और न ही डाइटिंग करनी चाहिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं और आपका जो शारीरिक श्रम है वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाता है।

0: छोटी सी बात।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन एक नदी की भांति निरंतर बहता रहता है। कहीं बाल्यावस्था की चंचल लहरें हैं, कहीं युवावस्था का प्रबल वेग और कहीं अनुभवों की गंभीर गहराइयां। संसार इन लहरों के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहता है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि उस सागर की ओर होती है जहां सभी लहरें अंततः विलीन हो जाती हैं। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम का चिंतन हमें इसी गहन सत्य के समीप ले जाता है। जिस बाल्यावस्था को लोग निष्कपट आनंद का काल मानते हैं, उसमें श्री राम अज्ञान और अस्थिरता की छाया देखते हैं। जिस युवावस्था को संसार सामर्थ्य, सौंदर्य और सफलता का शिखर कहता है, उसमें वो कामनाओं के तूफान, अहंकार के जाल और क्षणभंगुर आकर्षणों की अनिश्चितता का दर्शन करते हैं। और उनकी ये दृष्टि किसी विरक्ति से उत्पन्न नहीं होती, ये उस जागरण का परिणाम है जब मन पहली बार जीवन से पूछता है कि जो बदल रहा है क्या वही सत्य है, जो आज है और कल नहीं रहेगा क्या इस स्थिति में स्थायी सुख की खोज की जा सकती है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार से उत्पन्न भ्रमों को शांत कर देती है, वैसे ही विवेक का उदय मनुष्य को जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। भगवान श्री राम का वैराग्य उसी विवेक की उज्ज्वल ज्योति है, एक ऐसी ज्योति जो अज्ञान को दूर करती है, जो संसार के यथार्थ का उद्घाटन करती है। आइए योग संवाद में हम उस दिव्य चिंतन के साक्षी बने जहां एक राजकुमार के प्रश्न समस्त मानवता के प्रश्न बन जाते हैं, और जहां वैराग्य जीवन से विमुख होने का नहीं बल्कि सत्य के प्रति जागृत होने का नाम हो जाता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: योग वासिष्ठ में हमने प्रवेश किया है
2: जी,
1: और भगवान श्री राम के वैराग्य प्रकरण पर चर्चा चल रही है, और आज हम पहुंचे हैं जहां भगवान श्री राम बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर अपनी बात रखते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है शशिकांत जी कि बचपन जो होता है उसको हर इंसान अपने जीवन का स्वर्ण काल मानता है। हम बचपन की स्मृतियों में होते हैं, बचपन सबसे अधिक आनंददायी हमें लगता है और बचपन के जो स्वाद हैं वही जीवन भर हम तलाशते हैं। ऐसे बचपन को भगवान श्री राम किस तरह से देख रहे हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं कि बाल्यावस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह की चेष्टाएँ करता है, क्या कहते हैं श्री राम।
2: देखिए, बाल्यावस्था का जो सौंदर्य है वो बड़े लोग देखते हैं
1: जी।
2: क्या बच्चों को भी बाल्यावस्था में उस आनंद की अनुभूति होती है?
1: बिल्कुल भी नहीं।
2: तो इस बात पर विचार करना है। और जो आपने कहा कि वैराग्य एक प्रकार की जागृति है जहां पर हम उन पक्षों को भी देखें जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मन प्रायः एक पक्ष जिसे वो चाहता है या जिसे नहीं चाहता है उसी पर फोकस होता है और बाकी चीजों को नकार देता है।
1: जी जी।
2: तो एक बहुत बड़ा इसका दोष भी है, ये गुण तो है किसी क्रम में, लेकिन दोष भी है कि आप समग्रता से नहीं देख पाते, राग द्वेषात्मक वृत्तियों से प्रेरित होके देखते हैं। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वो पशु पक्षियों की तरह होती हैं। जैसे पशु पक्षी चेष्टा करते हैं, यानी मनुष्य उस समय यद्यपि मनुष्य का शरीर है लेकिन वो जो शरीरधारी जो जीव हैं उनके द्वारा चेष्टा कर रहा है, उनके जैसा चेष्टा कर रहा है। उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। वो खिलौनों के लिए रोना, मूढ़ बुद्धता उसके जीवन में दिखाई देगी, दीनता, चंचलता, अभिलाषा, ये सब बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं। हर जगह जहां भी कहीं देखेगा वो मांग करना शुरू कर देगा। कई बार बच्चों को पालना बड़ा कठिन लगता भी है इसी नाते कि वो कोई भी जिद करता है, अनावश्यक जिद। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार किसी राजा ने पूछा ये अकबर बीरबल के संदर्भ में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने कहा कि सबसे कठिन काम है बच्चे को पालना। कैसी बात कर रहे हो आप?
3: जी जी जी।
2: तो कहते हैं कि ठीक है, आपको यकीन ना आए तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा क्या चाहिए उसको? तो हाथी चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो एक घड़ा चाहिए। तो घड़ा हाथी दोनों आ गए उसके सामने। फिर बच्चे ने कहा कि अब हाथी को घड़े में डाल दो। तो ये कहते संभव ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के असंभव कार्य बचपन में उत्पन्न होते हैं।
3: भगवान भी जब मानव शरीर लेकर इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी तो चंद्र खिलौने की जिद की।
2: हाँ, बिल्कुल, हाँ, चंद्र खिलौने की,
3: चंद्रमा खिलौने के लिए चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये एक सहज बचपन की
2: बचपन की रहती है। लेकिन राम जी जब ये बाल्यावस्था देख रहे हैं, जिस समय जो वैराग्य हुआ है, वैराग्य का मतलब होता है कि उस पक्ष को देखना जो पक्ष नजरअंदाज करके हम जीते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस समय जो पशु पक्षियों जैसी चेष्टा हो जाती है, इसलिए ये अवस्था जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत याद किया जाए। और अक्सर बड़े लोग जब तकलीफों को देखते हैं तो कहते हैं इससे सुंदर बचपन था, बचपन को याद करते हैं, कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन बच्चा देखता है बड़े लोगों को तो सोचता है ये बड़े लोग कितने अच्छे हैं, हम कैसे बड़े हो जाएं,
3: कितनी जल्दी बड़े हो जाएं।
2: तो यही है जीवन, जो चीज मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वो खो जाता है तो फिर बहुत कीमती हो जाता है।
3: ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बचपन के ख्यालों में हम खोए रहते हैं, उस आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन दरअसल जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारी आकांक्षाएं सब वैसी ही होती हैं, और उसी तरह की परिस्थिति से हम गुजरते हैं जैसे कि बड़े होने के बाद।
2: बड़े होने के बाद
3: वो जो लीलाएं हैं या जो भी बचपना है वो बड़ों के लिए आनंद का कारक होता है, बच्चे के लिए तो नहीं होता। तो चलिए, आपने बताया कि पशु पक्षी की तरह चेष्टा करता है बच्चा जब छोटा होता है, वो बचपन जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, सुखद मानते हैं, उसे श्री राम किस तरह से देख रहे हैं इस ग्रंथ में?
2: वो कह रहे हैं कि ये जो बचपन को बहुत रमणीय समझता है वो एक प्रकार से मूढ़ बुद्धि है, उसका बार बार धिक्कारण होना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में बचपन को रमणीय समझ रहा है। कहते हैं मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था का जो मन है युवा अवस्था या अन्य अवस्थाओं की तुलना में 10 गुना चंचल है।
3: जी जी।
2: तो उस अवस्था को रमणीय कहना एक प्रकार की मूढ़ बुद्धि होने का प्रमाण है। वो कभी रमणीय नहीं होता, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसमें तो 10 गुना चंचल होता है, पदार्थों को ही सबसे बढ़ करके मानता है। और बचपन और मन ये दोनों सभी वृत्तियों में सहोदर की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यानी आप देखें तो बचपन में मन इतना प्रबल होता है कि जैसे लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से मन ही जी रहा हो। यहाँ तो आदमी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, विवेक का भी प्रयोग कर लेता है, लेकिन बच्चा जो है पूरे तो समय मन के साथ जीता है।
3: जी।
2: तो जो ये कहते हैं कि वो बचपन और मन ये दोनों सहोदर हैं, एक साथ बचपन में प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये अवस्था बहुत ही चंचलता की अवस्था है। यहाँ पर हमेशा दीनता का भाव बना रहता है, देखी और अनदेखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, उसकी बुद्धि शरीर दोनों चंचल होते हैं। शरीर में भी चंचलता होती है और बुद्धि में भी होती है। आप देखें तो बच्चा कभी भी शरीर से स्थिर नहीं बैठ सकता,
3: बिल्कुल नहीं,
2: और मन से भी स्थिर नहीं है।
3: जी।
2: आप जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है, कई बार शरीर अस्थिर होता है, मन स्थिर होता है। जैसे किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो शरीर से तो आप गतिशील हैं, लेकिन आपका मन तो उस कार्य में लगा हुआ है ना। लेकिन बचपन में ना मन लगता है ना शरीर स्थिर है, ये दोनों के दोनों चंचल हैं। बाल्यावस्था भय का मंदिर कहा राम जी ने, क्योंकि सभी डराते ही तो है बच्चों को। डर डर के उसको खाना खिलाइए तो डरा के खिलाइए, अपने हिसाब से आपको जो करवाना है तो डराइए। तो ऐसे में बच्चा सबसे डरता है और उसके चित्त में अनेक प्रकार के दूषण पैदा होते हैं। बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है, राम जी कह रहे हैं कि ये अविवेक नाम को धारण करने वाला जो विलासी है, जो हर चीज बिना विवेक के करता है, उसी का वो विलास भवन है जहां पर अविवेक से संबंधित सारे कार्य होते हैं।
3: जी,
2: इसीलिए आप देखिए बचपन के किसी को याद दिलाओ तुम बचपन में ये करते हो तो बचपन की जिद बड़े होने के बाद आदमी नहीं करता, वो सारी चीजें छोड़ देता है।
3: जी, बाल्यावस्था पर भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं वैराग्य दशा में,
2: जी
3: ये हमने जाना। और अब हम आते हैं युवावस्था पर।
2: जी,
3: युवावस्था को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऊर्जा के लिहाज से, अपने सपने पूरे करने के लिहाज से। अपने देश की हम बात कर लें तो भाई यही उसकी बड़ी महानता है कि सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश होने जा रहा है या है। तो उस युवावस्था में अगर अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो चित्त की क्या स्थिति होती है?
2: इस अवस्था में चित्त की स्थिति होती है कि भोग भोगने का उत्साह प्रबल होता है, भ्रांति और काम रूपी पिशाच चित्त को हमेशा दूषित करके नरक में गिराने के लिए उद्दत रहता है।
3: अच्छा।
2: हाँ, उसको पिशाच नाम दिया कि, और आज के समय में तो और जहां पर युवा आज डिजिटल डिवाइस के साथ खड़ा है, तो ऐसे में आप देखिए तो उसके चित्त की स्थिति है कि अब तो एक ऐसी बीमारी विकसित हो रही है आज के समय में। बात करें, राम जी ने तो उस समय कहा कि वो हमेशा व्यक्ति को नरक में गिराने के लिए उत्सुक रहता है काम रूपी पिशाच, लेकिन यहाँ पर तो आदमी उसका जो अटेंशन स्पेन है वही खत्म हो रहा है, वो कहीं बहुत देर तक एकाग्र नहीं हो सकता। इन संयंत्रों के द्वारा ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि व्यक्ति के चित्त को ऐसे तोड़ दिया जाए कि वो एक मिनट से अधिक कहीं एकाग्र ना हो सके। और जो ये रील देखने का, जो स्क्रॉल करने का जो प्रचलन चला है, वो एक प्रकार का ऐसी ही मानसिक रोग को जन्म देने का कारण बना हुआ है। वर्तमान में धीरज समाप्त हो चुका है, और इसका प्रभाव भी आप देखिए तो आए दिन खबरों में ये बात आती है कि थोड़ी सी बात पर युवा आत्महत्या या तमाम तरह के ऐसे कदम उठाने पर तैयार है कि थोड़ी सी भी सहनशीलता उसमें नहीं है, जबकि इस समय उसके पास शक्ति है, शक्ति का नियंत्रण परम आवश्यक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि मैं उन माता पिता को ये अपील करूंगा कि जो अपने बच्चों को तमाम सारे शक्ति के साधन अर्पित करते हैं, वो उन साधनों को देने से पहले उनके अंदर संस्कार पैदा करें। अगर संस्कार नहीं पैदा करेंगे तो वो सारे साधन ही उनके विनाश की वजह बनेंगे। और आज देखिए पाश्चात्य देशों में कई बार स्कूलों में बच्चे बंदूक चला देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति होती है किशोरावस्था में कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, भावनाएं स्थिर नहीं होती, उसको मनोविज्ञान में तो आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक अस्थिरता का दौर होता है और आदमी भावनात्मक निर्णय लेता है, और भावनात्मक निर्णय हमेशा दोषपूर्ण होगा ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो चित्त की स्थिति होती है वो बार बार जो यौवनारूढ़ होता है वो निश्चित तौर पर कामनाओं के अधीन होता है, और कामनाओं का जो पिशाच है वो नर्क की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, दुख से दुख को ही प्राप्त करता है इस अवस्था में व्यक्ति।
3: तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि युवा अवस्था में चित्त की दशा क्या होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कहता है ये ग्रंथ कि यौवन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
2: इसको कहते हैं राम जी कि हे मुने, इस अवस्था को जब मैंने देखा तो युवा अवस्था में स्त्री द्युत कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि प्रसिद्ध दुष्ट दोष उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के चित्त में, और इसको राम जी कहते हैं कि ये नरक का बीज है। युवा अवस्था को नरक का बीज कहा, जबकि ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति बहुत शक्ति संपन्न होता है। तो अगर ये नरक का बीज है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करा पाने में ये सक्षम है कि जहां व्यक्ति नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाए। इसीलिए आप देखिएगा कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था को किसी ने साध लिया तो वो पूरे जीवन को अपने अनुरूप जी सकता है, और जिसका ये अवस्था नहीं सदा युवा अवस्था
3: में बह गया
2: तो वो भटक जाता है। कहते हैं ना कि आप चंद खुशियों के लिए पूरे जीवन भर रोना चुन सकते हैं, और थोड़े दिन की साधना कर लें अगर युवा अवस्था की तो पूरे जीवन आप हंस सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। और जिन लोगों ने साधा वो निश्चित तौर पर सफल हुए, सफल कहे भी जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करता है। यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य किसी दूसरे से नष्ट ही नहीं हो सकते। यानी आप देखिए कि ये कैसी अवस्था है, जिस अवस्था को अगर आपने साध लिया तो फिर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको नष्ट कर सके। तो यौवन कितना मतलब कठिन अवस्था है, जहां पर कहते हैं इस अवस्था ने अगर नष्ट नहीं किया तो फिर उसको कोई और मनुष्य नष्ट नहीं करेगा। यानी नष्ट होने के सारे जो साधन हैं वो इसी अवस्था में होने की संभावना है, और जीवन में देखें तो जीवन के सारे उत्थान भी इसी अवस्था में होने की संभावना है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं विचार करने योग्य अवस्था है। जी
3: जी। अच्छा, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि युवावस्था कैसी है?
2: युवावस्था के लिए वो कहते हैं कि यह अमंगलकारी यौवन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो भोगों के समय मधुर एवं स्वादिष्ट लगता है और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है। और आप देखें तो संसार का कोई भी भोग ऐसा नहीं है जिस भोग को भोगने के बाद पछतावा ना हो। तो ये कहते हैं कि अंत में तिक्त प्रतीत होता है और इसमें दोष ही दोष भरे हैं। सब दोषों का ये आभूषण है, मदिरा के मद के विलास के समान मोहक है। जैसे मदिरा में आदमी मद के सम्मोहन में आ जाता है, वैसे ही ये अवस्था है जिसमें आदमी दोषों के आभूषण को पहन लेता है और दोषपूर्ण कार्य के प्रभाव में आ जाता है और दोषपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है।
3: जी जी जी। लेकिन तभी जबकि युवावस्था साधा न जाए, अगर साध लिया तो फिर जिंदगी भर आनंद की भी स्थिति
2: बिल्कुल
3: होती है।
2: बिल्कुल।
3: अच्छा, युवावस्था में व्यक्ति को क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं युवराज राम?
2: जी, कहते हैं कि इस अवस्था में असत्य होकर भी सत्य प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है, तथा स्वप्नावस्था में जिस तरीके से हम तमाम सारे सुख वैभव भोग रहे होते हैं और उस भोग में स्वप्न टूटने के बाद वो खत्म हो जाता है, वैसे ही इस अवस्था की स्थिति है कि यहाँ पर भी आदमी स्वप्न के भोगों की भांति सुख की तरफ भागता है, और जबकि सच ये है कि जाता है उसके पास, और फिर जैसे वो मृग जो है पानी के भ्रम में दौड़ता है रेगिस्तान में, और उसमें प्यास बढ़ता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है,
3: प्यास बढ़ती है,
2: और अंत में वो प्यास से ही मर जाता है। तो ठीक ऐसी ही अवस्था है जहां पर जिन विषयों के प्रति व्यक्ति भागता है, उन विषयों के प्रति और आकर्षण या और प्रबलता से उन भोगों की इच्छा और जन्म लेती है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आभूषण है दुख का, अमंगलकारी है, और इसमें व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मतलब असत्य में सत्य सा प्रतीत होता है, वहां सत्य है नहीं, सुख है नहीं, लेकिन वहीं वो सुख खोजता है। जैसे आप देखिए ना, युवावस्था में बच्चे जहाँ जाकर के अपना समय बिताते हैं, उसका वास्तव में वो अगर विश्लेषण करें तो क्या उस समय का उनके जीवन में कोई उपयोग है? अगर देखें तो वो जो करने योग्य है वो न करके जो नहीं करने योग्य है उनमें अधिक ध्यान देते हैं और अधिक समय व्यतीत करते हैं।
3: जी, जी,
2: तो इसलिए उसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। असत्य कहा उन्होंने,
3: असत्य। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है, एक युवा जो होता है, उसकी बुद्धि किस तरह से काम करती है?
2: जी, इस अवस्था में उसकी बुद्धि युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाला जो आयोजन है, व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है और उसकी बुद्धि मोह से युक्त होती है और बुद्धि कुंठित कर देता है मोह, और इस भ्रम से प्रेरित होकर वो अतिशय मात्रा में भ्रम का उत्पादन करता है। यानी बुद्धि जो होती है वो भ्रमोत्पादक होती है, माने भ्रम का निवारण करने वाली नहीं होती, भ्रम का उत्पादन करने वाली होती है। राम जी तो कहते हैं जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। ऐसी स्थिति होती है जैसे अत्यंत निर्मल विस्तृत और पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल विशाल और शुद्ध बुद्धि भी युवा अवस्था में कलुषित हो जाती है। इसका आशय ये है कि अगर हम मन के या युवा अवस्थाओं के इस स्थिति को जान लें तो हमारे अंदर सावधानी बढ़ेगी, हम सजग होंगे, न कि ये उसका निंदा है।
3: हाँ,
2: निंदा नहीं है
3: बिल्कुल, क्योंकि निंदा कहा भी नहीं, दोष कहा।
2: हाँ, दोष कहा है, दोष है। तो जब दोष की बात आती है तो इसका मतलब सावधान होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जी,
3: ऐसा नहीं कि युवावस्था मूल्यहीन है,
2: नहीं नहीं बिल्कुल,
3: अत्यंत मूल्यवान है,
2: अत्यंत मूल्यवान।
3: लेकिन उसके जो दोष है उसको हम जब जान लेंगे
2: तो सजग रहेंगे
3: बिल्कुल,
2: अवेयर रहेंगे। जी,
3: अक्सर इस बातचीत में हम गुणों की चर्चा करते हैं, योग संवाद कार्यक्रम में कई बार गुणों की चर्चा हुई है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, कुछ गुण होते हैं जो कम या ज्यादा होते हैं हर व्यक्ति में। तो क्या अवस्था के हिसाब से भी इन गुणों का घटना या बढ़ना होता है? युवावस्था में किन गुणों की वृद्धि होती है?
2: आपने बहुत सुंदर सवाल किया, और बिल्कुल ऐसे ही इस अवस्था का वर्णन करते हुए राम जी गुरु जी से कहते हैं अपने
3: जी।
2: कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम अवस्था है। यानी ये दो गुण जो है इसमें इतने प्रबल है कि सत्व गुण जो प्रकाश देता है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो हमेशा ये दोनों ढक लेते हैं। व्यक्ति जो सोचता है वो करने के लिए क्रियाशील होता है, जो विचार उसके मन में आया या जिस भी विषय के भोग या जिस वस्तु या व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा विकसित हुई वो उसी के चिंतन में निरंतर रत रहेगा या उसी को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर रत रहेगा। उसका क्या परिणाम होगा या वो करणीय है या अकरणीय है, ये विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता, क्योंकि ये विचार करने के लिए सत्वगुण का प्रकाश चाहिए और सत्वगुण का प्रकाश ढक जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं होता, जो लोग साधते हैं वो सत्वगुण भी होता है, क्योंकि हर गुण में ये तीनों गुण होते हैं। तो लेकिन इस गुण की वृद्धि होती है, इस गुण की पूर्णता होती है इस अवस्था में। सद्गुण की स्थिरता को नष्ट करने में ये दोनों गुण दक्ष हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका जो है काफी विस्तार रहता है इस अवस्था में, और व्यक्ति इसी अवस्था से प्रेरित होकर के हमेशा क्रियाशील भोग की तरफ उन्मुख रहता है। जी, ये इस अवस्था के दोष।
3: अभी आपने चर्चा की मृग तृष्णा की,
2: हाँ,
3: यौवन को मृग तृष्णा कहा क्यों भगवान श्री राम ने?
2: मृग तृष्णा इसको इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ये संसार एक मृग तृष्णा, कई बार अध्यात्म में मृग तृष्णा शब्द का बड़ा उपयोग किया जाता है कि ये जगत जैसे मृग को पानी का भ्रम होता है उन उड़ती हुई रेतों में प्रकाश के अपवर्तन या प्रक्रिया के कारण उनको भ्रम होता है और उसी तृष्णा से वो मृग उस पानी में प्राण गंवा देता है, अपना जीवन गंवा देता है, जबकि वहां पानी है नहीं। जितना ही दौड़ता है, जैसे हम कहते हैं ना क्षितिज पर आसमान और धरती को मिलते हुए हम देखते हैं आकाश और धरती का संध देखते हैं, लेकिन कहीं होता नहीं है, तो ठीक ऐसे ही इस जगत में व्यक्ति मृग तृष्णा जगत की होती है उसे, और युवा अवस्था में ये इतनी प्रबल होती है कि जिसमें व्यक्ति करने योग्य कर्म त्याग करके हमेशा प्यास बढ़ाने के क्रम में भागता रहता है। जैसे मृग प्यास बुझाने के प्रयास में दौड़ता है और प्यास बढ़ाता है, वैसे युवा अवस्था में आदमी अपने इच्छाओं को शांत करने की कोशिश में इच्छाओं को और बलवती करता है और उन इच्छाओं के वशीभूत होता है और इच्छाओं का पूरी तरीके से गुलाम होकर अपने भविष्य तक को नष्ट कर डालता है, अपने जीवन के उद्देश्य तक को भूल जाता है। या देखें तो जीवन में जो कहा गया नरक का बीज, यानी जीवन को नारकीय बनाने वाला अगर कोई अवस्था है तो युवा अवस्था है, अगर नहीं साधा गया या उनके दोषों के साथ हम सजग नहीं हुए तो। और सजग जो लोग हो जाते हैं वो पूरे जीवन जो है अपने जीवन को अपने वश में कर करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए मृग तृष्णा से नाम दिया उन्होंने कि जिसमें प्यास बुझाने की कोशिश में प्यास की ही बढ़ोतरी होगी और अंततः आदमी प्यासा ही मर जाएगा।
3: जी, तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण से चर्चा की कि बाल्यावस्था और युवावस्था के क्या दोष हैं, और विस्तार से आपने बताया कि भगवान श्री राम की दृष्टि क्या देख रही है दोनों अवस्थाओं में। जो आज के हमारे लोग हैं, जो आज के युवा हैं या आज के जो बच्चे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे?
2: उनसे मैं यही कहूंगा कि यौवन रूपिणी जो रात्रि है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, इसका वो याद रखें। और उस
3: युवावस्था को रात्रि कहा,
2: रात्रि कहा राम जी ने, कहा कि ये रात्रि है, इसको दिन, और हम लोग दिन समझते
3: हैं, दिन समझते हैं।
2: देखिए कितनी दृष्टि, तो वो इसका अर्थ ये नहीं कि दिन नहीं है, दिन है तो रात को भी याद करो। योग का अर्थ ये नहीं हुआ, योग का अर्थ किसी एक पक्ष तक नहीं, समग्रता से देखने का जो कौशल है वो है योग। और योग बिना वैराग्य के, मैं स्पष्ट करूंगा कि वैराग्य का अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम पलायन करें, वैराग्य पलायन नहीं है, वैराग्य जागरण है, एक सत्य का जागरण, जिसके बाद आप योग वासिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण की बात करेंगे। राम जी, जब वैराग्य की जब बात हो जाएगी कि वैराग्य किन किन कारणों से उनको हुआ है, तो जब गुरु से अपने पूरे चित्त की बात, अच्छा एक बात और भी आप देखिएगा कि जब आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसको कहना चाहिए, कह करके ही आप उससे मुक्त होते हैं। कई बार हम उसी गुंतेड़े में उलझे रहते हैं, न कह पाते हैं और न मतलब छूट पाते हैं, तो वो बार बार हमारे अंदर बना रहता है और फिर हमको अस्थिर करता है हमारे भावनाओं को। इसलिए कहते हैं एक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कैथारसिस, जिसमें कहते हैं हम लोग उसको निकालिए। तो यहाँ पर राम जी को जिन जिन कारणों से वैराग्य हुआ है, वो सारे कारण पहले वो गुरु से कह रहे हैं
3: बिल्कुल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण।
2: और गुरु उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं सुनकर, ऐसा नहीं इसे आपके सामने कोई आकर के ऐसे कहे तो हो सकता है कि आप उसे पॉजिटिव या उसको नेगेटिव कहने लगे। गुरु कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये विवेक से उत्पन्न हुआ है। तो राम जी को वो उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इन सारी बातों को कहो, देखो, क्योंकि वो देखना आवश्यक है। जब तक संपूर्णता से किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक आप मतलब न्यायशील नहीं हो पाएंगे।
3: बिल्कुल, और यही एक संदेश आज के माता पिता के लिए भी आपकी तरफ से हो गया जो मैं समझ रही हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कि बच्चा अगर गुमसुम हो जाए, किसी चिंतन में दिखाई दे बार बार असामान्य रूप से,
2: जी,
3: तो जिस तरह राम बोले इसके लिए प्रयास गुरुजनों का है, पिता का है, इस तरह का प्रयास परिवार में माता पिता का भी होना चाहिए।
2: बच्चा अगर बचपन के साथ नहीं है, या हम अपने आकांक्षाओं के नाते बच्चों को बचपन के साथ न रख करके उसे अपने जैसा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारी बहुत बड़ा अनदेखापन है कि हम बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। आपका उससे संवाद होना चाहिए, ये एक संवाद है, योग संवाद है, वाद प्रतिवाद नहीं है, संवाद है। संवाद में जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो उसको आप कहने का पूरा अवसर दीजिए ताकि वो कह के उससे मुक्त हो सके और फिर उसके दूसरे पक्ष को उसके सामने आप रख सकें, तभी तो योग होगा, तभी तो जुड़ना होगा। तो ऐसे में गुरुजी के सामने वो अपने मन की पूरी बात रख रहे हैं और वो बाल्यावस्था और युवावस्था के उन दोषों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां बाल्यावस्था युवा

0: आज योग संवाद कार्यक्रम में बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर, और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी बातचीत है ये
1: जी।
0: अपने जीवन में भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इसको उतार सकते हैं
1: जी।
0: और इस तरह से युवावस्था और बाल्यावस्था को देखा जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका रहा, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे थे बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कागज की कश्ती, बारिश की बूंदें, माँ की लोरी, बाबा के कंधे, टॉफी की जिद, मेलों की भीड़, बस्ता टांगे ना कोई पीड़, ये है बचपन, रंगों का संसार, खेल खिलौने सपनों का त्योहार। इसे सहेजे, इसे बचाएं, बच्चों के हाथ किताबें थमाएं। श्रोताओं, बच्चों की, नन्हे मुन्नों की दुनिया रंग बिरंगी तितलियों के जैसी होती है। ना कोई चिंता, ना कल की कोई फिक्र, उनके लिए हर दिन नया सा ही होता है। खेल खिलौने, मिट्टी धूल, थोड़े से सपने और किताबें, बस इन चंद चीजों से ही उनकी दुनिया पूरी हो जाती है। बच्चों को भगवान का रूप हम इसीलिए तो कहते हैं ना। लेकिन श्रोताओं, विकास की इस दौड़ में बच्चों का बचपन भी रौंद गया। 8 साल का मासूम जिसके हाथ में किताब की जगह केतली है, पेंसिल की जगह हिसाब की पर्ची है, इनकी दुनिया में ना स्कूल की घंटी बजती है और ना लंच बॉक्स खुलता है। जरा सोचिए, इनकी क्या गलती है। श्रोताओं, आज है 12 जून, जिसे हम प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं फैक्ट्री जाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, जोखिम भरे काम करते हैं, और ये सब आता है बाल श्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे की गंभीरता क्या है, समाज में, परिवार में क्या जागरूकता होनी चाहिए, इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री संजय सिंह जी, जो 30 वर्षों से बचपन संस्था से जुड़े हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए लगातार कार्यरत हैं। नमस्कार सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने विशेष दिन पे आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
1: सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 12 जून का जो दिन है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं, हमें ये बताइए कि कब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है और क्या उद्देश्य है आज के दिन को मनाने का।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि बाल श्रम की समस्या कमोवेश विश्व के सारे देशों में है
1: जी।
2: और ILO, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, 2002 में एक प्रक्रिया शुरू की, हर प्रतिवर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बाल श्रम को लेके जन चेतना लाना, लोगों में जागरूकता लाना और बाल श्रम को धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में सरकारों का, समाज का और सिविल सोसाइटी का सहयोग लेना। तो ये कि ये बड़ा दिन होता है हमारे लिए भी, हम बच्चों के लिए काम करते हैं और इस दिन हम लोग भी तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां करते हैं, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे समाज में बच्चों के श्रम को लेके एक विरोध पैदा हो, एक चिंता पैदा हो, एक शिकन पैदा हो, ताकि बच्चे काम में न रहें, स्कूल जाएं और स्कूल में पढ़ाई करें और अपना विकास करें।
1: सर, बाल श्रम क्या है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे, जैसे कौन कौन से काम जो है वो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं।
2: ILO ने जिनका नाम लिया मैं, उन्होंने ही बड़ी अच्छी परिभाषा दी है इसकी, हालांकि इसकी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। ILO ने कहा कि ऐसा कोई काम जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बाधित होता हो, उनकी गरिमा के अनुरूप न हो, उनकी मर्यादा के अनुरूप न हो, ऐसे सारे काम बाल श्रम में आते हैं। लेकिन चूंकि सरकारों का अपना काम होता है, कानून का अपना काम होता है, इसलिए इसकी परिभाषाएं अलग अलग देशों में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग संदर्भ में बहुत सारे बदली हुई नजर आएंगे आपको।
1: सर, अब ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि किस उम्र के बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।
2: उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बच्चे किसको कहेंगे, बालक किसको कहेंगे
1: जी।
2: ये परिभाषाएं भी बहुत सारी भ्रांतियों के तहत आपको मिलेंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता 1989 में, जो विश्व का सर्वाधिक ऐतिहासिक समझौता था बच्चों के अधिकारों के लिए, जिसमें कहा गया कि विश्व में कहीं भी बच्चा हो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसको हम बालक मानेंगे, बच्चा मानेंगे
1: जी।
2: लेकिन चूंकि आपने बच्चों की परिभाषा पूछी, हमारी सरकार ने, हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा मानता है
1: जी जी।
2: शादी ब्याह का जो कानून है, बाल विवाह का जो कानून है, 18 साल से कम उम्र के बच्चियों को बच्चा मानता है, और इसी तरह ये जो कानून है बाल श्रम अधिनियम, ये 14 साल से, और दो तरीके से किशोर बोलता है, 14 साल से बड़े 18 साल तक जो बच्चे हैं उसको किशोर बोलते हैं और 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको बालक बोलते हैं, ये है। लेकिन हमारा जो संस्थागत मानना है कि हम किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई हो उसको हम बालक कहते हैं।
1: सर हमारे देश की बात करें तो बाल श्रमिकों की क्या मजबूरी है? सबसे बड़ा कारण आप किस परिस्थिति को मानते हैं कि छोटे बच्चों को इस तरह से बाल श्रमिक बनने पर मजबूर होना पड़ता है?
2: हमारी परिस्थितियाँ बहुत जटिल हैं। आपको बताएं, जब देश आजाद हुआ और संविधान बना, संविधान के अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख था कि बच्चे हमारे काम नहीं करेंगे और स्कूल पे जाएंगे। अब ये परिस्थितियाँ इतनी जटिल है, जटिल मतलब गरीबी है, विषमताएं हैं बहुत तरीके से, और बहुत ऐसी जटिल परिस्थितियां थी जिसके कारण संविधान में इसका प्रावधान होने के बावजूद भी आज देखो तो आज बच्चे अलग अलग तरीके से काम में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से, जो कुछ गरीबी के नाम पे, कुछ बेरोजगारी के नाम पे, कुछ पेरेंट्स के, जिनके पेरेंट्स नहीं रहते उनके नाम पे, कुछ नशे की वजह से। चूंकि ये बाजार है, बाजार में बहुत सारे लोग, आपको देखेंगे बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं बच्चों को शोषण करने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का, उनके साथ हिंसा करने का, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाते हैं, मासूम होते हैं, भोले होते हैं, हम जानते हैं सभी, और बच्चों को कुछ लालच देके काम में लगाया जाता है। तो ये परिस्थितियां बहुत जटिल है, आप सभी जानते हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, ये मूल कारण है जिसके कारण बाल श्रम पैदा होता है।
1: सर सामाजिक संगठनों के द्वारा या सरकार के द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं या कोई योजनाएं हैं जो इनके हित के लिए हो?
2: बहुत सारे काम है, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए एक तो छात्रवृत्ति है, श्रम कल्याण कार्ड है ना, बाल श्रमिकों के लिए अलग अलग स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारी योजनाएं आपको मिलेंगी जो कि काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया, उन योजनाओं की गिरफ्त में इनको लेना, उन योजनाओं के जद में इनको लेना और दिल से काम करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो चीज मैं बताऊं इसका कारण, जो वो है हमारी स्वीकार्यता। हम बच्चों को श्रम करते हुए देखते हुए या देखते हैं तो हमें या आपको या पूरे समाज में कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है, हम एक सामान्य गतिविधि के रूप में उसको ले लेते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है, इसको अगर दूर नहीं हुआ, ये स्वीकार्यता खत्म नहीं हुई, तो हम उसी तरह देखते रहेंगे। हम जानते हैं कि हम सभी सड़कों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, देखते हैं बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो एक आम गतिविधि हो गई है, उसको देखते देखते आदत सी हो गई है, बराबर कोई विरोध मन में या कोई क्षोभ मन में नहीं होता। हम अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, टिफिन देते हैं, स्कूल भेजते हैं, लाल प्यार करते हैं, लेकिन वही दूसरा बच्चा जो हो रहा होता है उसको हम भगा देते हैं या उसको अलग नजर से देखते हैं या अपने बच्चों के साथ होने नहीं देते हैं या उससे बात करना पसंद नहीं करते। ये जो हमारा दोहरा चरित्र है वो बहुत एक बहुत बड़ी चुनौती है।
1: अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हम कहीं बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और बच्चों को काम करते देखते हैं, तो आमजन की बात करें तो यदि हम में से कोई छोटे बच्चों को इस तरीके से बाल श्रमिक के रूप में देखता है तो किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं?
2: अभी देखिए 1098 का नंबर है
1: जी,
2: जो हम चाइल्ड लाइन का नंबर बोलते हैं, इस तरह के नंबर हैं, 100 डायल है, अगर कहीं बच्चे मुश्किल में हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस को भी, एक काम ऐसा है कि जहां पे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो ये संज्ञेय अपराध है, अगर उस तरह की बात है तो डायरेक्ट पुलिस भी उसमें काम कर सकती है, डायरेक्ट पुलिस भी उसमें एक्शन ले सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जिले में चाइल्ड लेबर ऑफिसर होते हैं, लेबर ऑफिसर होते हैं जो कि इन सब चीज़ों की निगरानी करते हैं, और बच्चे जब ये काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनको अगर रेस्क्यू किया गया, अंगीकार किया गया, तो उनका पुनर्स्थापना अच्छी जगह पर हो जाए ताकि वो फिर दोबारा काम में ना आए। ये बड़ी चीज़ होती है, कई रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग रहे हैं, लेकिन बच्चे जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बच्चों को कहीं ले जाया जाता है और कुछ करके फिर परिवारों में ही भेज दिया जाता है। जो मूल उसका कारण है, जिसके कारण वो काम पे आया है, उसको दूर करने के लिए हम प्रयास नहीं कर पाते, ये एक बड़ा कारण है।
1: सर बाल श्रमिकों का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो भी उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं, तो इस स्थिति में स्वयं बच्चा, उसका परिवार कैसे बचे या कोई इसकी शिकायत कैसे करे? और कई बार ये भी होता है कि शिकायत करने वाला स्वयं भी डरता है कि भाई कहीं हम उस चंगुल में ना आ जाए, तो कितना सुरक्षित रख के वो खुद को और शिकायत भी कर सकता है?
2: दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि जब हम शिकायत करते हैं तो इसमें शिकायत करने वाले को इतना इस तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो किसी माफिया या किसी इस तरह के बदमाश के चंगुल में बच्चा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये जो काम करते हैं, ये जो इस तरह की बदमाशियां करते हैं या इस तरह का कारोबार करते हैं, उनको ये बात अच्छी पता है कि ये बच्चे अगर पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे, क्योंकि कानून के तहत उनको छूट मिलती है, उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा 18 साल से कम अगर बच्चा है तो ये उसका उपयोग करके उस कानून का लूप होल निकाल के इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं नशे में, नशे के कारोबार में करते हैं, नशे के सप्लाई में करते हैं, और धीरे धीरे बच्चा भी नशा करने लगता है और जब बच्चा नशा करने लगता है तो अब चाइल्ड लेबर करना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए, तो या तो चोरी करके ले आएगा या कहीं से कुछ कमाएगा करके, तो ये एक बड़ी समस्या है। और इन लोगों से, ये जो गैंग है इस तरह का पूरा, इनके साथ पूरा मेरे ख्याल में कई बार हम लोग शिकायत करते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इनको चिन्हित करके उन बच्चों को वहां से निकालना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, ये बच्चे बुरी तरह से नशे में, और जिस तरह के नशे में है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अब वो नशे वाले बच्चे का कुछ भी इस्तेमाल करो आप, लड़का हो या लड़की हो, उसका यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट है हमारे शोषण करने के लिए। तो समाज के जो ये लोग हैं, जिस तरह के हम जानते हैं समाज में हर तरह के लोग हैं, भला करने वाले भी लोग हैं समाज में, ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है कि इनके साथ लड़ाई लड़ना प्रशासन के लिए भी कठिन है।
1: सर, आने वाले वर्षों में बाल श्रम खत्म करने के लिए क्या क्या समाधान आप देखते हैं?
2: तीन चार चीजें हैं
1: जी,
2: अगर सीधे सीधे हम बात करें तो। एक तो यह है कि ये जो हमारे यहाँ शिक्षा का कानून है
1: जी,
2: इसकी जद में सारे बच्चों को लाया जाए, किसी न किसी, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा हो या सरकारी में पढ़ रहा हो, वो बच्चा स्कूल में होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, परिवारों को जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, जिनके परिवार के बच्चे जा रहे हैं अलग अलग कारणों से, वो कारण बहुत सारे हैं, है ना, वो गरीबी भी हो सकता है, वो एकल परिवार भी है, है ना, परिवार की जिम्मेदारी, हम लोग इसीलिए भी बोल देते हैं कि परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, उन परिवारों को सशक्त करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा
1: जी।
2: तीसरा, एक बच्चे को जो हम वस्तु समझते हैं ना किसी तरीके से, एक किसी तरीके से सामग्री समझते हैं या ऐसी चीज समझते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके कुछ मुनाफा कमा लें और हमारा कुछ नहीं होगा, इस भावना को बदलना पड़ेगा। और जितने कानून है, कोई नया कानून की जरूरत नहीं, जितने कानून है अगर इन्हीं को ढंग से लागू कर दिया जाए और लोगों को एक तरफ से जागरूक किया जाए और कुछ इस तरह की कार्रवाइयां भी हो, जागरूकता का भी काम हो, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
1: सर, जैसे आपने अभी कहा कि परिजनों को भी सशक्त होना पड़ेगा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि बच्चे के परिजनों की काउंसलिंग कितनी जरूरी है और बच्चे का परिवार कितना जिम्मेदार है इन सारी गतिविधियों के लिए?
2: ये काउंसलिंग नाम की जो चीज बोली आपने, ये बहुत ही जरूरी है
1: जी जी।
2: हाँ, ये समझाए, देखो आप दो तरह के लोग हैं, बस्तियों में काम करते हैं, खासतौर से गरीब बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में काम करते हैं, वहाँ एक ही कमाई करने वाला, एक ही ऑटो चलाने वाला, एक ही रिक्शा चलाने वाला बंदा अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है और एक ही इसी तरह का काम उतनी ही आमदनी करने वाला एक बंदा अपने बच्चे को काम पे भेज रहा है और घर का काम करवा रहा है, बाहर का काम करवा रहा है। तो ये बात तो संवेदना की है
1: जी जी।
2: वो संवेदनशील हो गया तो मजदूर भी अपने आप वो दिन भर की मजदूरी करके सबसे ज्यादा खर्च वो बच्चे पे करेगा, उनके कपड़े पे करेगा, उनके पढ़ाई पे करेगा, अगर उसके पास संवेदना है तो, अन्यथा वो बच्चे से भी कमा के बच्चे की कमाई भी लेके पी जाते हैं। ये बहुत जरूरी है जो आपने कहा, इस तरह के काउंसलिंग सेंटर होना, इस तरह के एक्सपर्ट काउंसलर होना और उन तक पहुंचना, उनको उस तरह के समझाइश देना
1: जी,
2: उन तक जाना, उनके माता पिता को बताना कि कई बार हम लोग करते हैं लेकिन चूंकि संस्थाओं का जानते हैं कि संस्थाओं का अपना एक सीमित संसाधन होता है, सीमित हमारे पास ताकत होती है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है।
1: सर, संगठनों के लिए या बड़े स्तर पर क्या क्या चुनौतियां हैं जो बाल श्रमिकों को रोक नहीं पा रही है, जमीनी हकीकत क्या है?
2: दो चीजें हैं इसमें, बताया कि जो एक समन्वय है हमारा सरकार के साथ
1: जी, जी, जी।
2: उसको और मजबूत होना पड़ेगा, हो भी रहा है, ऐसा नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, मैं जब से काम कर रहा हूं तब से चाइल्ड लेबर पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से अगर होता रहेगा तो मेरे ख्याल में अगले 100 साल और लग जाएंगे।
1: सर, बच्चों के अधिकार क्या है, कैसे वे अपने अधिकारों के बारे में जाने और बच्चा खुद को कैसे सुरक्षित करे?
2: बहुत विस्तार से जो हमने बताया आपको, बाल अधिकार जो समझौता हुआ 54 अनुच्छेदों में बच्चों की बात की गई, लेकिन 4 अधिकारों की हम मुख्यतः बात करते हैं, 4 डब्बे में उनको अधिकारों को डालते हैं। पहला कि बच्चों का सर्वाइवल का अधिकार
1: जी जी,
2: जीवन जीने का जिसको अधिकार बोलते हैं, कोई भी बच्चा मारा नहीं जाना चाहिए पेट में
1: जी जी,
2: उसको जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमको आपको
1: जी जी।
2: दूसरा विकास का, तीसरा जिसपे हम बात कर रहे हैं सुरक्षा का
1: जी,
2: बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखो आप बच्चों के साथ कितने दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, सुरक्षा का अधिकार, नशे से सुरक्षा होना चाहिए उसका
1: जी जी।
2: पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई कम से कम एक बच्चा 12वीं तक, हम लोग ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि कोई भी लड़का हो या लड़की कम से कम 12वीं तक पढ़ाई कर ले, उसके बाद उसका स्किल हो, और अंतिम जो होता है सहभागिता। हम बच्चों से पूछते नहीं
1: जी जी,
2: हम बच्चों से बात नहीं करते कि ये बच्चे ये क्या चाहते हैं, हम बच्चा जो काम कर रहा है वो काम करना चाहता है कि पढ़ना चाहता है, ये उसको स्पेस देते नहीं। तो सहभागिता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, राइट टू पार्टिसिपेशन, चाहे वो हमारे घर में भी हो
1: जी जी।
2: घरों में भी बच्चों से कुछ पूछा नहीं जाता उनके बारे में, कौन सा विषय लेगा, कैसा बाल कटाएगा, कैसा कपड़ा पहनेगा, कहाँ जाएगा घूमने, ये जो उसका पूछने की आदत है हमारी, वो लगभग न हमारे साथ हुई और न हम अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। हालांकि स्थितियां बदल रही हैं, बच्चों को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे बिन पूछे हैं, बिना उनको कोई सुनता नहीं। तो राइट टू पार्टिसिपेशन बच्चों को होना बहुत जरूरी है, कैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, कहाँ शादी करना चाहते हैं, कौन विषय पढ़ना चाहते हैं, कैसा बाल रखना चाहते हैं, ये सब छोटी चीजों को बच्चों को पार्टिसिपेट करें, हम सुने उनको, हमारे पास भी वो क्षमता नहीं, हम सुनते नहीं बहुत देर तक उनको, कुछ भी बोलता रहता है उसको हटा देते हैं कि छोटा बच्चा है भगो यहाँ से, या बड़े लोग बात कर रहे हैं यहाँ से हट जाओ, ये कह के हम बच्चों को, जबकि बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे बहुत जानकार है, बच्चे बहुत चतुर है, ऐसा हम जानते हैं। अभी देखिए ना, 15 साल का बच्चा एक वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा काम कर गया, तो बच्चों के साथ क्षमता बहुत है, उनको उस तरह का मौका परिवार में भी, सरकार में भी और संस्थाओं को भी देना चाहिए।
1: अच्छा सर, जब भी हम इस तरीके की परिस्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं या हम उनमें जाना चाहते हैं, तो एक चीज बड़ी सामान्य सी हमें सुनने में आती है कि बच्चा तो काम सीख रहा है, तो काम सीखना और काम कराना ये दोनों अलग अलग हैं, तो सीखने के बाद बच्चों को काम में झोंक दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बिल्कुल बहुत एक जिसको हम शब्दों में बोलते हैं ना
1: जी जी।
2: एक हम बोलते हैं दो शब्द बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, एक वर्किंग चिल्ड्रेन बोलते हैं
1: जी जी।
2: हालांकि अंतर दोनों में कुछ नहीं है। जहाँ पे कानून के अंतर्गत वो कानून के दायरे में आ जाता है, जहाँ पे एक काम कराने वाला और काम करने वाला बच्चा, ये रिश्ता जिसको नियोक्ता और नियोजक बोलते हैं
1: जी जी,
2: ये रिश्ता आ जाता है तो हम उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ पे कचरा बीन रहा है और उसको बोलते हैं वर्किंग चाइल्ड है, तो वर्किंग चाइल्ड क्या है, वो कहीं ना कहीं कचरा ले जाके देता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत दूर ही सही कोई बड़ा होके उसका शोषण करने का प्रयास कर रहा है
1: जी जी।
2: वो हम पहचान नहीं पाते। दूसरा सीखने और करने वाली बात, सीखते सब है, सीखना चाहिए बच्चों को, बच्चों को काम करने से मना ही नहीं है, लेकिन वो सीखने के व्यवज में होना चाहिए, उसकी पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, उसके मनोरंजन का समय नहीं छूटना चाहिए, उसके आराम का समय नहीं छूटना चाहिए, उसके और जो अधिकार है वो उनको मिलते रहना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर ये सब मिला मिले केवल काम ही कर रहा है, घर एक घर का काम कर रहा हूँ लेकिन सुबह से शाम तक आपने काम पे लगा रखा, तो कानून में भी प्रावधान है कि अगर वो बच्चा स्कूल से लौट के आता है और कुछ मदद कर देता है, हेल्प कर देता है तो ठीक है, मेन काम अगर कर रहा है तो दिक्कत है। खाना बनाने का मदद है, घर में जाते हैं लड़के हैं लड़कियां हैं, बच्चे पानी भरना है, खाना बनाना है, दुकान है या कोई छोटा सा काम है जो गैर खतरनाक नहीं है, उसमें जाकर थोड़ी देर मदद कर देता, उसमें कोई बुराई नहीं।
1: ये वास्तविकता में सीखना है,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये सीखना है, नहीं तो अगर मेन काम ही उसको दे दिया आपने कि बेटा तू जा घर पे और शाम को 100 रुपए 200 रुपए लेके आ, कचरा बीन के आ, चोरी करके आ, जो भी है
1: जी जी,
2: वो ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा हमें भी अंतर समझना पड़ेगा कि सीखना क्या होता है और करना क्या होता है।
1: अच्छा सर, आप इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से सक्रिय हैं, तो आपके कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं से बांटना चाहेंगे?
2: बहुत सारे अनुभव है। हम लोग शुरू शुरू में जब हम एक टास्क फोर्स में थे
1: जी,
2: यूपी की बात बता रहा हूँ, भदोही में, तो भदोही में कालीन का काम होता है
1: जी जी,
2: तो वो बच्चे को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और हमें एक जिम्मेदार एक संस्था के साथ जुड़ा था मैं, तो संस्था के साथ में उसको पलामू एक जिला है बिहार में, वहाँ ले गया मैं उसको पहुँचाने के लिए, उसके घर देने के लिए, और वो घर पे ले जाके उसको दे आया। फिर मैं बहुत आश्चर्य रहा कि मुश्किल से 6 महीने बिकते होंगे वो लड़का फिर एक उसमें आता है, और जब फिर मुझे संपर्क किया जाता है वहाँ पे, चूंकि पूरी हिस्ट्री रहती है जिले पे
1: जी जी,
2: तो वो उसका बच्चे का हाथ नहीं था, ये हाथ कट लिया था उसका।
1: अरे,
2: अब जब मैंने उस पर बात किया तो किसी, हमने बताया ना कि जैसे कोई काम करते करते उसका उंगली कुछ ये खराब हो गई, उसके बाद उसका उंगली डॉक्टर को काटना पड़ा
1: जी जी।
2: तो फिर मैं वो लड़के को जब देखा तो मैंने कहा कि पूरी व्यवस्था जो है, फिर मैं बहुत मुझे दुख हुआ कि शायद वो पहली जगह पे होता तो कम से कम ये स्थिति नहीं होती
1: जी।
2: और इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, कई बच्चों को हमने प्लेटफॉर्मों पे बहुत काम किया है, लगभग 1700-1800 बच्चे को जो प्लेटफॉर्म पे बच्चे भाग के आ जाते हैं उनको हम लोग घर पहुंचाने का, उस समय जबकि जे एक्ट नहीं था तो हम लोग उनको रेस्क्यू करते थे, पकड़ते थे, उनका मेडिटेशन करवाते थे, नशा छुड़वाते थे, उनको घर भेजते थे, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती वही आती है कि जब हम उनको छोड़ के आते हैं, परिवारों में हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, वो खुद के माता पिता होते हुए भी, चाचा होते हुए भी, मौसी होते हुए भी, वो लोग बहुत उनका शोषण करते हैं। ऐसे परिवारों में जहाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो गए, उनको एक दूसरी अर्थव्यवस्था, आपको दूसरी व्यवस्था देनी पड़ेगी, जहाँ बच्चा अपनी पढ़ाई कर जारी रख सके, जहाँ अपने को सुरक्षित रह सके 18 साल तक कम से कम, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परिवार परिवार बोल के उसको मरने के लिए उसमें छोड़ नहीं सकते
1: जी जी।
2: ज्यादातर परिवार अच्छे हैं और गरीबी कोई कारण नहीं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं
1: जी जी।
2: तो गरीबी एक कारण नहीं है, वो है संवेदना की बात होती है, अपने बच्चों को देखने की, समझने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत होती है।
1: सर, समाज की जागरूकता कितनी होनी चाहिए, हम सबका क्या दायित्व बनता है इन बच्चों को लेकर के?
2: जब हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर तो इसको हम एक सामाजिक समस्या ही बोलते हैं
1: जी जी,
2: आर्थिक समस्या तो बाद में है, तो ये तो समाज की देखिए क्या है। अभी सरकार बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे काम कर रही है
1: जी जी,
2: चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, बहुत सारे जो सरकार बहुत प्रोएक्टिव काम कर रही है
1: जी जी।
2: लेकिन चूंकि ये सामाजिक समस्या है, समाज को सबसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी समाज के प्रबंधन से चलती है ना,
1: बिल्कुल।
2: तो वो संवेदना होना बहुत जरूरी है। हम अगर छोटी छोटा काम कर दें, हमें एक दो चीजें मिल के हम कहीं टोकना शुरू कर दें, ये बच्चे से आप काम क्यों करा रहे हो, बच्चे से पूछना शुरू कर दें, उसको जो काम करवा रहा है उससे एक बार टोकना, इतना ही करना है, अपने को झगड़ा नहीं करना, इतना ही शुरू कर दें, तो उसको ये लगेगा जो ये काम करवा रहा है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैं कुछ गलत हो सकता है, या मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, या कोई डर पैदा हो सकता है उसके अंदर। यही काम अगर शुरू हो जाए, छोटा छोटा टोकना
1: जी जी,
2: ये क्यों करवा रहे हो, क्यों मार रहे हो बच्चों को, क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हो बच्चों को, बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो, बच्चा नशा क्यों कर रहा है, ये सब छोटे छोटे सवाल जब हमारे संपर्क में आते हैं
1: जी जी।
2: और हम उनको करना उठाना शुरू कर दें, समाज के लोग कुछ नहीं करना आपको जाने, तो इतने से ही बहुत सारी संवेदना आएगी, जो सुन रहा होगा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसी से काम अपना शुरू हो जाएगा।
1: सर अब चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चा खुद कई बार, जैसे बच्चा जब 14-15 साल की उम्र में आता है या उसकी समझ जब विकसित होती है, तो जब उसकी समझ उसको आने लग जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो खुद से कैसे विरोध करे या खुद से कैसे शिकायत करे कि वो उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सके।
2: पहली बात तो बच्चों को भी जागरूक, जैसा मैंने बताया राइट टू पार्टिसिपेशन की बात की,
1: जी जी,
2: तो इसमें सरकार, समाज, परिवार, हम लोग तो काम करेंगे करेंगे। अब इसमें वो समय आ गया जब बच्चे भी अपना काम करेंगे।
1: जी जी।
2: तो बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है।
1: जी।
2: ये सामने वाला हमें जो कुछ मदद कर रहा है या कुछ पैसे दे रहा है या कोई प्रलोभन दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है, ये क्या करना चाह रहा है।
1: जी जी।
2: ये इसके बारे में स्कूलों में बकायदा, हम सभी जानते हैं कि सेफ टच अनसेफ टच बहुत सारे सेशन चल रहे हैं बच्चे, लेकिन वो भी अभी उन बच्चों तक पहुंचना बहुत, जो कि बस्तियों में रहते हैं, जो कि ज्यादा जोखिम में हैं, जो छोटे घरों में रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उन बच्चों तक पहुंचना और उनको ये बताना कि बेटा ये काम आपके साथ होता है तो आपको संभल जाना चाहिए, या अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो मम्मी पापा को पहले बताना चाहिए, ये हेल्पलाइन नंबर है इस पे आपको फोन करना चाहिए, या उसका विरोध करना चाहिए। कई बार बच्चे नासमझ होते हैं, छोटी सी लालच में उनको कुछ भी गलत सही कराते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, दोस्तों को बता देंगे, स्कूल में बता देंगे। इसके कारण बच्चा, और हम सभी जानते हैं कि ये बच्चे हमारे जो होते हैं
1: डर भी जाते
2: डर जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, कभी कभी कभी उनको शर्म आती है उस चीज को बताने में कि हम किसको इस तरह से बताएं कि फलाने ने ऐसा किया। तो ये जेंडर वो है, इसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपसे बताओ वो दोनों के साथ ये है, उन बच्चों को ही समझाना पड़ेगा, इस तरह के अलग सत्र लेने पड़ेंगे स्कूलों में कम से कम।
1: जी जी।
2: जहाँ भी स्कूल में है, आंगनबाड़ी में है, वहाँ पे इस तरह के सत्र बच्चों को खुद बताएं कि बेटा जो इस तरह की परिस्थिति आए, ऐसा कोई तुमको करे, ऐसा कोई तुमको छुए, ऐसा कोई तुमसे बोले, तो तुम्हें ये कदम उठाना है। बच्चे जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा प्रभावी तरीके से इस बुराई को हम दूर कर पाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चे भविष्य की नींव है, देश की रीढ़ है, उनकी देखभाल, उनके प्रति प्यार और उनकी सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बच्चे मिट्टी का वो दिया है जो भविष्य की रोशनी है, उनकी प्रति भावनात्मक जिम्मेदारी भी हमारी ही है। बच्चों को जन्म के साथ ही उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना, उनकी बात सुनना, उन्हें समझना परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति उन्हें समझाना, उन्हें सतर्क करना और एक्शन लेना सिखाना, फिर बाद में हमेशा उनके साथ खड़े रहना, ये बच्चों को मजबूत बनाता है। श्रोताओं, बच्चे हमारा ही सहारा है, हमारे आने वाले कल का, इसलिए उनका ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ रहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे हमारे अतिथि श्री संजय सिंह जी, जो बचपन संस्था से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा की, हमारे श्रोताओं को जागरूकता की बहुत सारी बातें बताई और बच्चों को भी आपने एक अच्छा संदेश दिया कि वे अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति आवाज जरूर उठाएं।
2: हम जानते हैं, हम चाहते हैं, हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमारा देश मुक्त हो, पूरा मध्य प्रदेश हमारा बाल श्रम मुक्त हो, देश हमारा बाल श्रम मुक्त हो, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार, हमारे सेगमेंट छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इस सेगमेंट में अक्सर हम आपसे छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं जो बहुत बड़े फायदे हमें दे जाती हैं। जी हाँ, छोटी सी बात जिसके परिणाम हैं बहुत बड़े। अच्छा ये बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सी बातें आप भूल जाते हैं? समय पर कोई चीज याद नहीं आती, या कोई सामान कहाँ रखा, अभी तो हाथ में था, जाने कहाँ रख छोड़ा, ऐसा होता है? अक्सर होता है ना कि चाबियां अभी तो हाथ में थी, जाने कहाँ रख दी, और फिर पूरे घर में एक बवाल, एक तहलका कि भाई गई कहाँ चाबी, और काम बिगड़ जाता है। या यूं ही चश्मा उतारा और जाने कहाँ रख दिया, और अब जब जरूरत हुई तो फिर वो मिलता ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो हमारा आज का ये सेगमेंट छोटी सी बात आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से आपकी याददाश्त पर बहुत सकारात्मक असर होता है। हम सबको तो पहले से ही पता है कि संगीत सुनने से सेहत से जुड़े हुए कई अद्भुत लाभ होते हैं। लेकिन अब जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज में प्रकाशित हुए नए अध्ययन बताते हैं कि संगीत सुनने से याददाश्त मजबूत होती है, ध्यान और संगीत मूड, नींद और जीवन के स्तर में सुधार लाता है। ध्यान और मेमोरी में सुधार से संबंधित शोधों से पता लगता है कि संगीत भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया में किए गए एक अध्ययन में छात्रों को 2 सप्ताह के लिए माइंडफुलनेस क्लास या न्यूट्रिशन क्लास लेने के लिए कहा गया। जिन छात्रों ने माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया उनकी मेमोरी में सुधार हुआ। एक और शोध किया गया। इस शोध के मुताबिक संगीत सुनने से दिमाग क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगता है। जी हाँ, इसलिए संगीत को चमत्कारिक कहा जाता है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में 59 वर्ष के व्यक्ति

0: में बहुत इजाफा हुआ है। हालांकि अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा संगीत आपके दिमाग के लिए अच्छा है, पर आपको अपनी पसंदीदा ट्यून जरूर सुननी चाहिए। वैसे कहते हैं कि बांसुरी पर बजाई कोई धुन आपके दिमाग पर चमत्कारिक असर रखती है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी बात। हमें उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ होगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, आप भी चीजों को रख कर भूल जाते हैं, या कोई बात बिल्कुल समय पर याद नहीं आती, या किसी व्यक्ति से मिले और अचानक लगा कि इससे मुलाकात तो हुई थी, नाम भी पता था, लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त आपको याद नहीं आता है कि कहाँ मुलाकात हुई थी और इनका नाम क्या है, तो अगर ऐसी बात आपके साथ हो रही है, ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है, तो संगीत सुनना शुरू कीजिए। संगीत सुनिए, आपको याद रहने लगेगा। छोटी सी बात।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। आइए आपको कुछ देशभक्ति गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं श्री कृष्ण सरल की इस शब्द रचना से। संगीत निर्देशन उमेश वीनस तर्कसवार का।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। हमारी इस प्रसारण सभा में अभी बहुत कुछ खास है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए। जी हाँ, रेडियो आजाद हिंद।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, राष्ट्र मात्र भूखंड नहीं, ये हमारी अनुभूति है, हमारी चेतना, हमारा अभिमान है। तभी तो हर भारतवासी गर्व से कहता है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही है हमारा अगला कार्यक्रम। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: बाबू चितरंजन दास का जन्म 1870 में बंगाल के विक्रमपुर में हुआ था। अपनी निर्भीकता के कारण वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने ICS की परीक्षा दी तो उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया। वे निराश नहीं हुए और बैरिस्टर बन गए। उन्होंने अनेक देशभक्तों के मुकदमे लड़े, जिनमें से एक था अलीपुर बम कांड। अपनी वकालत की क्षमता से उन्होंने इस मामले में फंसे सभी अभियुक्तों को निर्दोष साबित कर दिया। थोड़े ही समय में वे देश के सुप्रसिद्ध वकील कहलाने लगे। धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में बढ़ी और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। 1922 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तो 1923 में अखिल भारतीय मजदूर यूनियन कांग्रेस की। 1924 में वे कोलकाता के मेयर बने। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाकर देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया। हमेशा दूसरों के सुखों और कल्याण की चिंता करने वाले देशबंधु का 16 जून 1925 को निधन हो गया। उनकी शव यात्रा में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिनमें सबसे आगे थे महात्मा गांधी। बापू ने कहा था, भारतवासी दास बाबू को कभी नहीं भूलेंगे। बापू ने शायद सच ही कहा था।
3: राजू भैया, ओ राजू भैया, राजू भैया, अरे ये तो सुन ही नहीं रहे। राजू भैया, ओ राजू भैया,
4: अरे क्या है यार, राजू भैया, राजू भैया,
3: अरे अरे अरे भैया, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं आपने?
4: आप बोलना, सुन रहा हूँ।
3: अरे वो रेडियो लगा दो ना भैया।
4: हैं, क्या रेडियो?
3: अरे भाई वो ड्रामा, वो आजादी की लड़ाई वाला ड्रामा।
4: हाँ लगा रहा हूँ यार।
5: देशबंधु चितरंजन दास बंगाल की धरती के उन सहस्त्रों सपूतों में एक थे, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। चितरंजन बचपन से बहुत होनहार और उदार थे। समाज सेवा का गुण उनमें बाल्यपन से ही नजर आने लगा था। चितरंजन का जन्म सन 1870 ईस्वी की 5 नवंबर को कलकत्ता के एक ब्रह्म समाजी परिवार में हुआ था। पिता भुवन मोहनदास और माता निस्तारिणी देवी दोनों ही सुशिक्षित और अत्यंत कर्मठ थे।
6: के होच्चे? कौन है, अंदर आइए।
7: प्रणाम, भुवन बाबू है?
6: ना, वो तो बाहर गए हैं। कहिए।
7: बस ये मेरा लेख है, भुवन बाबू ने ब्रह्मा पब्लिक ओपिनियन पत्रिका के लिए मांगा था।
6: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोशुन आपने, बोशुन।
7: भुवन बाबू जब से पत्रिका के संपादक हुए हैं, पत्रिका और अच्छी हो गई है।
6: जी
8: माँ, माँ खाना दो ना, मुझे भूख लगी है।
6: क्यों, तुझको पैसे दिए थे ना, वो क्या हुए?
8: वो उधर मेरी पाठशाला के पास कितने बच्चे भूखे थे, मैंने खाना खरीद के उनको खिला दिया। माँ अब शाम हो गई है, मुझे भूख लगी है, खाना दो।
7: आपका बेटा बहुत होनहार है, इसकी आंखों में तो किसी महापुरुष का तेज है, ये तो बहुत महान कार्य करेगा बड़े होकर।
5: चितरंजन दास 20 वर्ष की आयु तक कलकत्ते में ही पले बढ़े और बीए की परीक्षा पास की। विद्यार्थी जीवन में वो लंबे समय तक विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे। बीए पूरा होते ही उन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया।
9: चितरंजन भाई, पहली बार कोई भारतीय पार्लियामेंट के चुनाव में खड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या दादा भाई नरोजी जीत पाएंगे?
10: जीत पाएंगे या नहीं, ये तो सोचना भी नहीं है और सोचने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, दादा भाई की विजय। वो जो नए 6 युवा कहाँ हैं हमारी मदद के लिए, शाम को उनके साथ मीटिंग रखी है मैंने, आप भवन पहुंच जाइएगा समय पर।
9: अवश्य रंजन बाबू, आप चिंता ना करें।
5: चितरंजन दास की दौड़ धूप रंग लाई और दादा भाई विजयी हुए। इस जीत की जितनी खुशी चितरंजन दास को थी उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। चितरंजन अब और निर्भीकता से अंग्रेजों की नीतियों और प्रचारों का विरोध करने लगे।
10: ये अंग्रेज जो इस बात का बार बार प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर तलवार के बल पर विजय प्राप्त की है और वह तलवार के बल पर ही भारत को अपने अधिकार में रखेंगे, ये सरासर गलत बात है। अंग्रेजों ने तलवार के बल पर नहीं अपनी धूर्तता और चालाकी के बल पर ही भारत पर विजय प्राप्त की है। वह भले ही चालाकी से भारत पर शासन कर रहे हैं परंतु उनकी धूर्तता सदा नहीं चल सकेगी। मुझे ICS की परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया पर मैं यहां हारने नहीं आया। हमें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है।
5: चितरंजन दास ने तुरंत ही बैरिस्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी और बड़े परिश्रम से उत्तीर्ण हुए। वे 1893 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टरी करने लगे।
0: चितरंजन बाबू, आपका जीवन में सारे कठिन पथ ही हैं, क्यों?
3: हाँ दादा,
0: पर मुझे विश्वास है कि आप तब भी बहुत आगे जाएंगे। अच्छा हाँ, विवाह की तैयारी कैसी चल रही है आपकी?
3: चितरंजन बाबू असम रियासत से खोज लाए हैं,
0: वो भी दीवान की पुत्री है, ऐसी वैसी नहीं, बहुत पढ़ी लिखी है।
3: बाबू
0: जरा नाम तो बता दो हमारी बौद्धी का।
3: वासंती देवी नाम है उनका। आप खुश? चलो थोड़ा काम भी कर लो।
6: ए लीजिए पानी। किन विचारों में डूबे हैं? इतना परेशान क्यों है आप?
10: तुम्हें तो जरूर बताऊंगा, आखिरकार तुम्हारा हक है जानने का।
6: बस ज्यादा सोच विचार मत करिए और कह दीजिए आखिर क्या परेशानी है।
10: वासंती, तुम तो जानती हो मेरे पिता हमेशा से उदारवादी रहे हैं। बाबा के एक मित्र पर 30,000 रुपए का ऋण था। मित्र की मदद करने के लिए बाबा उनके जामीन बन गए, किंतु समय के पहले ही मित्र ने उनको धोखा दे दिया। अब वो ऋण बाबा को देना पड़ेगा, पर बाबा के पास तो है ही नहीं।
6: नहीं नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अब बाबा इतना सारा रुपया कहाँ से देंगे आखिर? ये दायित्व तो हमको निभाना होगा।
10: मैं तो हमेशा से जानता था वासंती कि तुम मेरा साथ दोगी, किंतु इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, वो ही मेरी चिंता है।
6: ये स्थिति में तो एक ही रास्ता है, आप बाबा का ऋण अपना ऊपर ले लीजिए और फिर हम घोषित कर देंगे कि हमारा दिवाला निकल गया है।
10: वाह वासंती, तुमने साबित कर दिया कि औरत यदि सुशिक्षित हो तो सभी का कितना भला हो सकता है।
6: इसके बाद आप कठिन परिश्रम करिए और धीरे धीरे बाबा का सारा ऋण चुका दीजिए।
5: चितरंजन दास बेहद परिश्रमी और लगन के धनी थे। इसी बीच 1908 में उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुकदमा आया। यह मुकदमा मणिकतल्ला स्ट्रीट के बम के कारखाने का मुकदमा था, जिसमें अरविंद घोष और दूसरे कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी युवक अभियुक्त थे।
11: यस मिस्टर चितरंजन दास, यू मे कंटिन्यू।
10: मैंने अपने देश की स्वतंत्रता के हित में जो पाठ पढ़ाया है उसका आशय यदि यह समझ लिया गया है कि यह न्याय के विरुद्ध है तो हां मैं अपराधी हूं। न्याय अगर यही कहता है तो मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे इसकी सजा बिल्कुल मिले, लेकिन मुझे ऐसे किसी अपराध की सजा स्वीकार्य नहीं है जो अपराध मैंने किया ही नहीं। मेरा मानस तो यही कहता है कि ऐसा कोई भी काम जिसका मेरा रोम रोम विरोध करता हो वो कोई अपराध नहीं। स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित करने का प्रयास करना यदि मेरी गलती है तो मैं बेशक गलत हूं, मैं इस बात पर तर्क वितर्क नहीं करूंगा। मैंने अपने भविष्य की सभी संभावनाओं को इसी कारण अनदेखा कर दिया। यही कारण है कि मैं कलकत्ता आया ताकि यहां रहकर इस दिशा में परिश्रम कर सकूं। केवल यही एक विचार मेरे मन मस्तिष्क में दिन रात कौंधता है और यह मेरा स्वप्न है। यदि ऐसा करना मेरा अपराध सिद्ध होता है तो कृपया यह अपराध सिद्ध करने के लिए कोई भी गवाह को कटघरे तक लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित हूं। पहना दीजिए मुझे बेड़ियां और डाल दीजिए मुझे जेल में, पर मैं अपने लक्ष्य और कथन से अडिग नहीं होऊंगा।
11: मिस्टर दास, यू मे नाउ प्रोसीड विथ योर स्टेटमेंट इन डिफेंस ऑफ अरविंदो घोष।
10: थैंक यू जज साहब। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि अरविंद घोष जैसा पुरुष जब ऐसी अदालत के सामने खड़ा होता है तो वह इस अदालत ही नहीं वरन इतिहास के उच्च न्यायालय के सामने खड़ा होता है, क्योंकि इस पूरे विवाद के थमने के बाद जब लंबी खामोशी पसरी होगी, इस पूरे विरोध के उथल पुथल के शांत होने के बहुत बहुत बाद, यहां तक कि जब वो सुधार चुके होंगे, जा चुके होंगे इस दुनिया से दूर, उसके भी बहुत बहुत बाद, पर उसे याद किया जाएगा, उसे याद किया जाएगा एक महान देशभक्त कवि के रूप में, उसे जाना जाएगा मानवता और देश प्रेम के पैगंबर के रूप में। वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके कहे शब्द सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि सात समंदर पार तक की दुनिया में गूंज उठेंगे।
11: I announce the judgment in favor of the accused and congratulate Mr. Sri Ardas for his job. Reader, please read this in Hindi.
0: जज साहब ने फैसले के बाद अपनी किताब में जो स्टेटमेंट लिखा है वो इस प्रकार है। मैं यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि चित्तरंजन दास जी की बुद्धिमत्ता के ही कारण अभियुक्त अपराध से मुक्त हो सके हैं।
5: सन 1914 में दास बाबू ने पहला दीवानी मुकदमा लिया जो डुमराव राज्य का था और बड़ा पेचीदा था, परंतु वो सफल हुए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। 1917 में कलकत्ते में बंगाल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, यहीं से चित्तरंजन का कांग्रेस से संबंध स्थापित हो गया और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। इस सम्मेलन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया, उनके प्रभावशाली भाषण ने सबको मोह लिया।
10: हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम एक संपूर्ण राष्ट्र में रह रहे हैं और पिछले कई वर्षों से रहते आए हैं। हम यह भी नहीं भूल सकते कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्य निरंतर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। सिर्फ विभिन्न राज्यों की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की नई लहर बह रही है। यह बेहद सुखद है कि इस राष्ट्रीयता और राष्ट्र के हित में ही हम सभी का हित, महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थपरक आशाएं सभी कुछ समाहित हैं।

0: 18 मार्च 1918 को राममूर्ति पवेलियन में अंग्रेजों के खिलाफ एक मीटिंग थी, जिसमें कुछ अंग्रेज भी उपस्थित थे। इसमें सीआर दास ने जो भाषण दिया, उससे उनकी लोकप्रियता ने बेहद जोर पकड़ लिया। ये भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया था ताकि अंग्रेजों तक बात स्पष्ट पहुंच सके। जेंटलमैन, व्हेन आई कंसीडर द ऑब्जेक्शंस पुट फॉरवर्ड टू द ग्रांट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आई कैन हार्डली की।
1: भाइयों, मैं जब भी हमारी स्वराज की मांग के खिलाफ अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई विरोधात्मक दलीलों पर नजर डालता हूं तो मेरा धैर्य खोने लगता है। सुनिए वो क्या कहते हैं। उनके हिसाब से हम अपनी खुद की सरकार बनाने के लायक शिक्षित नहीं हैं। मैं पूछता हूं, ये किसकी गलती है आखिर? पिछले 150 सालों से वो हम पे शासन कर रहे हैं और इतने लंबे समय में भी इस देश की जनता को इतना भी शिक्षित नहीं कर पाए कि हम अपने बल पर खड़े हो सके।
0: 1921 गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो चितरंजन दास भी वकालत छोड़ के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे उसी समय से खद्दर पहनने लगे थे और सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे थे।
1: स्वराज का अर्थ है कि हम सब किसी बाहर वाले पे नहीं बल्कि अपने ही राष्ट्र में एक दूसरे पर निर्भर हो, स्वावलंबी होते हुए आत्मनिर्भर होकर रहे। हम सभी आज किसी के गुलाम हैं। हमारी आर्थिक गुलामी हमारी राजनीतिक गुलामी से कहीं ज्यादा नुकसानदायक है। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों के लिए हर साल 60 करोड़ रुपया खर्च होता है और वहीं पर जब इसी लागत का कपड़ा भारत से बाहर जाता है तो वह निशुल्क होता है। यदि किसी भी परिवार का एक सदस्य भी रोजाना चरखे पर 2 घंटा सूत काटेगा तो वर्ष के अंत तक अपने परिवार की सभी जरूरतें जुटाने में समर्थ होगा। इसीलिए हमारा नारा है, विदेशी छोड़ो स्वदेशी पहनो।

0: দাদা পুলিশ
1: কিচ্ছু হবে না দাদা বসুন আপনি
2: চিত্তরঞ্জন দাস আপকে নাম ওয়ারেন্ট হ্যায়
1: কিস বাত কা
2: সরকার বিরোধী গতিবিধিয়োঁ মে হিসসা লেনা ওর আম সভাওঁ মে দেশ কি জনতা কো সরকার কে খিলাফ ভড়কানে কা আরোপ হ্যায় আপ পর
1: চলো ভাই
3: इधर अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी जोरों पर थी और चित्तरंजन दास को ही इसका अध्यक्ष चुना गया था।
4: आ तो गजब थई गयो, चित्तरंजन बाबू को गिरफ्तार कर लिया है।
5: इतना परेशान मत हो भाई, ये तो होना ही था। कितनी सजा सुनाई गई है?
4: 6 महीने।
5: हाँ, इसका मतलब है कि दास बाबू अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे।
4: पर बापू, ये डाक में उनका संदेश आया है कुछ।
5: अच्छा, देखूं तो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी और परिश्रमी होना। जरा पढ़ के सुनाओ, दास बाबू ने अध्यक्षता का कर्तव्य निभाया है और अपना संदेश भेजा है जो सम्मेलन में पढ़ा जा सके, उनकी गैर हाजिरी में भी।
4: लाइए, हम अपनी स्वतंत्रता की बात पुरजोर तरीके से करेंगे, क्योंकि हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सभी में अपनी वैयक्तिकता को संवारने और अपनी नियति को निर्धारित करने का सामर्थ्य है। इसका कारण यही है कि हम पश्चिमी सभ्यता से शिक्षित होने योग्य सभी बातों और पाश्चात्य विचारधाराओं से निर्मित किसी भी संस्थानों से ना ही विचलित हुए हैं और ना ही अपने को कमतर समझते हैं। वंदे मातरम।
3: असहयोग आंदोलन कुछ दिनों चलकर ही बंद हो गया, जिससे चारों ओर निराशा उत्पन्न हो गई। निराशा दूर करने के उद्देश्य से चित्तरंजन दास ने गया की कांग्रेस में काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव उपस्थित किया, पर वे असफल रहे। गया कांग्रेस के पश्चात ही चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। 1924 ईस्वी में कांग्रेस ने काउंसिल प्रवेश के औचित्य को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी ने काउंसिलों के चुनाव में भाग लिया। बंगाल से चित्तरंजन दास विजयी हुए।
6: चित्तरंजन बाबू विजयी हुए, बधाई हो दादा, बधाई हो।
7: मध्य भारत में भी स्वराज ने बड़ी जीत हासिल की है।
8: कीगो सुनचो, आपका लिए गवर्नर के पास से पत्र आया है।
7: मुझे मालूम था ऐसा हो सकता है।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: अरे वही, गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने मुझे सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। दादा, मेरा जवाब भेज दो गवर्नर को।
9: हैं, किया जवाब लिखूं बाबू?
7: लिखो। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं उनका आमंत्रण। हम सरकार बनाने के लिए काउंसिल में नहीं आए हैं, हम आए हैं अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए। दादा।
9: हाँ बाबू।
7: अब हमारा उद्देश्य कॉर्पोरेशन चुनाव है।

0: चितरंजन दास कॉरपोरेशन के मेयर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। कुछ समय बाद ही कलकत्ता में ट्रेड यूनियन मजदूर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके भी अध्यक्ष दास बाबू ही थे। 1925 ईस्वी के प्रारंभ में सिराजगंज में स्वराज पार्टी का सम्मेलन हुआ।
1: ये ठीक नहीं है, साहब के ऊपर हत्या का आरोप है।
2: हाँ भाई, गोपीनाथ साहा के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ, आखिर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इसके पक्ष में नहीं है, फिर हम क्या चीज है।
3: मैं जानता हूँ कि क्रांतिकारियों की हिंसा को हम उचित नहीं मानते, किंतु हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि क्रांतिकारी किसी की हत्या करके कोई अपराध करता है, क्योंकि हत्या के मूल में उसका कोई अपना स्वार्थ ना होकर देश हित होता है।
0: बचपन से ही उदारवादी रहे दास बाबू ने सन 1925 ईस्वी में ही अपनी सारी संपत्ति दान करके एक ट्रस्ट बना दिया था। वो ट्रस्ट आज भी चितरंजन सेवा सदन के नाम से काम करता है, जिसके अस्पताल में आज लाखों रोगियों का मुफ्त इलाज होता है। 1925 ईस्वी की 16 जून को दार्जिलिंग में चितरंजन दास का स्वर्गवास हो गया। वे निमोनिया से पीड़ित थे। उनके शिष्य कहे जाने वाले महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कुछ ऐसा कहा।
4: अल सुबह 1921 वो एक पूर्ण रूप से समर्पित राजनीतिज्ञ ही नहीं, सामाजिक अधिकारों से ओतप्रोत एक आत्मा की तरह विद्यमान थे, जैसे इन तमाम बातों के लिए एक नई आत्मा ने जन्म लिया। जीवन की उस संपूर्णता से प्रेरित हो उन्होंने उस राजनीतिक संघर्ष के घमासान में छलांग लगा दी, जो मानवता व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की चेतना लिए हुए थी। राष्ट्र के प्रति उनके त्याग और समर्पण भाव से उन्हें देशवासियों का असीम स्नेह और आदर प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्हें लोग देश बंधु नाम से भी जानने लगे, अर्थात जो देश का सच्चा दोस्त हो।
0: वहीं सरोजनी नायडू ने भी अपनी भावना व्यक्त की।
5: देश बंधु दास अपने जीवन की क्रियाशीलता में एक सम्राट का सा आवेग रखते थे। वे त्याग, समर्पण और सहृदयता के अपार वैभव के धनी थे। राष्ट्र की प्रतिमूर्ति बन उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सेवा की। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक ओजस्वी व्यक्तित्व की तरह याद किए जाएंगे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ऐसे ऐतिहासिक पन्नों में जिसमें हमारी आध्यात्मिक धरोहर का वैभव और उसकी काव्यात्मक सुंदरता ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बयान करेगी।
0: देश बंधु चितरंजन दास की मृत्यु से सारे देश में शोक का सागर उमड़ पड़ा। कलकत्ते में लगभग 3 लाख नरनारी उनकी शव

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा, कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज हम बात करेंगे काउंसलिंग पर। क्या है काउंसलिंग, क्यों काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, किन लोगों को काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, मदद लेना चाहिए काउंसलर की, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन्हें करना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जी। नेहा जी 104 में भी काउंसलर रही हैं, प्राइवेट काउंसलिंग भी करती हैं और एक लंबे समय से स्पेशल जुड़ी हुई है। इस तमाम जानकारी और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेहा शर्मा। आपसे हम पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में कि क्या है काउंसलिंग और आप इस पेशे में कैसे आई।
3: काउंसलिंग है, आज के समय में लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, और धैर्य के साथ सुनना ही काउंसलिंग है। दूसरा, लोग जज करना चाहते हैं कि अपनी बात किसी तक नहीं रख पाते हैं क्योंकि लोग उन्हें जज करते हैं। वो सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, डरते हैं अपनी बात रखने में। तो कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी मैं। मुसीबत में सहारा देने वाला कांधा और हर बात को धैर्य से सुनने वाला कान, वही काउंसलर होता है।
2: आप इस पेशे में कैसे आई।
3: मुझे सेवा चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। और लोग है ना, शरीर की परेशानियों को तो समझते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, कैंसर है, टीबी है, लेकिन ब्रेन की समस्या कोई नहीं समझ पाता है। भावनाओं की समस्याओं को नहीं समझ पाता है, गुस्सा, टेंशन, नींद नहीं आना और अकेलापन, उसको दूर करने के लिए मैंने इस पेशे में आई और इन परेशानियों को समझना चाहा कि ये समस्याएं क्यों है, किस कारण है। क्योंकि बाहर की समस्या तो दिखती है आपको, शरीर की, लेकिन जो मन के अंदर समस्या है, जो ब्रेन के अंदर समस्या है, वो नहीं कोई समझ पाता है। तो उन परेशानियों को मैंने कुछ अंदर से फील किया और उसके बारे में मैं समस्या का मैं कैसे समाधान कर पाऊँ, लोगों को कैसे हैप्पीनेस दे पाऊँ, इस समस्या को लोगों को कैसे दूर निकाल पाऊँ, तो इस पेशे में मैं आई।
2: एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपको लगता है कि काउंसलिंग, जैसे आपने शुरू में अपनी बात कही थी, आपने कहा था कि सहारा देने वाला, समझने वाला या सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो काउंसलिंग का सबसे प्रमुख अंग आपने बताया, और वही शायद सबसे बड़ा काम एक काउंसलर करता है, मैं ठीक कह रहा हूँ।
3: जी जी।
2: तो काउंसलर, क्या आप माना जाए कि ये जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें काउंसलर की आवश्यकता या काउंसलिंग की जरूरत लोगों को ज्यादा पड़ रही है।
3: अब 90% लोगों को काउंसलर की जरूरत है, क्योंकि आजकल क्या, एक तो तुरंत चाहिए, इमीडिएट, धैर्य नहीं है, है ना, और अपेक्षाएं बहुत हैं, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। आज जो नई जनरेशन है, पहले का नहीं, जो न्यू जनरेशन है, जो विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत देश में है, हमारे देश में सबसे, लेकिन युवा को मेहनत नहीं करना है, धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, उसको इमीडिएट सब कुछ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़े बंगले चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, लेकिन ये नहीं मालूम कि बड़ी चीजें कैसे आएंगी, है ना। उसके मन में संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, बस तुरंत डिप्रेस हो जाना, मोबाइल का एडिक्शन, तो इन सारी चीजों को लेकर उसको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है।
2: क्या सिर्फ युवाओं में ही काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी उम्र का व्यक्ति या काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और आपसे संपर्क करते हैं लोग।
3: सभी उम्र के लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हर उम्र का एक अलग अलग फेस आता है, जैसे कि युवा है उनका अलग है, माता पिता का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, शादी नहीं हुई है उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिनकी शादी हो चुकी है उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत है, सास ससुर बन गए हैं तो उनको अलग काउंसलिंग की जरूरत है, हर उस स्टेज में अलग अलग काउंसलिंग की जरूरत होती है।
2: तो सामान्यतः जैसे आपने अपने परिचय में बताया भी था कि आप 104 जो एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आपने कई लंबे समय तक आप अपनी सेवाएं दी आपने, तो वहाँ सामान्यतः किस तरह के लोगों के कॉल आते थे आपके पास।
3: हर तरह के कॉल आते थे, मानसिक समस्याओं को लेकर आते थे, शारीरिक समस्याओं को लेकर आते थे, सामाजिक समस्याओं को लेकर आते थे, भावनात्मक समस्याओं को लेकर आते थे, कैरियर की काउंसलिंग होती थी, जितनी भी काउंसलिंग होती थी सारी काउंसलिंग के वहाँ पे कॉल आते थे, मतलब जितनी भी सारी काउंसलिंग।
2: नंबर बताया, ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, तो इसमें क्या कोई सभी लोग कॉल कर सकते हैं और ये क्या निशुल्क है।
3: जी जी जी, इसमें सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश के लोग कॉल कर सकते हैं और ये निशुल्क नंबर है।
2: एक समस्या, मतलब जैसे लोग अपनी जब व्यक्तिगत कोई समस्या बताते हैं तो लोगों के अंदर एक बड़ी वो एक झिझक भी होती है, उन्हें डर भी होता है कि वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो जो आपको समस्या बताते हैं वहाँ पे काउंसलर को, उसपे कितनी गोपनीयता कितनी रखी जाती है?
3: 100% गोपनीयता होती है काउंसलर का। सबसे पहले आपसे मैंने यही कहा ना कि काउंसलिंग की सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैंने मुसीबत में सहारा देने वाला कांधा और हर बात को धैर्य से सुनने वाला। तो मुसीबत मतलब कि लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी बात को गोपनीय रखा जाएगा या नहीं। तो 100% काउंसलर का सबसे बड़ा ये कि विश्वास, विश्वसनीयता, धैर्य, ये उसकी सबसे बड़ी मतलब एक शक्ति है। तभी वो व्यक्ति वो आपको सारी बातें बताएगा। एक दूसरा उसमें जज नहीं करेंगे, उसमें जजनेस नहीं होती, हम जज नहीं करते, कोई भी अपनी बात तो कह सकते हैं। तो 100% गोपनीयता रखी जाती है।
2: गोपनीयता रखी जाती है, उसका कोई चार्ज भी नहीं है। और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसको भी लगता है कि वो किसी भी विषय पे बात करना है, किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, किसी कोई भी समस्या उसे लगती है, तो वो बिना झिझक 104 नंबर डायल करके काउंसलर से बात कर सकता है। जैसे आपके कुछ एग्जांपल दें, आप किसी भी युवा का बिना नाम जाने कि किस तरह के सवाल वो आपसे करते थे और फिर उसके लिए क्या रास्ता आप लोग सुझाते हैं उन्हें?
3: आत्महत्या से संबंधित आते थे हमारे पास कि आपको सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, हमें सुसाइड करना है। सुसाइड के बाद ब्रेकअप के आते थे कि ब्रेकअप हो चुका है। नशे से संबंधित आते थे, नशे की लत है। डिप्रेशन से संबंधित आते थे, डिप्रेस है। अकेलेपन से संबंधित आते थे, अकेलेपन से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता था। ओसीडी से संबंधित कॉल आते थे कि जिसमें अत्यधिक सफाई की बीमारी है। कैरियर से संबंधित कॉल आते थे, कैरियर बनाना चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार फेलियर हो रहा है, उससे संबंधित कॉल आते थे।
2: कोई भी जो विषय आपको ऐसा याद आता हो एक या दो लोगों का कि उन्होंने आपको ये समस्या बताई और फिर आपने उसका निदान बताया, हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम सुनना चाहेंगे आप।
3: एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का था, किशोर अवस्था का बच्चा था, जो 14 से 15 साल की एज का होगा। उससे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई और उसको ये कहा गया कि तुमको हम पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा अगर तुमने ये बात नहीं बताई या कुछ ऐसा। तो कहीं से उसने ये नंबर पढ़ा और उसको ये कॉल करना था, तो उसने मुझे कॉल किया कि 104 का मेरे को नंबर मिला है और मैं आपसे साथ में बात करना चाहता हूँ। उसने बोला कि मुझे अगर ऐसा नहीं होगा या मैंने कुछ इस तरह का उसके व्यक्तिगत कुछ अव्यूज शब्द यूज किए या गलत कहा तो उसके कारण उसको पुलिस को बता दिया जाएगा और अगर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो फिर मैंने उसे समझाया कि नहीं, सुसाइड क्यों करना है। फिर उसकी काउंसलिंग की मैंने और दूसरे दिन उसको मुझे फिर कॉल आया कि मैडम अगर आप मेरी सहायता नहीं करती तो मैं सुसाइड कर लेता।
2: मतलब बड़ा कह सकते हैं, बड़ा क्षणिक होता होगा इस तरह का संभवता कि एक काउंसलर से बात।
3: किशोर अवस्था में समझ में नहीं आता ना, बच्चा है 14 साल का, 12 से 14 या 15 की एज थी, अब उसे नहीं मालूम ना। एकदम से उसको बोला कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस ले जाएगी, तो उसको बदनामी का डर था कि मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज में बदनामी हो जाएगी, इसने ऐसा, तो डर गया। तो डर के कारण उसको लगा कि सबसे अच्छा आसान रास्ता सुसाइड कर लूं मैं, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो कैसे बदनामी होगी।
2: मैं आपको टोक रहा हूं, बल्कि मैं तो ही कहता हूं सबसे आसान रास्ता काउंसलर से बात कर ली जाए।
3: जी जी जी, तो उसने तुरंत ही पता नहीं कैसे इमीडिएटली बात हुई इससे और उसने मुझे दूसरे दिन यही बोला कि मैडम थैंक यू, मैंने आपसे बात की नहीं तो आज मेरे को बिल्कुल था कि आज मैं सुसाइड कर ही लूंगा। और दूसरा एक था कि कोई बहुत अच्छी पोस्ट को लेकर जिनका सिलेक्शन होना था, बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। कंटिन्यू उन्होंने हमसे काउंसलिंग ली, काउंसलिंग लेते लेते लेते डिप्रेशन से बाहर निकले और एक आज बहुत अच्छे उच्च पद पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जब उनका अच्छे उस पद पर सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने हमको फिर थैंक यू कहकर फिर उन्होंने हमको कॉल किया। ये सब रिकॉर्डिंग्स वैसे हमारे पास वहाँ रहती हैं 104 में।
2: अगर आत्महत्या की बात करें तो जब भी किसी के मन में इस तरह का विचार आता है तो सबसे बेहतर है कि वो काउंसलर से बात कर ले, डॉक्टर से बात कर ले, जिसमें काउंसलिंग मिल जाती। अच्छा, 1-to-1 जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सरकार ने इस तरह के नंबर भी चूज करे हुए हैं और प्राइवेट काउंसलिंग भी शहर में, देश में अलग अलग जगह चली रही है। कोई भी फैसला लेने से पहले काउंसलर से बात करें, इसलिए काउंसलिंग की आज के समय में बहुत ज्यादा महत्ता है।
3: बिल्कुल आप ठीक करें, टॉक थेरेपी होती है बात करने से। आपने सुना होगा, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत होती है ना कि दुख बांटने से मतलब कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है।
2: बिल्कुल।
3: तो आप अपनी बात कह देते हो तो कहने से आपकी 90% समस्या का समाधान हो जाता है। एक फेस होता है, सबकी लाइफ एक फेस आता है, वो फेस निकल जाता है। जैसे इमीडिएट मन में एक भाव आते हैं, जैसे पानी का एक बहाव आता है ना, एकदम से नदी उबाल पे आती है और एकदम से स्लो हो जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर भावनाएं होती है जो दिखती नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कैंसर एक बीमारी है जो दिख जाएगी, टीबी एक बीमारी है वो दिखेगी आपको। अगर कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी है वो आपको दिख जाएगा, ट्यूमर है, लेकिन अंदर जो भावनाएं हो रही है, भावनाओं में जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, ये सारी चीजें आपको दिखती नहीं है। और उसी टाइम में ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए, वो कई बार बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होने से। तो ये सिर्फ कुछ क्षणिक होता है, अगर उस समय आपने किसी से बात कर ली और वो आधा घंटा आप लगातार उससे बात करते रहे, कंटिन्यू वो आपसे जब जब उसको ऐसा फील होता है वो आपसे बात करता रहेगा, तो उसके अंदर वो तो वो फेस निकल जाता है। ये बहुत टाइम के लिए फेस नहीं होता है, हर अवस्था में ये फेस आता है।
2: एक चीज और जानना चाहेंगे नेहा जी, कि ये डिजिटलाइजेशन जैसा अभी बढ़ा है या सोशल मीडिया का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर घर के हर व्यक्ति के हाथ में एक अपना मोबाइल है और इसलिए वो एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। सोशल मीडिया को आप जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें कितना इफेक्टिव देखते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों बात करें हम?
3: देखिए, अगर इसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी एक चीज है, ये तो एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद के रूप में ऐसा है, बेटे आपकी हर चीज आसान हो रही है। अगर आपको एग्जांपल, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसे उन्हें खाना बनाना है तो इजीली वो देख सकते हैं कि उनको खाना कैसे बनाना है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में हर चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर तुरंत देखना है कि किसी भी संबंधित जानकारी अगर आपको लेना है तो आप इजीली उसमें ले सकते हैं।
2: तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव चीजों को देखना ही एक काउंसलर का काम है और काउंसलिंग के लिए बहुत अहम, मतलब इम्पोर्टेंट है कि लोग भी किसी भी चीज के पॉजिटिव पक्ष को ज्यादा देखें। क्या कहेंगे आप
3: जी? मैं ये कहूंगी रिसर्च है। आप देखेंगे कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव भी होती है तभी आपको वहाँ पे अच्छा लगता है। और अगर आप किसी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, हैप्पीनेस के बारे में करते हैं, तो आपके हार्मोन्स हैप्पीनेस होते हैं, आपका ब्लड का सर्कुलेशन शांत रहता है। वहीं आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो वहीं आपके ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होने लगेगा। और चाहे तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं। दो पौधों के ऊपर रिसर्च किया गया था। एक पौधे को आप पानी दीजिए और उसको ये बोलिए कि ये बहुत प्यारा पौधा है, बहुत पॉजिटिव है, इसमें अच्छे अच्छे फूल उगेंगे, बहुत अच्छा बनेगा, बड़ा होगा पौधा, बहुत सुंदर है, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए। वहीं दूसरे पौधे को पानी देते हुए आप उसको नेगेटिव वाइब्स देंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। ये रिसर्च है। इसीलिए पॉजिटिव आप जितना सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, और दूसरा जरूरी वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना, ना कि भविष्य ना वर्तमान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भविष्य में रहना, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं और पॉजिटिवनेस के साथ रहते हैं तो आप हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपको ना ही डिप्रेशन होगा, ना ही एंजाइटी होगी, ना ही आपको अकेलापन होगा। इसलिए पॉजिटिव पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है।
2: जो लोग आपसे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो शहरी लोग या ग्रामीण लोग इसमें कोई अंतर देखते हैं कि क्या शहरी लोग ज्यादा काउंसलिंग उनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें, या ग्रामीणों को, या इस तरह का कोई भेद है नहीं?
3: जागरूक लोगों के ऊपर है। अच्छा। जो लोग जागरूक हैं वो लोग काउंसलिंग लेते हैं। क्या होता है काउंसलिंग को लोगों ने, अगर मानसिक संबंधित हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बात किया जाए तो वो लोग समझते नहीं है उस चीज को। वो समझते हैं कि पागल व्यक्ति ही काउंसलिंग ले सकता है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो लोग काउंसलिंग लेते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, जो जागरूक हैं, जागरूक आप उसको पढ़े लिखे कहें, जागरूक कहें, समझदार कहें, वही लोग काउंसलिंग ले पाते हैं।
2: अच्छा, तो युवा जो होते हैं, छात्र या करियर काउंसलिंग भी बहुत कॉमन सा लोगों ने सुन रखा है, तो ये करियर काउंसलिंग क्या होती है, या जो युवा है वो तनाव या अवसाद में आते हैं, इनके कारण क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप?
3: देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण माता पिता को कहा जाएगा। उनको बच्चों से उम्मीदें बहुत हैं। बच्चे को 99% लाना चाहिए, 90 भी नहीं आना चाहिए, है ना। बच्चा के साथ वो कंपैरिजन करते हैं, बच्चे से उम्मीदें बहुत ज्यादा रखते हैं। बच्चा दबाव में आकर अपने रुचि का काम नहीं कर पाता है। और हमारे यहाँ काम को बड़ा और छोटा बड़ा देखा गया है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बहुत अच्छा है, है ना। हमारे यहाँ अगर कोई कुक बनता है या कोई शेफ बनता है तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं कहा जाता है। और एक कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार, एक कहावत कही गई थी, है ना। वो तो बच्चे को अगर उसके रुचि का काम करने दिया जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हो, बच्चे को कहा जाए कि पढ़ाई आप अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कीजिए, इससे आपका व्यक्तित्व विकास होगा, ना कि उसको बर्डन की तरह, उसको हैप्पीनेस की तरह अगर वो काम करेगा
2: जी।
3: तो बच्चा इसमें आगे बढ़ेगा। बच्चे के ऊपर ऑलरेडी इतना तनाव दिया जाता है तो वो उसको डर के कारण करता है वो उस काम को।
2: बच्चे जो परेशान होते हैं किसी भी विषय को लेके, मसलन करियर को लेके होते हैं, पढ़ाई को लेके होते हैं, तो वहाँ काउंसलिंग की जरूरत केवल बच्चे को नहीं उसके पेरेंट्स को भी बराबर में है कि दोनों ये समझे।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर का माहौल कहा जाए तो पूरी हिस्ट्री समझना पड़ती है। पूरी हिस्ट्री के बाद ही मतलब थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म होता है, कई सेशन लिए जाते हैं इसके, बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि तारे जमी पे, अगर तारे जमी पे आप देखेंगे या थ्री इडियट्स देखेंगे, ये सारी साइकोलॉजिकल ही फिल्में बनी गई हुई हैं।
2: अब एक बड़ा वर्ग वो होता है जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स भी हैं, मतलब शादीशुदा इंसान 30 साल से 32 साल 50 साल के कोई किसी भी उम्र का हो सकता है। तो अपने समाज में जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उतनी जल्दी अब तलाक का रेशियो भी बहुत बढ़ चुका है, तो मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता
3: हूँ। उसका तरफ से सबसे ज्यादा पहले के समय में क्या होता था कि पुरुष वर्ग जो होता था वो घर चलाता था, मतलब जीविका मतलब घर में पैसा लाना। वो जो महिला होती थी वो घर की देखभाल करना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, थोड़ा सा उनको धैर्य भी सिखाया जाता था। आजकल बराबर से हैं, दोनों बराबर पढ़े लिखे हैं, दोनों ज्यादा बराबर कमाते हैं, है ना, और कोई सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, दोनों को बराबर से गुस्सा आता है, और हम क्यों किसी की सुने, हम क्यों करें, हमने भी पढ़ाई की है। तो इस तरह की आपसी मतभेद होते हैं, कोई थोड़ा सा धीरज नहीं रखना चाहता है, पॉजिटिव नहीं सोचना चाहता है, जरा में अग्रेसिव हो जाता है, रिश्ते तुरंत तोड़ना चाहता है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था शादी 7 जन्मों का रिश्ता है
2: जी।
3: इसे 7 जन्मों तक नहीं, आज थोड़ी सी बात हुई नहीं, अब हमें साथ नहीं रहना है, अब हम तो डिवोर्स लेना है, बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते।
2: आपको याद आता है कि आप कैसे इस तरह के मतलब मैरिड कपल्स उनका कॉल आया और वो तलाक पर जाने की चाह रहे हो, अगर कोई आपको कॉल याद आए तो?
3: जी, ऐसे कई कॉल आते थे जो तलाक तक जाना चाहते थे, फिर हम लोगों की बराबर से काउंसलिंग करते थे, कई सेशन लेते थे, आपस की चीजों को समझते थे, जब बहुत समझते थे अगर ठीक है, दोनों समझने को तैयार हैं तो ठीक है, और नहीं समझना चाहते हैं तो फिर बाकी दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाता था पूरा, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास करते थे।
2: नहीं, ये तो खैर आपका प्रयास, लेकिन ये भी कहेंगे समाज को ये समझना चाहिए कि काउंसलिंग मतलब हमारा भी उद्देश्य है, काउंसलिंग जितने लोगों तक पहुंच चुकी है बात वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो लोग किसी न किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो काउंसलर का सहारा जरूर ले सकते हैं, काउंसलिंग की तरफ अब जरूर बढ़ें, ताकि जो भी अंतिम फैसला होगा उनके हाथ में, लेकिन कम से कम उनको ऐसा लगेगा कि समस्याएं कहीं कम हो रही है और रास्ता उन्हें मिलेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
3: बहुत ठीक कह रहे हैं आप। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा ना कि काउंसलिंग की सबसे अच्छी बात होती है सुनना। आजकल कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, तो जो काउंसलर होता है वो बहुत धैर्य से सुनता है, समझता है, दूसरा उनको जज नहीं करता है, उसको सुनता है, समझता है, तो उसको भरोसे के साथ वो सारी बातें बता बता कर उस टाइम में वो नॉर्मल होकर फिर उस पर उसको भरोसा होता है तो उसकी बातों को वो समझने लगता है।
2: एक कारण आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बातचीत में जो निकल के आ रहा है, जो हमारा समाज था या जो हमारा परिवेश था, वो सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, और जो ये संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है उसके बाद से काउंसलिंग की आवश्यकता शायद ज्यादा पड़ने लगी, क्या ये ठीक है?
3: बहुत हद तक बिल्कुल ही ठीक है। संयुक्त परिवार से बहुत लाभ होते हैं, बच्चों को संस्कार मिलते हैं और सामंजस्य आता है। जैसे एक दो कमरे हैं तो अगर 2 कमरे हैं और उसमें 6 लोग हैं तो उनको समझ में आता है कि ठीक है 3 लोग एक कमरे में रहेंगे, 3 लोग एक कमरे में रहेंगे, और बड़ों की डांट सुनने की उनको आदत होती है कि बड़े डांटेंगे, रोक टोक की उनको आदत होती है, तनाव नहीं होता है संयुक्त परिवार में रहने से, क्योंकि काम बटे हुए होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स आता है संयुक्त में रहने से।
2: आपसे बातचीत का सिलसिला तो बड़ा लंबा चल रहा है और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला बना रहे, क्योंकि अभी तो शायद बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपरी सतही तौर पर आपसे काउंसलिंग को लेकर बात हो पाई है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय की एक सीमा होती है हमारे कार्यक्रमों को लेकर, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस है उनसे आप क्या कहेंगे कि काउंसलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और किन लोगों को काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहिए?
3: काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर उम्र हर वर्ग और समाज के सभी लोगों को बहुत जरूरी है। अगर हल्का सा भी मन के अंदर कुछ भावनाओं में उथल पुथल हो, मन में कुछ अलग सा लगे, कुछ सूनापन सा लगे, या किसी को कोई बात नहीं बता पा रहे हैं जो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या किसी को नहीं बता पाए, वो काउंसलिंग की मतलब ले सकते हैं। और अगर जिनके पास अच्छे दोस्त हो, जिनके घर में माता पिता हो, या जिनके कुछ अच्छे रिश्तेदार हों तो वो उनके माध्यम से मतलब उनको भी अपनी बात कह सकते हैं, वो उनको लेकिन सही तरह से सुझाव, उनको इतना भरोसा हो कि यहाँ से हम बात कहेंगे तो हमें सही मार्गदर्शन यहाँ से हमें मिलेगा, तो वो उन लोगों से भी बात कर सकते हैं।
2: नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, आपने जो काउंसलिंग को लेकर इतने विस्तार से हमें चीजें बताई, हालांकि ये विषय अभी अधूरा सा है, इसमें काफी कुछ है काउंसलिंग को, हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपसे इस विषय पे बात करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए।
3: चलिए जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो इस कार्यक्रम से फिलहाल हमें दी इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम से हम सभी को दीजिए अनुमति, लेकिन सुनना न भूलिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

तो श्रोताओं, आपने अभी सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। वैसे तो कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी बीमारी किस तरह से हमें आ घेरेगी, लेकिन अगर हमें बीमारियों के बारे में जानकारी हो तो शुरुआती लक्षण को देखते ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, और अगर हम जल्दी उसके पास पहुँचते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आहार व्यवहार की हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह की हो। कुल मिलाकर इस तरह की कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं और आपको वो बातें पसंद भी आती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं वो बातें। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत कुछ अभी आगे आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद से, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। जी हाँ श्रोताओं, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता, उनकी कलम की गुजारिश आज आप सब तक पहुंचाना चाहता है रेडियो आजाद हिंद। वनों को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ताकि धरती का आंचल हरा भरा रहे, भरा भरा रहे, और आज की पीढ़ी भी लिख सके कविता। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद देश विदेशों में घूमकर वहां के लोगों को भारत संबंधी ज्ञान बांट कर आए थे। उन्हें भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। इसी के साथ वे खुद भी विदेश से परिचित हुए थे। वहां के लोगों को आबोहवा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, लोकाचार, यहां तक कि फैशन तक को जान लिया था। वे इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, सभी देशों के उद्भव तथा विकास के इतिहास से भी वे परिचित थे। विदेश से वापस आकर समय समय पर वे उनसे मिलने आने वालों से ये सभी बातें साझा करते थे। लोग भी विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होते थे।
1: आपने स्वामी जी द्वारा वर्णित पश्चिम और पूर्वी देशों में आहार, आचार विचार और लोकाचारों की बातें सुनी। अब हम पोशाक संबंधी उनकी धारणाएं सुनेंगे। उनका वर्णन करने का ढंग अत्यंत मनोहारी था। सभी विषयों को वे तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करते हैं।
2: अलग अलग देशों में कपड़े पहनने की अलग अलग प्रथा है और सभी देशों में पहनने ओढ़ने के ढंग के साथ कुछ न कुछ भद्रता का संपर्क अवश्य है। भले बुरे की पहचान भी अक्सर कपड़ों से ही की जाती है। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये बातें प्रचलित हैं। अब हमारे देश में भले आदमी नंगे बदन रास्ते में नहीं निकल सकते, भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में माथे पर बिना पगड़ी पहने कोई रास्ते में नहीं निकल सकता। यूरोप में दूसरे देशों की अपेक्षा फ्रांसीसी सब विषयों में आगे हैं। उनके भोजन आदि की सब नकल करते हैं। इस समय भी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में तरह तरह की पोशाकें मौजूद हैं, किंतु भले आदमी होने से ही या दो पैसा पास में होने से ही वो पोशाक गायब हो जाती है और फ्रांसीसी पोशाक का आविर्भाव हो जाता है।
0: उन्होंने यूरोप की पोशाकों का अच्छा खासा वर्णन किया है।
2: काबुली पैजामा पहनने वाले हॉलैंड के कृषक, घाघरा पहनने वाले ग्रीक, तिब्बती पोशाक पसंद करने वाले रूसी जो ही जेंटलमैन बने, त्यों ही उन्होंने फ्रांसीसी कोट पतलून धारण कर लिया। स्त्रियों की तो कुछ बात ही नहीं, पास में पैसा होते ही उन्हें तो पेरिस का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी इस समय धनी देश समझे जाते हैं। उन सभी देशों की पोशाक एक तरह की है, वो फ्रांस की नकल है। परंतु आजकल पेरिस की अपेक्षा लंदन के आदमियों की पोशाक अधिक अच्छी होती है। इसी से पुरुषों की पोशाक लंदन मेड और स्त्रियों की पोशाकें पेरिस मेड होती हैं। जिनके पास पैसा है वे इन दोनों स्थानों की बनी पोशाकें बारहों मास व्यवहार करती हैं। अमेरिका में विदेशों से आई पोशाकों पर बहुत ज्यादा चुंगी ली जाती है, किंतु उतनी अधिक चुंगी देकर भी पेरिस और लंदन की पोशाक ही पहननी पड़ती है। ये काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस समय अमेरिका में कुबेर का प्रधान अड्डा जो है।
1: अब सुनिए प्राचीन भारतीय पहनावे की बात।
2: प्राचीन आर्य लोग धोती चादर पहनते थे। लड़ाई के समय क्षत्रियों में पायजामा और अंगा पहनने का चलन था, बाकी समय सभी धोती चादर, किंतु पगड़ी सभी पहनते थे। बहुत प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं। इस समय बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में केवल लंगोटी से ही शरीर को ढकने का काम चल जाता है, किंतु पगड़ी का पहनना अत्यावश्यक है। बौद्ध कालीन जो पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, उनमें स्त्रियां भी केवल लंगोटी ही पहने रहती हैं। बुद्ध के पिताजी लंगोटी लगाकर सिंहासन पर बैठे हैं, उसी प्रकार उनकी मां भी बैठी हैं। विशेषता केवल यही है कि पैर भर में पैजनी और हाथ भर में कड़ा है, पर पगड़ी जरूर है। धर्म सम्राट अशोक धोती पहन और गले में दुपट्टा डाल नंगे बदन एक डमरू के आकार वाले सिंहासन पर बैठकर नाच देखते थे। कमर से कितने ही चिथड़े लटकते थे, फिर भी पगड़ी थी। जो कुछ होता था सब पगड़ी में, किंतु राज सामंत लोग चुस्त पायजामा और लंबी अचकन पहनते थे। सारथी नलराज ने इस प्रकार रथ चलाया कि राजा ऋतुपर्ण की चादर न जाने कहां उड़ गई और राजा ऋतुपर्ण नंगे बदन ही विवाह करने गए। धोती चादर आर्य लोगों की पुरानी पोशाक थी, इसलिए क्रिया कर्म के समय धोती चादर पहननी पड़ती है।
0: अब वे प्राचीन रोमन और ग्रीक पोशाकों का वर्णन करते हैं।
2: प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों की पोशाक थी धोती चादर। वहां एक प्रधान कपड़ा जो धोती और चादर दोनों का काम देता था तोगा कहलाता था। उसी का अपभ्रंश आज चोगा है, किंतु कभी कभी एक अंगा भी पहनते थे। लड़ाई के समय लोग पायजामा और अचकन पहनते थे। स्त्रियों का एक खूब लंबा चौड़ा चौकोर कपड़ा रहता था जो दो चादरों की लंबाई के बल सीकर और चौड़ाई की ओर खुला छोड़कर बनता था। उसके बीच में से दो बार बांधते हैं, एक बार छाती के नीचे और दूसरी बार पेट के नीचे। इसके बाद ऊपर खुले हुए उस कपड़े के दोनों सिरों को कंधों पर दो जगह बड़ी आलपिनों से अटका लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी कंबल पहनते हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर और सहज है, ऊपर एक चादर रहती है।
1: अब आता है सिले हुए कपड़ों का युग।
2: प्राचीन काल में केवल ईरानी ही काटकर बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे। जान पड़ता है शायद इसे उन लोगों ने चीनियों से सीखा था। चीनी लोग सभ्यता अर्थात भोग विलास सुख स्वच्छंदता के आदि गुरु हैं। अनादिकाल से चीनी टेबल पर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, खाने के लिए कितने यंत्र तंत्र रखते हैं, कई प्रकार की सिली पोशाकें पहनते हैं जिनमें पायजामा टोपी और टोप आदि होते हैं।
0: स्वामी जी से हमें पता चलता है ये पोशाकें कैसे एक देश से चलकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। फिर जलवायु के साथ पोशाक का संबंध भी उन्होंने बखूबी समझाया।
2: सिकंदर शाह ने ईरान को जीता, उन्होंने धोती चादर छोड़कर पायजामा पहनना आरंभ कर दिया। इससे उनकी स्वदेशी सेना इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह जैसा हो गया, किंतु सिकंदर ने कुछ परवाह न कर पायजामों का प्रचार कर ही दिया। गर्म देशों में कपड़े की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, लंगोटी से ही लज्जा निवारण हो जाती है, बाकी सब तो शोभा मात्र हैं। ठंडे देशों में सदा लोग शीत से पीड़ित होकर अस्थिर रहते हैं। असभ्य अवस्था में वे जानवरों की खाल पहना करते थे, क्रमशः कंबल पहनने लगे और फिर कपड़ों की बारी आई। वे कई प्रकार के होने लगे। इसके बाद नंगे बदन गहना पहनने से ठंड के कारण मृत्यु तो हो सकती थी, इसलिए ये अलंकार प्रियता कपड़ों में जा छिपी। जिस प्रकार हमारे देश में गहनों का फैशन बदलता है, उसी प्रकार इन लोगों के कपड़ों का फैशन भी घड़ी घड़ी बदलता रहता है।
1: प्राच्य और पाश्चात्य में सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, पहनने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वामी जी ने कहा,
2: इसलिए ठंडे देशों में बिना सर्वांग कपड़े से ढके किसी के सामने निकलना असभ्यता है। खासकर विलायत में ठीक ठीक पोशाक पहने बिना घर के बाहर जाया ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों का पांव दिखाई पड़ना लज्जा की बात है, किंतु गला और वक्ष का कुछ हिस्सा भले ही खुला रह जाए। हमारे देश में मुंह दिखाना बड़ी लज्जा की बात है, किंतु घूंघट काढ़ने में साड़ी चाहे पीठ से हट जाए तो कुछ हर्ज नहीं। राजपूताना और हिमालय की स्त्रियां मुंह ढाके रहती हैं, चाहे पेट और पीठ भले ही दिख जाए।
0: अब चीनियों के बारे में एक मजेदार कहानी।
2: एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इस लज्जा के संबंध में बड़े अद्भुत उदाहरण देखने में आते हैं। किसी किसी विषय में बहुत ज्यादा लज्जा की जाती है, पर उसकी अपेक्षा अधिक लज्जा वाले विषयों में नाम मात्र की भी लज्जा नहीं की जाती। चीन में स्त्री पुरुष सभी सदा सिर से पैर तक ढके रहते हैं। वहां बौद्ध मतावलंबी नीति में बड़े कुशल हैं। खराब बातें या चाल चलन होने से फौरन सजा दी जाती है। ईसाई पादरियों ने वहां जाकर चीनी भाषा में बाइबल छपवा डाला। उनको पढ़कर चीनी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने चीन में बाइबल के प्रचार को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, ये किसी तरह भी यहां नहीं चलाई जा सकती। इसके ऊपर ईसाई पादरी स्त्रियों का सायंकालीन पोशाक पहनना और भी आपत्तिजनक था। साधारण बुद्धि वाले चीन निवासियों ने कहा, सर्वनाश, इस पुस्तक को पढ़कर हमारे लड़के खराब हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए चीनियों को ईसाइयों पर बहुत क्रोध आ गया। नहीं तो चीनी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करते। सुनते हैं कि पादरियों ने फिर बाइबल छपवाया है, किंतु इससे चीनी लोगों को और भी संदेह हो गया। फिर पाश्चात्य देशों के विभिन्न प्रदेशों में लज्जा, घृणा आदि के विभिन्न प्रकार हैं। अंग्रेजों और अमेरिका वालों के लिए वे एक प्रकार के हैं, फ्रांसीसियों के लिए वे एक दूसरी तरह के, और जर्मनी लोगों के लिए वे तीसरी तरह के हैं। रूसी और तिब्बती लोगों की बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, किंतु तुर्कों का अपना ही रस्म रिवाज है।
0: स्वामी जी हमेशा स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मां के प्रति उनकी श्रद्धा सभी को मालूम है। वे शक्ति के उपासक भी थे और ईश्वर उनके लिए मातृ रूप में शक्ति ही थी।
1: वे जब यूरोप गए और वहाँ के लोगों को माँ यानी मदर मेरी की पूजा और भक्ति करते देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पूजा पद्धति के साथ हमारी शक्ति पूजा की तुलना भी की है।
2: यूरोप में प्रोटेस्टेंट तो नगण्य है, धर्म तो कैथलिकों का ही है। उस धर्म में जिहोवा, ईसु और त्रिमूर्ति आदि भी दब गए हैं। सबका आसन माँ ने ग्रहण किया है, ईसु को गोद में लिए माँ। लाखों स्थानों में, लाखों किस्म से, लाखों रुपयों में, बड़े मकानों में, मंदिरों में, सड़कों में, फूस की झोपड़ी में, सब कहीं बस माँ की ही ध्वनि है। बादशाह माँ पुकारता है, सेनापति माँ पुकारता है, हाथ में झंडा लिए सैनिक पुकारता है माँ, जहाज पर मल्लाह पुकारता है माँ, रास्ते के कोने में पड़ा हुआ भिखारी पुकारता है माँ, धन्य मेरी, धन्य मेरी, धन्य मेरी। दिन रात यही ध्वनि उठती है।
0: हम भी शक्ति पूजा करते हैं, पर स्वामी जी ने देखा पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हम सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, घर की देवियों को सम्मान नहीं देते।
2: इसके बाद स्त्री पूजा है। ये शक्ति पूजा केवल काम वासनामय नहीं है, ये शक्ति पूजा कुमारी सधवा पूजा है, जैसी हमारे देश में काशी, कालीघाट आदि तीर्थ स्थानों में होती है। ये काल्पनिक नहीं, वास्तविक शक्ति पूजा है। किंतु हम लोगों की पूजा इन तीर्थ स्थानों में ही होती है और केवल क्षण भर के लिए, पर इन लोगों की पूजा दिन रात बारह महीने चलती है। पहले स्त्रियों का आसन होता है, कपड़ा, गहना, भोजन, उच्च स्थान, आदर और खातिर पहले स्त्रियों की। उच्च कुल की और रूपवती युवतियों की तो बात ही क्या है। ये शक्ति पूजा प्रत्येक स्त्री की पूजा है, चाहे परिचित हो या अपरिचित। इस शक्ति पूजा को पहले पहल यूरोप में मूर लोगों ने आरंभ किया था। मूर मुसलमान और अरब जाति के मिश्रित हैं। जिस समय उन लोगों ने स्पेन को जीता था, उस समय उन्होंने 8 शताब्दियों तक राज्य किया था। उसी समय यह शक्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय सभ्यता का उन्मेष हुआ और शक्ति पूजा का आविर्भाव। कुछ समय के अनंतर मूर लोग इस शक्ति पूजा को भूल गए, इसलिए वे शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। वे स्थान च्युत होकर अफ्रीका के एक कोने में असभ्यावस्था में रहने लगे और उस शक्ति का संचार हुआ यूरोप में। मुसलमानों को छोड़कर मां ईसाइयों के घर जा विराजी।

0: स्वामी विवेकानंद का ज्ञान सागर जैसा असीम था। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में हमें उनके विचार नहीं मिले हों, और ये सभी विचार मौलिक थे।
1: वे हमें विश्व इतिहास से परिचित कराते हैं, पर लगता नहीं कि हम किसी इतिहास की कक्षा में बैठे हुए हैं। रोचक उदाहरणों और कहानियों के साथ वे हमें देश विदेश के प्राचीन इतिहास के समक्ष ले जाते हैं। आइए उनसे सभ्यता का इतिहास सुनते हैं।
2: ये यूरोप क्या है? क्यों एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के काले, भूरे, पीले और लाल निवासी यूरोप निवासियों के पैरों पर गिरते हैं? क्यों कलयुग में यूरोप निवासी ही एकमात्र शासन करता है? इस यूरोप को समझने के लिए हमें पाश्चात्य महानता तथा गौरव के केंद्र फ्रांस की ओर जाना होगा। इस समय पृथ्वी का आधिपत्य यूरोप के हाथ में है और यूरोप का महाकेंद्र पेरिस है। पाश्चात्य सभ्यता, रीति नीति, प्रकाश अंधकार, अच्छा बुरा, सब की अंतिम परिपुष्टि का भाव इसी पेरिस नगरी में प्रादुर्भूत होता है। ये पेरिस नगरी एक महासमुद्र है। मणि, मोती, मूंगा आदि भी यहाँ यथेष्ट हैं, और साथ ही मगर, घड़ियाल भी बहुत हैं। ये फ्रांस ही यूरोप का धर्म क्षेत्र है। चीन के कुछ अंशों को छोड़कर इतना सुंदर स्थान और कहीं नहीं है, ना तो बहुत गर्म और ना तो बहुत ठंडा, बहुत उपजाऊ। ना यहाँ अधिक पानी बरसता है और ना कम पानी बरसने की भी शिकायत है। वो निर्मल आकाश, मीठी धूप, वनस्थली की शोभा, छोटे छोटे पहाड़, एल्म और ओक प्रभृति पेड़ों का बाहुल्य, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे झरने, पृथ्वी तल पर और कहां है? जल का वो रूप, स्थल की वो मोहकता, वायु की वो उन्मत्तता, आकाश का वो आनंद और कहां मिलेगा? प्रकृति सुंदर है, मनुष्य भी सौंदर्य प्रिय है। बूढ़े, बच्चे, स्त्री पुरुष, धनी दरिद्र, उनका घर द्वार, खेत मैदान आदि सभी साफ सुथरे और बना चुनाकर सुंदर किए हुए रहते हैं। सिर्फ जापान को छोड़कर ये भाव और कहीं नहीं है। वो इंद्रपुरी के ग्रह, अट्टालिकाओं का समूह, नंदन वन के सदृश उद्यान, उपवन, झाड़ियां और कृषकों के खेत, सभी में एक रूप, एक सुंदर छटा देखने का प्रयत्न, और वो अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए हैं। ये फ्रांस प्राचीन समय से गॉल, रोम, फ्रांक आदि जातियों की संघर्ष भूमि रहा है। इसी फ्रांक जाति ने रोमन साम्राज्य का नाश करने के बाद यूरोप में आधिपत्य जमाया। इसके बाद बादशाह शार्लेमेगने ने यूरोप में ईसाई धर्म का तलवार के बल पर प्रचार किया। इसी फ्रांक जाति के द्वारा ही एशिया को यूरोप का परिचय हुआ। इसलिए आज भी हम यूरोप वासियों को फ्रांकी, फिरंगी, फ्लांकी, फिलिंग आदि नामों से संबोधित करते रहते हैं।
0: स्वामी जी इतिहास के इस धारा प्रवाह में श्रोताओं को बहाकर ले जाते थे। लोग घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, क्योंकि उनका बोलना उबाऊ न होकर बड़ा नाटकीय होता था।
2: पाश्चात्य सभ्यता का आदि केंद्र प्राचीन यूनान डूब गया। रोम के चक्रवर्ती राजा बर्बरों के आक्रमण तरंग में बह गए। यूरोप का प्रकाश बुझ गया। इधर एशिया में भी एक बर्बर जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अरब कहते हैं। वो अरब तरंग बड़े वेग से पृथ्वी को आच्छादित करने लगी। महाबली पारसी जाति अरबों के पैरों के नीचे दब गई। उसे मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ा, किंतु उसके प्रभाव से मुस्लिम धर्म ने एक दूसरा ही रूप धारण किया। वो अरबी धर्म पारसी सभ्यता में सम्मिलित हो गया। अरबों की तलवार के साथ पारसी सभ्यता धीरे धीरे फैलने लगी। वो पारसी सभ्यता प्राचीन यूनान और भारत वर्ष से ही ली हुई थी। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से बड़े वेग के साथ मुस्लिम तरंग ने यूरोप के ऊपर आघात किया। साथ ही अंधकार पूर्ण यूरोप में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगा। प्राचीन यूनानियों की विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि ने बर्बरा क्रांत इटली में प्रवेश किया। धरा राजधानी रोम के मृत शरीर में प्राण स्पंदन होने लगा। उस स्पंदन ने फ्लोरेंस नगरी में प्रबल रूप धारण किया। प्राचीन इटली ने नव जीवन धारण करना आरंभ किया। इसी को नव जन्म अर्थात रेनेसेंस कहते हैं। किंतु वो जन्म इटली का था, यूरोप के दूसरे अंशों का उस समय प्रथम जन्म हुआ। ईसा की 16वीं शताब्दी में भारतवर्ष में अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि मुगल सम्राट राज्य करते थे, उसी समय यूरोप का नव जन्म हुआ।
1: स्वामी जी को पेरिस नगर बहुत पसंद था और उसकी बातें करते वे थकते नहीं थे।
2: ये पेरिस नगरी यूरोपीय सभ्यता की गंगोत्री है। ये विराट नगरी मृत्युलोक की अमरावती सदानंद नगरी है। पेरिस का भोग विलास और आनंद न लंदन में है, न बर्लिन में और न यूरोप के किसी दूसरे शहर में। लंदन न्यूयॉर्क में धन है, बर्लिन में विद्या बुद्धि यथेष्ट है, किंतु न तो वहां फ्रांस की मिट्टी है न फ्रांस के वे निवासी। धन हो, विद्या बुद्धि हो, प्राकृतिक सौंदर्य भी हो, किंतु वे मनुष्य कहां है। प्राचीन यूनानियों की मृत्यु के बाद इस अद्भुत फ्रांसीसी चरित्र का जन्म हुआ है। सदा आनंद और उत्साह से भरे हुए, पर बड़े हल्के और फिर भी बहुत गंभीर। सब कामों में उत्तेजित, किंतु बाधा पड़ने से ही निरुत्साहित। किंतु वो नैराश्य फ्रांस के मुंह पर बहुत देर तक नहीं ठहरता, फिर नवीन उत्साह और विश्वास से वो चमक उठता है। पुनः फ्रांस ही स्वाधीनता का उद्गम स्थान है। इस पेरिस महानगरी से ही प्रजाशक्ति ने बड़े वेग से उठकर यूरोप की जड़ को हिला दिया। उसी दिन से यूरोप का नया आकार हो गया। वो लिटरेट, एगलाइट, फ्रेटेनाइट की ध्वनि अब फ्रांस में सुनाई नहीं पड़ती। फ्रांस अब दूसरे भाव में दूसरे उद्देश्यों का अनुसरण कर रहा है, किंतु यूरोप की अन्यान्य जातियों में इस समय भी फ्रांसीसी विप्लव का ये भाव गूंज रहा है।
0: पेरिस का वर्णन उन्होंने इस तरह किया,
2: वर्तमान पेरिस अधिकांश तीसरे नेपोलियन द्वारा तैयार किया हुआ है। तीसरा नेपोलियन मारकाट मचाकर बादशाह बना था। फ्रांसीसी उसी प्रथम विप्लव के समय से अस्थिर हैं। कारण प्रजा को सुखी रखने के लिए बादशाह लोग गरीबों को काम देकर प्रसन्न करने के अभिप्राय से बड़ी बड़ी सड़कें, नाट्यशालाएं, घाट आदि बनवाने लगे। अवश्य ही पेरिस के सारे प्राचीन मंदिर स्तंभ आदि स्मारक स्वरूप कायम रह गए। रास्ते, घाट सब नए बन गए। पुराने शहर के मकान और इमारतें तोड़कर शहर की चौड़ाई बढ़ाई जाने लगी और पृथ्वी की सर्वोत्तम सड़क यहां पर तैयार हुई। यहां रास्ता इतना चौड़ा है कि इसके बीच में और दोनों तरफ बगीचा है और एक जगह पर बहुत बड़ा गोलाकार है, उसका नाम प्लास द ला कॉनकॉर्ड है। इसके चारों ओर समांतर पर मूर्तियां हैं, जो फ्रांस के प्रत्येक जिले की स्त्रियों की प्रतिमूर्ति है। उनमें एक मूर्ति स्टेसबर्ग जिले की है। इस जिले को जर्मनी वालों ने 1872 की लड़ाई में अपने अधीन कर लिया। इस दुख को फ्रांस वाले आज भी नहीं भूल सके हैं, इसलिए वो मूर्ति सदा फूल मालाओं से ढकी रहती है, जैसे लोग अपने आत्मीय स्वजन की कब्र के ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, उसी प्रकार कोई न कोई उस पर रात या दिन में फूल माला डाल आता है।
1: स्वामी जी, फ्रांस और पेरिस के बारे में हमें बहुत कुछ कह गए हैं, परंतु समय अभाव से हम आपको वो भाग नहीं सुना पाएंगे। स्वामी जी को अधिकतर लोग सन्यासी के रूप में ही पहचानते हैं, परंतु उनका बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें सन्यासी से बढ़कर महामानव के रूप में प्रस्तुत करता है। हम उनके इस विराट व्यक्तित्व का सिर्फ एक छोटा सा ही अंश शायद समझ पाए हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दूं। हमारी सभा शुरू होती है सुबह 7 बजे। पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद आप सुनेंगे अक्षय निधि और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में कल हम बात करेंगे ज्योति प्रसाद अग्रवाला की। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें कल आप सुनेंगे देवगढ़ की गोंड साम्राज्य की स्थापत्य कला पर चर्चा। टेक गुरु कार्यक्रम में सुबह 9 बजे हम बात करेंगे डिजिटल सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन पर। भारत विभूति ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आप तक पहुंचेगा। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा ओमिय कुमार दास पर। नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम में रश्मि रथी का चौथा भाग सुनिए। महाराणा प्रताप पर केंद्रित आजाद हिंद कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और 11:30 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 74वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल सभा समापन का समय हो चला है। कल सुबह ठीक 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।